100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, शक्षमवत 1948 तदनुसार 4 जून 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

विकट परिस्थिति में जब आपका विवेक काम ना करे, आपको सही गलत मार्ग चुनने में भ्रम हो, ऐसी स्थिति में करबद्ध हो नाथ से कहिए, मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। अर्थात इस अवसर में प्रभु मेरे कल्याण के लिए आप ही सर्वोपरि हैं, कृपा कर इस संकट की घड़ी में हमारे सहायक बने।

प्रातः काल उचिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवाहि माथा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल सोकर उठने के बाद सबसे पहले अपनी माता, पिता और गुरु के चरणों में सिर नवाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। ये चौपाई हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो जाए, शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसे अपने बड़ों के प्रति सदैव आदर और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श है।

जब भक्त के मन में ये प्रश्न आए कि भगवान कहाँ है, तब ये चौपाई उसका उत्तर देती है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अर्थात

कुंद इंदु सम दे उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर ने करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।

जैसे नदी अपने जल के लिए, वृक्ष अपने फल के लिए और कभी चिंता नहीं करता, वैसा ही स्वभाव एक सच्चे भक्त का होता है। वह केवल श्रेष्ठ कर्म करता है और अपनी जीवन रूपी नैया उस परम मल्लाह अर्थात ईश्वर को सौंपकर निश्चिंत हो जाता है।

सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं इस पूरे संसार को सीता और राम के स्वरूप में अर्थात सिया राम से ओत प्रोत जानते हैं, इसीलिए अपने दोनों हाथ जोड़कर इस संपूर्ण जगत को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर या मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संसार के हर प्राणी का सम्मान करना और सब में प्रभु को देखना ही सबसे बड़ी पूजा होती है।

परमात्मा से कुछ मांगना ही है तो सदैव संतोष मांगिए, क्योंकि जिसके पास संतोष है उसके पास ईश्वर की दी हुई हर छोटी चीज भी अनमोल हो जाती है। परंतु जिसके पास संतोष नहीं वह महलों में रहकर भी उसे सदैव कमी नजर आती है। प्रभु हम सबका कल्याण करें इसी मंगल कामना के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

सूरज की रोशनी के साथ ये दिन चढ़ रहा है परवान। खिड़कियों से झांककर तो देखिए, एक खूबसूरत सुबह कर रही है आपका इंतजार। पॉजिटिव एनर्जी, नई उम्मीदों और खुशियों के साथ आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, शक संवत 1948, यानी 4 जून सन 2026। और इस वक्त की नेचुरल ब्यूटी के साथ आप हैं मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर के साथ।

वेल, हम सब रंगे हैं मोहब्बत के रंग में। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कानपुर, अपनी रेनबो होस्ट आरजे पूर्णिमा के साथ। और मोहब्बत के रंग के साथ और कौन कौन से रंग में रंग जाने वाले हैं आप आज हमारे और बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ, चलिए जानते हैं। सुरों के जादूगर एसपी बाला सुब्रमण्यम की जन्म जयंती पर हम सुनेंगे उनकी जादुई आवाज खूबसूरत सॉन्ग्स के साथ 8:30 पर। हर एक शहर में बसी है एक खूबसूरत कहानी जिसे बयां करता हमारा बॉलीवुड, और इस खूबसूरत कहानी को आप सुनेंगे ठीक 9:00। नौ बजकर 45 मिनट जहाँ हर दिन एक नया रंग हम लेकर आते हैं आपके साथ, और आज का रंग है लोक रंग का। जहाँ मिलती है आपको एक साथ बहुत सारी जानकारियाँ, पहुँचती हैं आपके दिल की बात हम तक ईमेल्स के जरिए, और एक नहीं दो आवाजें आपको करती हैं एंटरटेन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ। जी हाँ, होगी मुलाकात हम नवा प्रोग्राम में ठीक 11:00 जहाँ आज मेरे साथ होंगी मेरी हम नवा आरजे सीमा। दिन में 3:00 म्यूजिकल प्रोग्राम म्यूजिकार लेकर आरजे सीमा होंगी आपके साथ। 3:45 पर सुनिए इनसे मिलिए, इस प्रोग्राम में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से दीप शिखा गुप्ता की बातचीत, और विशेष कार्यक्रम है आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर। तो ये थे हमारे प्रोग्राम्स के अलग अलग रंग जिनके रंग में रंगने वाले हैं आप। फिलहाल वक्त के इन लम्हों के साथ आप हैं कनेक्ट गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ। तो देखिए ना, और सोचिए कि कहीं आप इस नेचुरल ब्यूटी के साथ कुछ वक्त ना बिताकर कुछ मिस तो नहीं कर रहे। रेडियो को रखिए ऑन, बिकॉज आपके साथ हैं हम हर पल।

जी हाँ, करना है आपको हर पल शुक्रिया उस रब का, उसकी दी हुई इस खूबसूरत जिंदगी का, अपनों का और उस चीज का जो आपसे जुड़ी है। जी हाँ, जैसे हर रोज एक नया दिन जो खत्म होते होते दे जाता है कोई ना कोई एक्सपीरियंस। और क्या कहता है आज का हमारा मॉर्निंग मंत्रा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। यानी जिंदगी साइकिल चलाने की जैसी है, संतुलन बनाए रखना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। दोस्तों, जिंदगी के रास्ते कठिन हो सकते हैं पर छोटे छोटे कदम ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे इस सुबह खुद से एक प्रॉमिस कीजिए ना कि बस मूव ऑन करते रहना है, चलना है और बस चलते जाना है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीर

0: ता खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है आप जहां सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर पूर्णिमा के साथ। और हमारे इस प्रोग्राम में हर सुबह आप तक पहुंचती है लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन हमारे सिटी के साथ देश विदेश की न्यूज हेडलाइंस। तो अब हैं हम आपके साथ सोशल मीडिया के साथ। कानपुर कमिश्नरेट के ट्वीट के अनुसार कानपुर नगर में सुगम यातायात योजना यानी आरटीसी स्कीम के अंतर्गत श्याम नगर चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया और इस दौरान वाहन चालकों और राहगीरों को हेलमेट व सीट बेल्ट पहनने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें इस सुरक्षा की तरफ कदम बढ़ाया गया और अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने वाली एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और वाहन मालिकों को भी लाभ पहुँचाने का लक्ष्य है। और एक और संदेश हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किए ट्वीट से। विश्व पर्यावरण दिवस से पहले उन्होंने प्रकृति संरक्षण का संदेश साझा करते हुए लोगों से पर्यावरण बचाने के लिए सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो इन सभी संदेशों के बाद हम पहुंचा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक। तो बने रहिए रेनबो कानपुर के साथ जहां एंजॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

ये है एफएम रेनबो कानपुर का जादू, जिस पर इस वक्त सुन रहे हैं आप प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। और चलिए देखते हैं कैसा है अतीत के आईने में आज का दिन। अमेरिका में पहली बार 1917 में आज ही के दिन प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए गए, जो पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और आज ही के दिन दुनिया भर में युद्ध और हिंसा की चपेट में आने वाले मासूम बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 4 जून को मनाया जाता है खास दिन। साथ ही भारत की सबसे अग्रणी महिला रसायन विज्ञानियों में से एक डॉक्टर दर्शन रंगनाथन का जन्म आज के दिन 1941 में दिल्ली में हुआ। तो ये थी खासियतें जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और आज के दिन को बना गई खास। पर अभी इस पल को, हर इस लम्हे को हम बना रहे हैं खास, वक्त के कुछ लम्हे चुराकर। गुड मॉर्निंग प्रोग्राम से कनेक्ट हैं आप 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। और इस प्रोग्राम को लेकर आरजी पूर्णिमा है आपके साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

FM रेनबो कानपुर को ट्यून किया है आपने 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। इस वक्त प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग कानपुर। और इस वक्त हमें आपके साथ देश विदेश की इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस के साथ। जी हाँ, भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए रूस से सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन भारत पहुंच गया है। वहीं न्यूयॉर्क सीनेट में 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव में महात्मा गांधी की विरासत को याद किया गया और अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान की सराहना की गई। और कैंसर उपचार में मिली है एक बड़ी सफलता। जी हाँ, कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव होंगे कम। IIT BHU के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा विशेष यौगिक बनाया है जो कैंसर सेल्स को निशाना बनाता है और स्वस्थ कोशिकाओं को, यानी जो आपकी सेफ सेल्स हैं, उसको सुरक्षित रखता है। और इस रिसर्च में कैंसर के मरीजों को मिलेगी राहत और सुकून। और ऐसे ही हेडबेट के साथ बच्चे ट्यून इन रही है रेनबो कानपुर के साथ, जहां चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। और एक ब्यूटीफुल ट्रैक कर रहा है आप सभी का इंतजार।

102.2 की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हैं आप और जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक बार फिर ब्यूटीफुल सॉन्ग के बाद। और चलिए जानते हैं क्या कुछ हो रहा है खास हमारे आसपास यानी सिटी कानपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में उठाया है एक बड़ा कदम। जी हाँ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज समेत 18 शहरों में लगभग 1725 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर और आरामदायक प्रदूषण मुक्त सफर की सुविधा मिलेगी। तो भाई जल्दी जल्दी कर लीजिए अपने सारे काम, बिकॉज कई इलाकों जैसे रैना मार्केट, कमला रिट्रीट, नवाबगंज, पनकी बी, ई ब्लॉक, एमआईजी, एचआईजी, सीलिंग हाउस, पनकी रोड, शिवली रोड में मरम्मत काम के चलते रहेगा शटडाउन, यानी इलेक्ट्रिसिटी रहने वाली है गुल कुछ घंटे, पर यहाँ म्यूजिक रहेगा ऑन। और एक सुनहरा मौका कर रहा है आपका इंतजार। जी हाँ, अगर आप AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। प्रदेश सरकार कौशल विकास मिशन ने ऑनलाइन निशुल्क प्रशिक्षण दे रही है। 3 घंटे के प्रशिक्षण के बाद ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। तो प्रशिक्षण के लिए आपको इस वेबसाइट यानी www.upstm.government.in पर आवेदन करना होगा। और यहाँ हमें करना है आपके पास तक एक ब्यूटीफुल ट्रैक पहुंचाकर। 102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हैं आप, 7:43 मिनट हो चले हैं और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर।

0: बने रहिए रेनबो कानपुर के साथ।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
2: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fm

0: love@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
1: की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है आपने, प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर। और चलिए अब स्पोर्ट्स की दुनिया में, जहां से अब ये आ रही है खास खबर। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान से एक बहुत बड़ी खबर और चौंकाने वाली आ रही है कि टीम इंडिया को मिलने जा रहा है एक नया T20 कप्तान। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए श्रेयस अय्यर को भारतीय T20 टीम की कप्तानी सौंपी जा रही है। वहीं क्रिकेट फैंस अपनी डायरी में नोट कर लिए खास बात, क्योंकि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर पूरे 12 मैच खेलने वाली है और इस लंबे दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर से T20 सीरीज के साथ होगी। इसके बाद टीम वहां 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी, यानी एंटरटेनमेंट का पूरा डोज मिलने वाला है। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में बस 8 दिन रह गए हैं शेष। 11 जून से होनी है इसकी शुरुआत और अनुभवी खिलाड़ियों पर सभी की नजरें होंगी। वहीं कई युवा सितारे भी पहली बार दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर अपनी छाप छोड़ने को हैं तैयार। और हम यहां बिल्कुल रेडी हैं आपके साथ एक और ट्रैक पहुंचाने को।

और हम चले हैं बस इस प्रोग्राम के वाइंड अप मोड की ओर, आपसे है बस इतना ही कहना। जी हाँ, कि कैसा रहने वाला है आज इस मौसम का मिजाज। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 50% और हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। वेल, मौसम को चलने दीजिए अपनी रफ्तार से, आप मिला ये कदम से कदम जिंदगी की रफ्तार के साथ मुस्कुराकर। Enjoy the last track of the program. Good morning, Kanpur, and from here, RJ Purnima says to all of you, take care, bye-bye, and have a nice day. और ट्रैक के उस पार हम ले चलेंगे आपको हमारे दिल्ली केंद्र देश विदेश की न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। So stay tuned with FM Rainbow, Kanpur.

0: मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट रीजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक

0: एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से

0: तीन लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेज अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to hold talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah to chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong. US Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
4: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council, NEC, in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism, agriculture and horticulture, investment promotion and handloom and handicrafts. Union Minister for Development of Northeastern Region, Jyotiraditya Sindhya, Minister of State Sukanta Majumdar, governors and chief ministers of all the 8 northeastern states, other members of NEC and senior officers of central and state governments will be present at the meeting. U.S. Secretary of State Marco Rubio told lawmakers that the United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. Responding to questions about his recent visit to India during a House Foreign Affairs Committee hearing last night, Rubio said Washington and New Delhi are nearing completion of the pact. We have a report.
5: Secretary Rubio repeatedly highlighted India as an important strategic partner in the Indo-Pacific, signaling growing momentum in economic ties between the world's largest and oldest democracies. He said his visit to India also included discussions with counterparts from the Quad, a grouping comprising India, the United States, Japan, and Australia. Mr. Rubio indicated that the four countries are moving beyond dialogue

102.2 की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है आपने और ये वक्त प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल का। आज की ये महफिल समर्पित है उस जादुई आवाज को जिसने अपनी मधुर गायकी से करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई। आज हम मना रहे हैं महान पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम की जन्म जयंती। तो आइए आज की इस सुरीली सुबह में याद करते हैं उस महान गायक को जिनके गीत आज भी हमारे दिलों की धड़कनों के साथ गुनगुनाते हैं। उनकी आवाज में सजे कुछ यादगार नगमे हम पहुंचा रहे हैं आप तक हमारे आज इस प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल से। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज, असद भोपाली का लिखा यह गीत, राम लक्ष्मण का संगीत, फिल्म का नाम मैंने

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल और इस प्रोग्राम को लेकर मैं आरजी पूर्णिमा हूँ आपके साथ। और इस महफिल का ये अगला नगमा हम आपके हैं कौन फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़, एसपी बाला सुब्रमण्यम, इन आवाज़ों से सजा है ये गीत। देव कोहली के गीत लिखे हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

102.2 की फ्रिक्वेंसी को ट्यून किया है आपने, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल और साथिया तूने क्या किया। ये खूबसूरत संगीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा है ये गीत, आनंद बख्शी के संगीत से सजा।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की जन्म जयंती पर उनके यादगार गीतों से सजी है आज की ये महफिल सुरों की। वंश मूवी का ये गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में समीर का लिखा और आनंद बख्शी के संगीत से सजा।

अंदाज अपना अपना, इस फिल्म का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, जिसके लिरिक्स लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने और कंपोज किया तुषार भाटिया ने।

0: तो दोस्तों एसपी बाला सुब्रमण्यम की मधुर आवाज में सजे इन सदाबहार गीतों के साथ आज की सुरों की पुरानी महफिल यहीं होती है संपन्न। इस प्रोग्राम से आरजी पूर्णिमा को दीजिए इजाजत, पर बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ।
1: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

102.2 की म्यूजिकल फ्रिक्वेंसी, और इस फ्रिक्वेंसी पर हैं अलग अलग रंग। मैं हूं आरजे पूर्णिमा, और अब आपके साथ प्रोग्राम रसबहार में हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर शहर की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक खुशबू और अपना एक अलग अंदाज।

पर आज मैं लाई हूँ आपके लिए, पर मैं आज लाई हूँ आपके लिए इस प्रोग्राम में शहरों की कुछ ऐसी कहानियां जिसे हम देखेंगे बॉलीवुड की नजरों से। कहीं मुंबई की भागती सड़कों में सपनों की चमक है तो कहीं लखनऊ की गलियों में तहजीब की मिठास। कहीं कश्मीर की वादियों में मोहब्बत गूंजती है तो पंजाब की मिट्टी में ढोल की थाप। और बॉलीवुड उसने इन शहरों को सिर्फ कैमरे में नहीं कैद किया बल्कि गीतों, कहानियों और किरदारों में हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो आइए आज रसबहार में चलते हैं एक शहर और बॉलीवुड के इस खूबसूरत सफर पर हमारे साथ।

0: 102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है आप प्रोग्राम सुन रहे हैं रसबहार और इस प्रोग्राम को लेकर मैं अर्जी पूर्णिमा हूँ आज आपके साथ।
1: किधर है?
2: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट,
1: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
2: आरबीआई कहता है
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हैं आप, प्रोग्राम सुन रहे हैं रसबहार। एक शहर और बॉलीवुड, इस पर बेस्ड आज हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम। और दोस्तों देखिए ना, अगर बॉलीवुड एक दिल है तो उसकी धड़कन है मुंबई। जी हाँ, वो शहर जहाँ हर रोज हजारों लोग आंखों में सपने लेकर आते हैं, किसी के हाथ में पोर्टफोलियो, किसी के दिल में गाने और किसी की आंखों में हीरो बनने की चमक। कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं, शायद इसीलिए बॉलीवुड की कहानियां भी यहाँ हर रात जन्म लेती हैं।

जी हाँ, और जिक्र यानी अब जिक्र उस शहर का है जहाँ बातों में भी अदब होता है, जहाँ आप और जनाब सिर्फ शब्द नहीं संस्कृति हैं। जी हाँ, बात हो रही है लखनऊ की। बॉलीवुड ने जब भी शायरी, नजाकत और पुराने दौर की मोहब्बत दिखाई, लखनऊ की गलियां याद आई। उमराव जान की वो अदाएं, पाकीजा की वो नफासत और इश्क की कहानियां बयां करते खूबसूरत गीत।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं और हम कहते हैं कि चल कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूम आते हैं। जहां है तो बस मोहब्बत।

एक समय था जब बॉलीवुड में प्यार का मतलब ही था कश्मीर की हसीन वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, झीलें और उनके बीच फिल्माए गए रोमांटिक गीत। कश्मीर की कली से लेकर जब तक है जान तक, कश्मीर ने हर प्रेम कहानी को बहुत ही खूबसूरती से बयां किया। के फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है रसबहार, जिसे लेकर आरजी पूर्णिमा है आज आपके साथ।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय

संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
1: की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हैं आप, 9:31 प्रोग्राम सुन रहे हैं रस बहार, जहां एक शहर और बॉलीवुड कह दी उसकी ये खूबसूरत कहानी। हर एक शहर उसकी मिट्टी में बसी है अपनी ही अलग कहानी, और अब बात उस मिट्टी की जहां हर बात में है जोश। जी हाँ, जहाँ दुख भी गिद्धा बन जाता है और खुशी तो ढोल पर खुद ब खुद नाच उठती है। पंजाब और बॉलीवुड का रिश्ता हमेशा से रंगों से भरा रहा है, वीर जारा की मोहब्बत हो या जब वी मेट की चुलबुली गीत। पंजाब ने फिल्मों को सिर्फ लोकेशन नहीं, दिल भी दिया है। जी हाँ, और दी है पंजाबी बीट और ढोल नगाड़ों की गूंज।

और दोस्तों चलते चलते आ चले हैं उस शहर की ओर जहां सुबह गंगा की आरती से होती है और शाम घाटों की रोशनी में जैसे पूरी जिंदगी ठहर जाती है। जी हाँ, बात हो रही है वाराणसी यानी बनारस की। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। यहाँ की गलियों में संगीत है, बातों में अपनापन और हवा में आध्यात्म। बॉलीवुड ने भी इस शहर की आत्मा को कई बार बड़े खूबसूरत अंदाज में पर्दे पर उतारा। रांझणा में बनारस की गलियों वाला प्यार तो मसान में इसी शहर का दर्द, सच्चाई और जीवन का दर्शन देखने को मिला। जी हाँ, जब घाटों पर शाम उतरती है तो लगता है जैसे समय भी कुछ पल ठहर गया हो। कहते हैं बनारस में सिर्फ लोग नहीं रहते, यहाँ यादें, संगीत और कहानियां भी सांस लेती हैं।

सो माय डियर लिसनर्स, आज हमने जाना कि बॉलीवुड सिर्फ कहानियां नहीं दिखाता, वो शहरों की रूह को भी बड़े पर्दे पर उतार देता है। हर शहर की अपनी धुन है और बॉलीवुड ने उन धुनों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। आई होप इंजॉय कि आपने पूर्णिमा के साथ ये खूबसूरत सफर, और इस खूबसूरत एहसास के साथ मैं इस प्रोग्राम को करती हूँ वाइंड अप। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी भी किसी खूबसूरत फिल्म से कम नहीं।

और अब डाक अदालत से संबंधित एक आवश्यक सूचना सुनिए। चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु त्रैमासिक डाक अदालत का आयोजन चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे चीफ पोस्टमास्टर के कक्ष में किया जाएगा। डाक अदालत में प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित समस्याओं, शिकायतों, विशेषता स्पीड पोस्ट सेवा, पंजीकृत वस्तुएं, बचत बैंक, धनादेश सेवा, पेंशन एवं अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। ग्राहक अपनी समस्याओं, शिकायतों के निवारण हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं, शिकायतों के पूर्ण विवरण सहित हेतु चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर के कार्यालय में दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार तक अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त शिकायतों पर डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। डाक अदालत में सुनवाई हेतु नए मामले नहीं लिए जाएंगे। केवल उन्हीं मामलों को विचार हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है जिनका निस्तारण किसी कारणवश नहीं हो पाया अथवा कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। पूर्व में प्रेषित शिकायत का विवरण भी प्रमाण स्वरूप साथ में संलग्न किया जाए। कृपया शिकायती पत्र लिफाफे के ऊपर डाक अदालत

102.2 की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हैं आप और वक्त अब लोक रंग प्रोग्राम का, जहां गूंजते हैं हमारे लोकगीत, हमारी परंपराएं और अपनी संस्कृति के अनमोल रंग। तो हो जाइए तैयार लोक धुनों, लोक कथाओं और अपनी मिट्टी की महक से भरी इस खूबसूरत संगीत के लिए।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नाथ मारी दीजो गिरधारी, इस लोकगीत को आइए सुनते हैं लोकरंग प्रोग्राम में और सीमा की आवाज में। ये है अंतिम लोकगीत और इसी के साथ पूर्णिमा को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से। मिलूंगी आपसे ठीक 11 बजे हमनवार प्रोग्राम में, आज मेरी हमनवार जे सीमा के साथ।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के महानिदेशक ने बताया कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में लगभग 29 लाख अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा की सुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ ही किसी भी स्तर पर समझौता न होना पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी अभ्यर्थी को अनावश्यक कठिनाई या परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतरजनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए।

वाराणसी में आज और कल ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी संस्कृति सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित होंगे। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को मिर्जापुर के साथ अब चित्रकूट जनपद का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले मंत्री नंदी मिर्जापुर के साथ बांदा जनपद के प्रभारी थे। ये जिम्मेदारी उन्हें सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, शिकायत निवारण और विकास कार्यों की सीधी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सौंपी गई है। मंत्री नंदी के प्रभार सौंपे जाने पर मुख्यमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी संभाग के कई स्थानों पर तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
2: चलते रे इश्क में पड़ जाते
3: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
4: आपके अपने रेनबो की जबानी।
5: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
6: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
7: ये हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
1: 100.7 FM रेनबो,
8: धड़कन लखनऊ की।

10:04 का समय और प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग, और इस प्रोग्राम में आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और दोस्तों, इस एक घंटे बस म्यूजिक म्यूजिक और सिर्फ म्यूजिक आपके साथ होगा, तो बस दिल थाम के बैठिए और अपने रेडियो को ऑन कर बैठिए हमारे साथ, यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ जुड़े रहिए अगले घंटे बहुत प्यारे प्यारे से गीत आपके लिए सुपर हिट सॉन्ग में, और आपका हमारा ये प्यारा सा साथ जिसमें आज आपका साथ निभाने के लिए आपका अपना दोस्त रतन आपके साथ है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 10:31 का समय हो चुका है। प्रोग्राम चल रहा है सुपर हिट सॉन्ग, और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ है आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात, और आप अपने दिल की बात भी हम तक पहुंचा सकते हैं अभी थोड़ी देर में जिस अगले प्रोग्राम में, ठीक है। तो अभी तो आपका ये फेवरेट शो चल रहा है जिसका नाम है सुपर हिट सॉन्ग, और अगला गीत आपके लिए

दोस्तों 10:54 का समय हो चुका है और ये समय बिल्कुल पूरी तरह से इशारा कर रहा है कि सुपरहिट सॉन्ग को हम यहीं पर वाइंड अप करें, क्योंकि जब तक इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप नहीं करेंगे अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात कैसे करेंगे। तो न्यूज ब्रेक के बाद मिलते हैं आपके अपने फेवरेट शो संदेश आपके गीत हमारे में। आपका हमारा ये साथ यूं ही बना रहे, बस हम यही दुआ करते हैं, बस हमारे साथ इसी मुस्कुराहट के साथ जुड़े रहिए। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आप सभी लिसनर्स का दिल से स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम हम नवा में, जहां आप सभी तक हम पहुंचाते हैं बहुत सारी जानकारियां एक नहीं दो आवाजों के साथ। और आज मेरे साथ है कौन सी दूसरी आवाज?
1: जी हाँ, मैं हूँ सीमा और हमारे तमाम लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है हम नवा पे। और सच बताऊँ पूर्णिमा, जितना इंतजार हमारे लिसनर्स करते हैं उतना हम भी करते हैं, तो हो जाइए आप भी तैयार। और फिलहाल हम तो यहाँ से तैयार है ही है अपने टॉपिक्स के साथ में।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज सबसे पहले सीमा हम बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास, सबसे पहले बात करेंगे आकाशवाणी के जश्न की, यानी आकाशवाणी 90 और बचपन की यादों से, वो कैसे है जुड़ा हमारे साथ। साथ ही बाल साहित्य पर बहुत सारी बातें हैं हमारे साथ, कहानियां, कविताएं, कॉमिक बुक्स, ये कैसे आपको लुभाती हैं, इस पर भी होंगी हमारी बहुत सारी बातें।
1: और इसके साथ ही हम बात करेंगे आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज 4 जून को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपसे खास बात करेंगे। साथ ही एक जो है इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आएंगे आपके लिए।
0: और भी बहुत कुछ है, और इसके लिए बस बने रहना है आपको हमारे साथ, तो हो जाइए बिल्कुल तैयार, क्योंकि आपको करनी है हमारे प्रोग्राम्स में हमें मेल, तो हमारी

0: मेल आईडी है, हमारी मेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com।
1: तो रहिएगा साथ, क्योंकि हमारे और आपके साथ जी हाँ बहुत कुछ खास होने वाला है फिलहाल प्रोग्राम में। और अभी शुरुआत एक अच्छे से गाने के साथ हम कर रहे हैं शुरुआत।

0: और देखो सीमा, हमारे लिसनर्स भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, साथ ही प्यार करते हैं आकाशवाणी से, है ना?
1: बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस वक्त तो हम सब जश्न मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 सालों का। और आज हम क्या बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। यादों के झरोखों में क्या बात है आज खास?
0: बिल्कुल, क्योंकि आकाशवाणी की यात्रा में ना देखो अनेक महान उद्घोषक और कलाकार हैं जिनकी आवाजें अमर हो गई। उनकी आवाज सुनकर ही जो श्रोता हैं कार्यक्रम पहचान लेते थे, और यही कारण है सीमा की रेडियो केवल एक माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं का रिश्ता बन गया है।
1: बिल्कुल, आज डिजिटल युग में भले ही मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हों, लेकिन आकाशवाणी का महत्व और भी आत्मीयता आज भी बरकरार है। FM, डिजिटल स्ट्रीमिंग और मोबाइल ऐप के माध्यम से नई पीढ़ी तक अपनी पहुंच बना रहे हैं।
0: बिल्कुल, और आकाशवाणी का ये जो 90 साल का जश्न है, ये केवल एक वर्षगांठ नहीं बल्कि उन सुनहरी यादों का एक उत्सव है जिन्होंने हमारे बचपन को संगीत, कहानियों, ज्ञान, संस्कारों सब ने मिलकर के समृद्ध बनाया है। और सच कहा जाए तो आकाशवाणी भारत की आवाज थी और हमेशा रहेगी।
1: यादों की पोटली खोले तो जो है कहानियां हैं, गीतों की सरगम है, कितनी मिठास है इन सबों में। कहीं समाचारों का जो है विश्वास है बचपन से ही आज तक, जो हमारे साथ रही है, निभाती आई है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है इसके साथ और रिश्ता हमारे श्रोताओं का जो है
0: गहरा है,
1: अटूट और गहरा होता चला गया है।
0: बिल्कुल, और ये रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। और इसका जो एक कहते हैं ना प्रमाण है, वो हमारे साथ हम हर रोज देखते हैं जब हमारे लिसनर्स के मेल हम तक पहुंचते हैं और बहुत ही खूबसूरती से वो लफ्जों का इस्तेमाल करके उसे सजा संवार कर हम तक पहुंचाते हैं। तो ये उनकी कहीं ना कहीं दिल की भावनाएं हैं जो उन्हें, मतलब जो वो अपने उस हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। तो ये जो रिश्ता है ना आकाशवाणी, ये हम सब के दिलों की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज है।

0: तो बस इसी तरह गाते रहें, गुनगुनाते रहें, आप हमारे साथ रहें, आकाशवाणी का साथ आपके साथ हमेशा रहे, हम तो यही कामना करेंगे।
1: बिल्कुल, और यूं ही जश्न मनाते रहें हमारे साथ। और देखो ना सीमा, हमारे जो ये जिंदगी है और जिंदगी में बहुत ही खूबसूरत सी जिंदगी से नवाजा है उस रब ने, और इसमें जो ना सबसे जो खूबसूरत यादें हैं वो जुड़ी होती हैं बचपन से। जीवन का वो सुनहरा पड़ाव है जहाँ कल्पनाओं को पंख मिलते हैं और नन्ही नन्ही आंखों में न जाने कितने ही सपने आकार लेते हैं। एक छोटी सी बात भी जहाँ नई दुनिया रच देती है, कभी दादी नानी की कहानियाँ, कभी चंदा मामा की बातें, तो कभी कविताओं की पंक्तियाँ। ये सब क्या है, हमारे बचपन की सबसे कीमती धरोहर ही तो है।
0: बिल्कुल पूर्णिमा, बचपन की दुनिया कितनी ही अनोखी होती है। कहानियों में बोलते हुए जानवर होते हैं, कविताओं में चंदा मामा मुस्कुराते हैं, कॉमिक्स के कैरेक्टर की हम बात करें तो कितनी ही रोमांचक यात्राएं कराते हैं। इनकी इस दुनिया को शब्दों के रंगों से ऐसा सजाते हैं बाल साहित्य, जो बच्चों में केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं बल्कि बच्चों के मन में संवेदनशीलता, नैतिकता, जिज्ञासा और रचनात्मकता के बीज होने का एक सशक्त माध्यम है।
1: मतलब ये इतनी सारी चीज़ें हैं ना जो उनमें एक साथ जो है अंदर उसमें परिपक्व होती हैं। और इसी के साथ साथ ना देखो, पंचतंत्र की कहानियां हैं, हितोपदेश, तेनालीराम की कहानियों से लेकर के चाचा चौधरी को भला हम कैसे भूल सकते हैं ना, जहाँ पर इन कॉमिक्स में जब वो पिक्चर्स के साथ हम देखते थे उसमें साबू का किरदार हो गया चाचा चौधरी की, वो
0: अच्छा एक चीज इन कैरेक्टर के साथ में जो खास होती थी, देखिए हम पढ़ने से पहले उन कैरेक्टर्स, वो जो चित्र होते थे उन पे हमारी नजर सबसे पहले जाती थी, तो अलग अलग इमेजिनेशन हम बनाने लगते थे अपने जहन में, दिमाग में नहीं क्या क्या चीजें चलने लगती थी।
1: और कभी नहीं भूलते थे कि जैसे ही नाम आता था चाचा चौधरी का तो उनकी वो बड़ी बड़ी मूछें उन बुक्स में बनी हुई सब याद रहती थी, और साबू का वो जो विशाल का एक शरीर बना हुआ था, ये सब बच्चों को लुभाने वाली सब जो कहानियां थी वो अपनी तरफ हमेशा खींच लेती थी।
0: अच्छा एक छोटी सी कविता मुझे आज भी याद आई, आपने भी थोड़ा मेमोराइज किया होगा, पढ़ा होगा इस चीज को, उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाए। देखिए कितनी सारी आज बाल साहित्य की बात हो रही है तो हमें भी अपने बचपन की यादें ताजा हो रही है।
1: हाँ, और ऐसी ही कहानियों में नंदन, चंपक ऐसी बहुत सारी बाल पत्र पत्रिकाएं हैं जिन्होंने ना बाल साहित्य, हम कह सकते हैं ना कि जो बाल साहित्य ना वो दुनिया के बच्चों के लिए ज्ञान, मनोरंजन और संस्कार सबका एक अद्भुत संगम है। और ये सारी चीज़ें ना आज भी कहीं ना कहीं हम उन्हें उनके पास रहना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर हम लोक कथाओं परिकथाओं की बात करें तो बच्चों को बड़ी ही अद्भुत दुनिया की ओर जो है ये लेके जाती हैं, उनकी सैर कराती हैं,

0: जहाँ एक अलग ही इमेजिनेशन होती है, कहानी सुनते सुनते वो किस दुनिया में खो जाते हैं नहीं। तो उसी के साथ ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज, कविताएं बच्चों को ना केवल भाषा और अभिव्यक्ति का कौशल प्रदान करती हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा भी देती हैं।
1: बिल्कुल, और हम सब ने सीमा अपने बचपन के साहित्य को ऐसे ही जिया है, और आज के बाल साहित्य की बात करें ना तो पहले की तुलना में कहीं और अधिक विविध और आधुनिक हो गया है। बिल्कुल, और आज बच्चों के लिए ना केवल कहानियां और कविताएं ही नहीं बल्कि विज्ञान, पर्यावरण, अंतरिक्ष, तकनीकी, जो साहसिक रोमांच है और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी पुस्तकें भी हमारे आसपास हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल, बच्चों की पत्रिकाएं, चित्र कथाएं, कॉमिक्स बुक, आज ऑडियो स्टोरीज और ई बुक्स जो है बाल साहित्य का हिस्सा बन चुकी हैं। आज के डिजिटल युग में डिजिटल माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के कारण बच्चों को पढ़ने की आदतों में हालांकि बदलाव आया है, फिर भी अच्छी बाल पुस्तकें, कहानियां और पत्रिकाओं का महत्व आज भी बना हुआ है।
1: बिल्कुल सीमा, और देखो ना अब जो है बच्चों की वेकेशंस हैं तो ये बहुत अच्छा एक जरिया है कि हम बच्चों को थोड़ा सा उनके साथ इन्वॉल्व हों, उनके स्क्रीन टाइम को कम करने का बहुत ही बढ़िया सा एक माध्यम है।
0: हाँ, और ये एक मनोरंजन भी है उनके लिए
1: कि हम इन कॉमिक्स बुक को दोबारा इनके साथ एक बार जिए और बच्चों के साथ साथ ना खुद भी उन लम्हों को जिए जो कहीं हम मिस करते हैं। हम जो आज डिजिटल ये जमाना है तो हम उन्हें उन्हीं चीजों को कह सकते दूसरे तरीके से उनके सामने जो है प्रस्तुत कर सकते हैं और एक माध्यम बन सकते हैं उनकी प्रेरणा का, उनके एक दिमागी विकास का, है ना।
0: तो अगर बच्चे और उनके पेरेंट्स गूगल करना चाहते हैं तो ये पोर्टल है प्रथम, यहाँ पे भी उनके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक ई बुक्स मौजूद हैं। मैं कहानियां हिंदी बाल साहित्य कहानियों का बड़ा डिजिटल संग्रह है, और इसके साथ ही बच्चों के लिए तमाम सारे और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कहानी और कॉमिक्स का संग्रह उपलब्ध है। कुछ डिजिटली लोकप्रिय में पढ़ी जाने वाली पुस्तकों की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अमर चित्र कथा, पंचतंत्र, हितोपदेश, जंगल बुक, एलाइजिस, एडवेंचर इन वंडरलैंड सहित और भी इंटरेस्टिंग बाल साहित्य आज भी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं।
1: बिल्कुल, और बाल साहित्य का एक और मंच है स्टोरी वीवर, जहाँ हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में हजारों जो है फ्री में हमारी बाल पुस्तकें मौजूद हैं जो बच्चों की कल्पनाओं को नई उड़ान दे रही हैं और पढ़ने का एक नया रोचक अनुभव भी। तो आज भी ना बच्चों के सामने मनोरंजन के अधिक डिजिटल माध्यम जो है मौजूद हैं, बस हमें उन्हें उन तक पहुँचाना है कि हम उनके स्क्रीन टाइम को कम करके जो हम इतना टाइम घंटों बिता देते हैं सिर्फ मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते, उन बच्चों के साथ समय को बिताएं और बाल साहित्य के महत्व के साथ साथ जो एक मॉडर्नाइजेशन हो गया है उसे भी उनसे रूबरू करवाएं।
0: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उनका बचपन भी आगे इन्हीं यादों के साथ यादगार बनने वाला है, बन जाएगा जब ये वक्त बीत जाएगा तो ये यादें रह जाएंगी। फिलहाल एक खूबसूरत से गाने के साथ प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे, और अभी ये गाना
1: आपके लिए।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।

0: बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना हमने सुना और एंजॉय भी किया होगा हमारे लिस्टनर्स ने हमारे साथ।
1: सही बात है, और हमारे स्पेशली बच्चों ने भी किया होगा। तो क्या था इसमें, पहली क्या थी जरा उसको आप बोल के बताएंगी?
0: हाँ सीमा, कोशिश कर सकते हैं। ये थी पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता।
1: Exactly. थोड़ा टफ होता है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कितनी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती है जो बच्चे हमारे स्पेशली एंजॉय करते हैं ऐसी ही चीजों को।
0: हमारे पेरेंट्स भी, हमारे भाई बहन भी, जो भी है ना घर पर आपके फैमिली मेंबर्स इस तरह के जो है पहलियों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और बहुत ही प्यारे से माहौल के साथ वो खुद को कनेक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: फिलहाल आप है कनेक्ट रेनबो कानपुर के साथ जहाँ इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम हमनवा, और इस प्रोग्राम को लेकर मैं पूर्णिमा और मेरे साथ है आरजी सीमा।
1: जी हाँ, तो अब बच्चों की बात चल रही तो खास दिन आज है 4 जून, और इस जून से रिलेट करता हुआ ये अगला जो विषय हमारा,
0: बिल्कुल, जो हमारे बच्चों की ही कहीं ना कहीं सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनके उनको ही ये दिन पूरा समर्पित है, जो युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, घरेलू हिंसा या भी किसी भी तरह के आक्रमण या अत्याचार का शिकार होते हैं।
1: इसका उद्देश्य दुनिया को याद दिलाना है कि किसी भी संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत अक्सर हमारे मासूम बच्चे चुकाते हैं, और ये भी जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में अब।
0: बिल्कुल सीमा, और देखो ना, साल 1982 में यूनाइटेड नेशंस महासभा ने 4 जून को इस दिवस को रूप में मनाने का निर्णय लिया, और उस समय लेबनान और फिलिस्तीन के संघर्षों में जहां बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हुए, और बाद में इसका जो दायरा था वो पूरी दुनिया के उन बच्चों तक बढ़ गया जो कि किसी भी प्रकार की हिंसा, युद्ध या मानसिक शारीरिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे।
1: और आज इतना ही इम्पोर्टेंट ये डे है क्योंकि आज दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष जारी है, ऐसी हालात में बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
0: बिल्कुल सीमा, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, जब कहीं कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो वहां पर उस समय सबसे ज्यादा जो सफर है, जो जिन पर असर होता है वो हमारे मासूम बच्चे ही हैं, और इन जो कुछ ऐसी योजनाएं भी सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि उनकी सुरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाए। तो एक ऐसी योजना है संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ की पहल है जिसमें प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर बच्चों को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और मानसिक सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर एक अभियान का चलाना भी है।
1: और इन सारी योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को हिंसा, शोषण और उत्पीड़न से बचाना है ताकि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सके, और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत भी संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार के सिद्धांतों का समर्थन करता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है सुरक्षित बचपन और खुली मुस्कान और सुनहरे सपने।
1: और इसी के साथ ही कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक यहाँ पे ईमेल हम तक पहुंच चुकी है, किन की है शेयर कर लेते हैं आप सभी से।
0: बिल्कुल,
1: और ये हमारे श्रोता हैं टाइगर

0: शर्मा जी, बहुत ही अच्छा सा संदेश इन्होंने यहाँ पे दिया है कि जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों से शिकायत करने से अच्छा हम खुद को बदल लें, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं।
1: क्या बात है, बहुत ही गहरी बात और खूबसूरत बात इन्होंने लिखी है। साथ ही इन्होंने पूर्णिमा मैम को और सीमा मैम को नमस्कार लिखा है। साथ ही लिखा है कि हमारे मॉर्निंग के प्रोग्राम की इन्होंने तारीफ लिखी है कि गुड मॉर्निंग प्रोग्राम, बहुत अच्छा था, लाजवाब था और प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे। साथ ही इन्होंने आकाशवाणी से अपने अनुभव का भी मैसेज हमसे शेयर किया है।
0: जी, आकाशवाणी से इनका रिश्ता 28 सालों से जुड़ा हुआ है और हमेशा ये चाहती है कि ये जो रिश्ता है ये हमेशा ऐसे ही इनके साथ बना रहे। सभी आरजेस की इन्होंने तारीफ करी है और कार्यक्रमों की भी तारीफ की है।
1: बिल्कुल, तो आप ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए फिलहाल FM रेनबो पर हमारा ये प्रोग्राम हमनवा, और सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप? तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक बार फिर आप सभी का तमाम स्वागत है हमारे आज के हमनवा शो पर। और आज के इस शो पर मैं सीमा और मेरे साथ मेरी हमनवा पूर्णिमा है।
2: बिल्कुल, और हम जो एक बार ना ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं और हमारी बहुत सारी बातों के साथ।
1: हाँ, तो पूर्णिमा, अब हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्पेशली है तो पब्लिक एसेट, लेकिन हम सभी के लिए बेहद खास है। जरा सोचिए, अगर एक सुबह आप घर से निकले और सड़कें जो है हमारी सही हालत में ना दिखे, पार्कों में गंदगी दिखे, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन का भी यही हाल हो, तो क्या फील करेंगे और हमारे लिसनर्स भी क्या फील करेंगे? क्या उनका जीवन जो है इतना इजी हो पाएगा? शायद नहीं हो पाएगा।
2: बिल्कुल सही, क्योंकि यूं तो हम अपने घर की ना चीजों को बहुत ध्यान रखते हैं, सजा संवार कर रखते हैं, क्योंकि वो हमारी अपनी होती हैं, है ना। लेकिन क्या कभी हम इन सुविधाओं के बारे में सोचते हैं जिनका इस्तेमाल हम सभी हर दिन करते हैं, हर पल करते हैं, वो सार्वजनिक संपत्तियां जो समाज के हर व्यक्ति की सुविधा के लिए बनाई गई हैं।
1: वे सार्वजनिक संपत्तियां जिनको सरकार बनाती जरूर है, लेकिन वास्तविक स्वामी कौन होता है? वो हम होते हैं, जिनका संरक्षण केवल गवर्नमेंट का ही नहीं होता है, बल्कि हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। जब हम इनका सही उपयोग करते हैं और इन्हें नुकसान होने से बचाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण कर रहे होते हैं। जो केवल ईंट पत्थर और सीमेंट से बनी ही स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, वो हमारी अपनी सामूहिक पूंजी होती हैं।
2: बिल्कुल, और जितना ध्यान, जितना ख्याल हम अपने घर के चीजों का रखते हैं ना सीमा, हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर घर से बाहर हैं, निकल रहे हैं, हमारे पार्क के पास है, हम कुछ भी खाते चले जा रहे हैं और उसका जो रैपर है या छिलका है हम वहीं पर फेंक देते हैं और बिना ये सोचे समझे कि हम अपने आसपास खुद ही गंदगी को कहीं ना कहीं फैला रहे हैं। और ऐसे ही देखो ना, रेलवे स्टेशन पर भी बहुत सारी ऐसे हमें कॉर्नर्स दिख जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, जहां पर जो है गंदगी कहीं ना कहीं रैपर्स दिख जाते हैं, छिलके दिख जाते हैं, पानी के जो प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं, हम वो उन्हें देख

0: आखिर फेंकने वाले तो हम सभी में से कोई ना कोई है ना, तो सीमा क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उन्हें साफ रखें, ताकि एक जो पॉजिटिव एक जो एनर्जी है, जो वाइब है, वो हमारे चारों
1: बिल्कुल
0: तरफ।
1: और ये हमारी पर्सनल हाइजीन के लिए भी बेहद जरूरी है। स्वच्छता होगी तो देखिए उससे बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। तो ये जितनी संपत्ति है उसी के साथ ही हमारे जो है वातावरण के लिए भी बेहद जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज है कि ये एसेट, मतलब कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो कोई भी आएगा तो वहां सफाई करेगा, आके वहां पे स्पेशल मैन पावर आएगा। हाँ, भाई ये हमारे घर जैसा ही है।
0: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखो ना कि रोज सुबह सफाई होती है बहुत जल्दी। अगर आप प्लेटफॉर्म में कभी पहुंचे होंगे तो देखा होगा कि झाड़ू लगाई जा रही होती है, उसे फिर डस्टबिन में थ्रो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये छोटा सा मैसेज भी होता है कि उनकी मेहनत का, कि हम उनकी उस मेहनत को सम्मान दे। सीमा, जो लगे होते हैं काम, जो कर्मचारी हैं वो लगे हैं, और हमारा भी फर्ज बनता है कि एक कदम हम बढ़ाएं और अपनी उस धरोहर को, जो हमारी सबकी संपत्ति है, उसका हम खासा ख्याल रखें।
1: बिल्कुल, ख्याल रखने की जरूरत भी है ऐसी जगहों पे जब पब्लिकली हम अपना फैमिली के साथ में निकलते हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं वो हमारे समाज को जो है स्वच्छ बनाती हैं, हमको सभ्य बनाती हैं।
0: बिल्कुल, तो और देखो ना, ये कई सारे ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं, ये एसेट्स हैं जो पूरे समाज के साथ हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होती है। और ये क्यों ना हम सब आज के दिन ये एक प्रण लें, खुद से एक वादा करें ना कि हम अपने आसपास, अपने गली, अपने शहर, अपने देश के आसपास जहाँ कहीं भी हम जाएंगे ना, तो दूसरों को भी अगर हम करते हुए देखते हैं ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं मैसेज देंगे कि ये हमारी ही संपत्ति है और
1: बिल्कुल
0: ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल पूर्णिमा, सोच बदलने की हमको यहाँ जरूरत है, क्योंकि ये देश भी हमारा अपना घर है, हमारी शहर की गलियां हमारी अपनी है, तो बेहद जरूरी है इनकी देखभाल करना। तो ऐसी एक जागरूक नागरिक हमारे साथ में जुड़ रही है, वो अपना संदेश आप सभी के साथ शेयर कर रही है। रश्मि जी हैं, आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका।
2: नमस्कार, मैं रश्मि एक बैंक कर्मी के रूप में आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ। जिस तरह हम अपने धन और संसाधनों की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। सड़कें, पार्क, सरकारी भवन, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक सुविधाएं हमारी सामूहिक पूंजी हैं। इनके रखरखाव पर देश का धन खर्च होता है जो हम सभी के योगदान से आता है। इसीलिए इनका सही उपयोग करें, स्वच्छता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की क्षति से बचाएं। एक जागरूक नागरिक के रूप में सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना देश के प्रति हमारी सच्ची जिम्मेदारी है। आइए मिलकर एक स्वच्छ, सुंदर और जिम्मेदार भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।
1: तो बहुत ही अच्छा संदेश था आपका, एंड आई होप कि अब से हम जो थोड़ी बहुत चीज़ें करते होंगे वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इस जो पब्लिक एसेट है हमारी, उसको अपना ही समझेंगे, अपने घर की तरह समझेंगे और अपने शहर को जी हाँ स्वच्छ बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और इस प्यारे से संदेश के बाद अब वक्त है सीमा एक खूबसूरत से गीत को हमारे लिसनर्स तक पहुँचाने का।

0: ये कितनी तरह का, कितने प्रकार का पान आप लगाते हैं?
1: बिल्कुल, और
2: एक तरीके का लगाते हैं, बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा।
0: अच्छा, हमारे क्या बात है, तो जब भी हमारा उधर आना होगा तो हम जरूर।
1: और हम नवा प्रोग्राम में हमारे चले हैं हमारे स्टार्टअप सेगमेंट की ओर। तो वो सीमा, हम बात करते हैं एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी की जो हमारे लिसनर से हम शेयर करना चाहते हैं। और देखो ना, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी सुरक्षित है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों को जो है नौकरी की सीमाओं में नहीं बांधते, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी बन जाते हैं और दूसरों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। और ऐसी ही एक हमारे कहानी है मेरठ की, एक बेटी है प्रेरणा कालरा की।
3: तो कुछ उन्होंने ऐसे ही खास कर लिया है। प्रेरणा एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी कर रही थी, उनके पास अच्छा वेतन था, सुरक्षित करियर था, आरामदायक उनका जीवन था, पर उनके मन में हमेशा आता था कि कुछ ऐसा करें कि लोगों की समस्या का समाधान हो और रोजगार के अवसर भी मिले।
1: बिल्कुल, उन्होंने देखा कि ऑफिस, हॉस्पिटल, जो फैक्ट्री हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, उन पर लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली चाय, कॉफ़ी या दूसरे जो ड्रिंक्स हैं, दूसरे पेय पदार्थ हैं, वो आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो उन्होंने ना वेंडिंग मशीनों के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, एक स्टार्टअप तैयार किया। और फिर उसके बाद
3: जी हाँ, उन्होंने इस वेंडिंग मशीन के जरिए चाय, कॉफ़ी, पेय पदार्थ उपलब्ध, जो शुद्ध रूप से उपलब्ध कराए उन्होंने। आज उनकी कंपनी देश के कई शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है और लोगों को रोजगार भी वो दे रही हैं।
1: तो सीमा सोचो ना, कर उन्होंने भी हार मान

0: नहीं होती या कुछ सोचा ना होता और मन में ये सोच लिया होता कि क्या करना है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, एक अच्छा वेतन है, जो जिंदगी है वो आराम से जो है कट रही है, हम जी रहे हैं, तो और एक नई शुरुआत ना करी होती तो क्या हम उनके बारे में यहाँ पर हमारे लिसनर से भी बातें जो है कर रहे होते।
1: जी हाँ, तो यही है हमारा मेक इन इंडिया, जब हमारी सोच नौकरी लेने की नहीं बल्कि देने की बन रही है, हमारा भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल। और देखो ना, एक छोटे से शहर मेरठ से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि
1: जी
0: है ना। और यही है प्रेरणा कालरा की कहानी जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनी है।

0: सीमा, हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ गाते गुनगुनाते हैं, साथ ही हमारे साथ जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम इसे एक घंटे में आप तक पहुंचाते हैं ना, उसे भी भरपूर इंजॉय करते हैं। तो अब जो वक्त आ चला है वो हमनवा की रसोई से निकल कर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है, आप झटपट से बन जाने वाली है, और इसका नाम है क्रिस्पी ब्रेड बॉल्स। और ये आप बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं और बच्चों को पसंद आने वाली है, इवन बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसकी सामग्री। ब्रेड आपको लेनी है 5 से 7 स्लाइसेस, दही 1 कप, 2 उबले आलू, और इसे आप प्रोटीन रिच बना सकते हैं। तो इसके लिए आप पनीर ले सकते हैं ग्रेट किया हुआ या कद्दूकस किया हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर बारीक कटा हुआ 1 चम्मच, और 3 से 4 हरी मिर्च या फिर जो मिर्च है वो आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। और साथ ही जो मसाले चाहिए वो हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च 1/4 कुटी हुई, और 2 से 3 जो है चम्मच तेल चाहिए उसे थोड़ा सा सेकने के लिए।
1: जी बिल्कुल, तो ये तो हो गई है यहाँ पे सामग्री, और अब इसको बनाने का क्या तरीका है आपसे वो भी शेयर कर लेते हैं कि ब्रेड के टुकड़ों को एक बोल में तोड़ ले, इसमें दही, कुटी हुई काली मिर्च और नमक डाल लेना, अच्छी तरीके से गूंद लें और इसका मुलायम जो डो है उसको बना लें। 10 मिनट के लिए आपको इसको रख देना है यहाँ पे तैयार करके। अब इस

0: कुकिंग आपको यहाँ तैयार करनी है तो इसके लिए आपको एक चम्मच तेल पैन में डालकर गर्म कर लेना है। इसमें जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जो आलू है मैश किया हुआ वो आपको लेना है, और पनीर भी इसमें ऐड कर लेना है, और इसके साथ ही हल्का से इसको भून लेना है ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा सूख जाए। यहाँ पे इसमें नींबू का रस ऐड करना है आपको और नमक मिलाना है, और इसके साथ ही जब ये पूरा जो है मिक्सचर वो तैयार हो जाना है तो जो हमने डो बना के यहाँ पे तैयार किया है उसमें ये स्टफिंग आपको फिल करनी है, और छोटी छोटी सी लोई लेनी है इसके लिए जो है स्टफिंग के लिए, और इसको फिल कर लेना है। टिक्की का इसको आपको शेप देना है या आप इसको बॉल का भी शेप दे सकते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इन बॉल्स को जो है धीमी आँच पर चारों तरफ सुनहरा होने तक, जब तक ये क्रिस्पी होती है, इनको फ्राई कर लेना है। तो तैयार है आपकी क्रिस्पी ब्रेड बॉल्स। इसको
1: इस पे हम सीमा ये भी कर सकते हैं, हम इन बॉल्स को जो हमारे जो अप्पे में कराता है उसमें भी सेक सकते हैं ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: ये हमें बिल्कुल जो तेल का इस्तेमाल बिल्कुल हाँ, ना के बराबर तो होगा और हेल्दी
0: हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑयली फ्री हो जाएगा इस स्टीम में जब कर तैयार होंगे तो उनका टेस्ट भी आपको अलग लगेगा। और अभी क्या है कि मार्केट में जैसे कच्चा आम आ रहा है तो पुदीने की चटनी भी आप बना सकते हैं।
1: चटनी का तो क्या ही कहना, जो आपको पसंद है आप हरी चटनी, टमाटर की चटनी या सॉस किसी के साथ भी बढ़िया से इसे एंजॉय कर सकते हैं। और फिलहाल जो घड़ी की सुइयां हैं वो कह रही हैं कि जल्दी से हम आप तक पहुंचा दें चलते चलते बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: बिल्कुल, सिलसिले मुलाकातों के न छोड़ेंगे हम फिलहाल, लेकिन इस प्रोग्राम से जाने का है वक्त। मॉर्निंग से हम थे यानी पूर्णिमा थी आपके साथ, और दिन में रहने वाली है सीमा, है ना?
1: जी हाँ, तो दिन में म्यूजिकार के साथ आपसे मिलने वाली, और साथ ही 3:45 पर हमारा विशेष कार्यक्रम सुनना मत भूलिएगा, इनसे मिलिए। तो मिलती हूँ आपसे दिन में 3 बजे। फिलहाल अभी शो,
0: ख्याल, और बाय बाय।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं, अब सुनिए एफएम समाचार। वाराणसी में आज दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक का शुभारंभ हुआ। बैठक से पहले विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बैठक की शुरुआत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के संबोधन से हुई। बैठक में भारत के अलावा चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील और ईरान के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। वहीं रूस, इथियोपिया और मिस्र के प्रतिनिधि हाइब्रिड मोड के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे हैं। इस दौरान सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल जनभवन में विभिन्न विधाओं में पारंगत 51 कलाकारों को अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संगीत अकादमी पुरस्कार एक प्रतिष्ठित सम्मान है। अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद सभी विधाओं के कलाकारों को संस्कृति विभाग के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने पर 70,000 रूपये मानदेय प्राप्त होगा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और पीएम पोषण योजना से जुड़े कर्मियों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी संबंधित कार्मिकों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने का आदेश दिया गया है। चित्रकूट में 29वीं प्रयागराज जोन अंतर जनपदीय वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, अमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट की महिला एवं पुरुष टीम हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को भी विकसित करता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित होगा।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ नमस्कार। घड़ी की सुइयों में दोपहर के 12:05 हो गए हैं और हमेशा की तरह इस सुहावनी दोपहर में आपके दिन को और भी तरोताजा करने के लिए मैं आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम शत्रुपा लेके। दोस्तों कल है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस। अब आप कहेंगे कि जब कल है तो हम बात आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बड़े उत्सव की तैयारी तो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है ना। और आज हम जिस उत्सव की बात कर रहे हैं वो है हरियाली का उत्सव। बातें बहुत सारी होंगी लेकिन अभी सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
6: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
7: धड़कता है जो हर दिल में
8: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
5: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।

बिछिया घड़ी में 12:11 हो चुके हैं और कार्यक्रम है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं आपकी दोस्त राधा। जब बात घर को सजाने की होती है तो क्या किसी बिना पौधे के हम घर को सजा सकते हैं क्या? घर सुंदर लगेगा ही नहीं। और इसीलिए शत्रुपा में हमारी जो चर्चा का विषय है वो है बागवानी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा पौधा न सिर्फ हमारे घर के कोने कोने को महकाता है बल्कि हमारे मन के आंगन को भी सुकून से भर देता है। तो चलिए अगले एक घंटे प्रकृति के मिले थाम कर चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर।

0: होती है उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
5: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
6: धड़कता है जो हर दिल में
7: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
4: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
5: धड़कन लखनऊ की।

जी 12:17 हो रहे हैं और कार्यक्रम है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त राधा। जी हम बात कर रहे हैं बागवानी की, और आपको पता है कि कई शोध बताते हैं कि पौधों के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है। मिट्टी को छूना, पौधों को पानी देना और नई पत्तियों को उगते देखना ना मन को शांति देता है। बागवानी एक ऐसी थेरेपी है जो बिना किसी खर्च के हमें मानसिक सुख प्रदान करती है। तो चलिए अभी सुनते हैं ये प्यारा संगीत। अब पता है आपको, गाने भी सुनकर ना बहुत सुकून मिलता है, जैसे कि ये प्यारा सा सॉन्ग आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
7: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
8: धड़कता है जो हर दिल में
9: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
10: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
7: धड़कन लखनऊ की।
11: Stay tuned 100.7 FM रेनबो,
7: धड़कन लखनऊ की।
11: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
12: जी, हमारे 12:26 हो चुके हैं और कार्यक्रम है शत्रुपा, और आज हम बात कर रहे हैं बागवानी की। अक्सर जब बात बागवानी की आती है तो हम सोचते हैं कि ये तो बस एक शौक है, लेकिन सच कहूं पौधे लगाना, सिर्फ मिट्टी में बीज डालना नहीं, ये तो एक वादा है आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और छांव देने का। और हम महिलाएं, हम लड़कियां जो है ना, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और पौधों से एक बहुत ही खास लगाव होता है, गहरा नाता होता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को बहुत स्नेह से सींच कर बड़ा करती है, उसी तरह पौधे भी तो हमारी ममता और समय मांगते हैं, है ना? और जब माँ की बात हो रही है तो माँ से खूबसूरत कोई हो सकता है ना? कोई तो नहीं हो सकता, और यही कुछ कह रहा है ये गाना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: 100.7 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शत्रुपा, जहां आज हम बात कर रहे हैं बागवानी की। जी हम तो बात कर ही रहे हैं और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में हमारी एक्सपर्ट भी जुड़ चुकी हैं, तो चलिए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम शत्रुपा में। हेलो नेहा।
1: गुड आफ्टरनून मैम। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे इस विषय पर अपने विचार साझा करने का।

0: पता है कि कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और उसके उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
1: हाँ नेहा, तो हमारा जो आज का विषय है वो है बागवानी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि हमारे श्रोताओं को, कि जिन लोगों के पास जगह कम है लेकिन उन्हें बागवानी करनी अच्छी लगती है, तो वो किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं?
0: देखिए, आजकल किचन गार्डनिंग ज्यादा ट्रेंड में है, तो ये बेसिकली उसी के लिए होता है। अगर आपके पास जगह कम है तो आप उसमें भी प्रॉपर तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो छोटे लेवल पर फ्रूट, वेजिटेबल, हर्ब, ये

0: ये बताइए कि हमारे श्रोताओं को, कि जिन लोगों के पास जगह कम है लेकिन उन्हें बागवानी करनी अच्छी लगती है, तो वो किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं?
1: देखिए आजकल किचन गार्डनिंग ज्यादा ट्रेंड में है, तो ये बेसिकली उसी के लिए होता है। अगर आपके पास जगह कम है तो आप उसमें भी प्रॉपर तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो छोटे लेवल पर फ्रूट, वेजिटेबल, हर्ब, ये सारी चीजें ग्रो करना किचन गार्डनिंग के अंदर में इंक्लूड होता है। तो अगर आपके पास जगह कम है तो आप इसके लिए आपकी बालकनी, टेरेस, विंडो या कोई छोटी खाली जगह हो उसे आप उसमें आप इजिली कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे आप ऐसा प्लेस चूज करें जहाँ पर आपको प्रॉपर सनलाइट मिल सके 4 to 6 hours के लिए। उसके अलावा आप पॉट में कंटेनर्स को यूज करके और ओल्ड बकेट, बॉटल, ये सारी चीज यूज करके आप छोटे छोटी जगह पे, कम जगह पे आप बागवानी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और ये बताइए, इतनी गर्मी में, ऐसे में जो पौधे हैं वो स्वस्थ कैसे रहें? क्योंकि अगर उनका ध्यान नहीं देंगे तो वो तो सूख जाएंगे, तो उनका ध्यान कैसे दिया जाए?
1: देखिए गर्मी में पौधों को ध्यान देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। जैसे आपको बहुत ज्यादा एक्सेस सनलाइट और हीट को अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान और पानी की कमी पौधों को खराब कर सकती है, उनको सुखा सकती है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी में पौधों से बचाना होता है। और आपको दोपहर में पौधों में वाटरिंग नहीं करनी है। अगर वाटरिंग आपको करनी है तो आप सुबह और शाम के टाइम में कर सकते हैं। उसके अलावा आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है और दोपहर में पानी इसलिए नहीं देना है क्योंकि दोपहर में पानी देने से वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे रूट को फायदा नहीं मिलता है। तो और उसके अलावा आप मल्चिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। मल्चिंग टेक्निक में आप सूखे पत्ते, ग्रास और कोकोपीट को उसके ऊपर डाल सकते हैं पौधों में, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो जल्दी जल्दी खत्म ना हो।
0: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने। तो चलते चलते ये बताइए कि कल हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के लिए अभी तो मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरी संदेश ये लग रहा है कि पर्यावरण हमारा बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। बढ़ती हुई गर्मी को देख के आप लोग समझ ही सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस लेवल पे जा रही है। तो मेरा तो श्रोतागणों से यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्लांट्स लगाएं, और जो आप एयर कंडीशनर और ये सारी चीजें, इनका कम से कम इस्तेमाल करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प मिल सके और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सहयोग करें।
0: जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि मुझे ये अवसर दिया आपने मेरे विचारों को प्रस्तुत करने का। थैंक यू।
0: थैंक यू नेहा। तो ये हमसे जुड़ी थी नेहा, और बातें और सारी होने वाली हैं। भाई कल विश्व पर्यावरण दिवस है और हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं बागवानी की। तो भाई जब बागवानी की बात हो रही है और एक्सपर्ट से भी बात हो गई है, तो अभी क्या है, तो अभी आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

यहाँ घड़ी में 12:49 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है शतरूपा, जहाँ हम आज बात कर रहे हैं बागवानी की। अच्छा, आजकल किचन गार्डन का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। धनिया, पुदीना, मेथी, टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियां तो हम घर में ही उगा सकते हैं। इससे ताजी और रसायन मुक्त सब्जियां मिलती हैं और बाजार पर निर्भरता भी कम होती है। क्यों सखियो, और साथ ही बच्चों को भी प्रकृति और खेती के बारे में सीखने का अवसर भी मिलता है ना। तो किचन गार्डनिंग करिए और घर में ही ताजी ताजी सब्जियां उगाइए। और अभी जो गाना आ रहा है, ये आपको ऐसी वादियों में ले जाएगा ना कि बहुत सुकून मिलेगा। भाई मुझे तो ऐसी वादियां बहुत ही अच्छी लगती हैं, और आपको?

दोस्तों, आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब वक्त शत्रुपा का समाप्ति की ओर चल पड़ा है। तो भाई, आज हमने बात की बागवानी की और कल हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो भाई, आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें कम से कम अपने जन्मदिन के दिन और जब भी दिल करे एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, और सिर्फ लगाना ही नहीं चाहिए, उसे एक पेड़ बनने तक सहेजना भी चाहिए। और भाई, इसी के साथ इस कार्यक्रम से हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं, जिसका नाम है होठों पे तेरी बात, इस आखिरी गीत के साथ। और न्यूज ब्रेक भी होगा, लेकिन अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रीगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। रोड्रीगेज कल भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त विज्ञान प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षी, नागरिक, पुलिस एवं समकक्ष पदों की 8, 9 और 10 जून को होने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर अधिकारियों को समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा की सुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता न होने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी अभ्यर्थी को अनावश्यक कठिनाई या परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतरजनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। वाराणसी में 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इसके पूर्व कल वाराणसी पहुंचने पर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार आने वाले मेहमानों का स्वागत किया गया। सम्मेलन में भाग लेने के लिए वाराणसी आए केंद्रीय संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि काशी एक आध्यात्मिक नगरी है और सारे विश्व में अपनी एक सांस्कृतिक पहचान रखती है। इसके सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जो हमारी सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिकता को बढ़ाने का कार्य करेगा। प्रदेश के वित्त और लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में मल्हौर और खरगापुर क्षेत्र में सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 128 अंक से बढ़कर 74,474 पर, जबकि निफ्टी

इसके सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जो हमारी सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिकता को बढ़ाने का कार्य करेगा। प्रदेश के वित्त और लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में मल्हौर और खरगापुर क्षेत्र में सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 128 अंक से बढ़कर 74,474 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक की वृद्धि के साथ 23,449 पर था। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

काश हम उड़ पाते, काश हम गायब हो जाते, काश ये हम कर लेते, होता है ना आपके मन में? तो अगर आपका मन गायब होने का करता है तो आज जिस बात पे हम जुड़ेंगे, जिस सवाल पे हम जुड़ेंगे वो यही है कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप गायब होकर कौन से दो काम करना चाहेंगे? और ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, ये बताने के लिए आपको हमें मेल करना होगा, अपनी बात को मेल के माध्यम से होटल पर लाना होगा। हमारा मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। इस पर मेल करिए और हमें बताइए कि अगर आपको गायब होने का अवसर मिलता है, एक सुपर पावर मिल गई, तो गायब होकर सिर्फ दो ही काम बताने हैं आपको, कि कोई दो काम जिसे आप करना चाहते हैं तो कौन से वो दो काम हैं जो गायब होकर आप करना चाहते हैं। तो भाई अभी आप बताइए, मेल करिए, मेल आईडी तो मैंने बता ही दी है, लेकिन अभी सुनिए ये प्यारा सा सॉन्ग जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से रियासत के नज़्म व नसक, आइंदा होने वाले कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान और मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुजव्वज़ा अवामी शराकतदारी पर मबनी प्रोग्रामों का जायजा लिया। इस दौरान वज़ीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 जून आलमी योम माहौलियात से 21 जून बैनुल अक़वामी योम योग तक मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम सिर्फ रस्मी इनेकाद न होकर अवामी शराकतदारी और अवामी बेदारी की मुहिम बने। मीटिंग में वजीर आला ने 8, 9 और 10 जून को 2 मीटिंगों में मुनक़िद होने वाले कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान की इफ्फत और राजदारी को बनाए रखने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि नज़्म व नसक से खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में मफाद आम्मा की 24 तजावीज मंजूर की गईं। शहरी तरक्की के वज़ीर ए.के. शर्मा ने बताया कि काबीना ने शहरी ट्रांसपोर्ट खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की मंजूरी दी है। ई बसें नोएडा समेत शहरी इलाकों के 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और 18 बड़े शहरों में चलाई जाएंगी। काबीना ने सरकारी वकला के अलाउंस में इजाफे की तजवीज़ को भी मंजूरी दी। हमारे नामा निगार ने इतला है कि काबीना ने खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए हिमायती कीमत स्कीम के तहत मक्का की खरीदारी की पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को मदद फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। मरकजी वजीर जनाब वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के साथ मिलकर नाफिज किया जाएगा। बनारस में आज ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का इफ्तिताह हुआ। मीटिंग से कबल मुख्तलिफ ममालिक से आए नुमाइंदों का रिवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। मीटिंग की शुरुआत हिंदुस्तान हुकूमत के वजारत सकाफत के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल के खिताब से हुई। वाज रहे कि हिंदुस्तान इस बार ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है जो 2 रोज तक मुनक़िद होगी। मीटिंग में हिंदुस्तान के अलावा चीन, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्राजील और ईरान के नुमाइंदे बराए रास्त शामिल हुए हैं। दरियसना रूस, इथोपिया और मिस्र के नुमाइंदे हाइब्रिड मोड के तवस्सुत से मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि इस दौरान अराकीन ममालिक के दरमियान सकाफती तआवुन, विरासत तहफ्फुज और सकाफती तबादले को मजबूत करने से जुड़े मुख्तलिफ मौजू पर बहस होगी। इस दौरान मरकजी सकाफती सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने बताया,
1: ये लिविंग हेरिटेज है न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की, और यहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश है, यहाँ की जो गंगा जी की जो सुंदरता है, जो हमारी युगे युगीन पुरानी सभ्यता है, उस सभ्यता का ये प्रतीक है। इसलिए इससे अच्छा स्थान ब्रिक्स के कल्चरल ट्रैक की डिस्कशंस के लिए नहीं हो सकता, और इसीलिए स्थान को चुना गया।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान के उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत में रियासती हुकूमत ने इम्तिहानी मराकज को रियायती कीमतों पर बस सर्विस फराहम करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक जायजा मीटिंग के दौरान इस सिलसिले में मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत जारी की। मीटिंग में पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि सिविल पुलिस कांस्टेबल और इसके मसावी अहदों के लिए भर्ती का इम्तिहान 2 शिफ्टों में 8, 9 और 10 जून को होगा। इस इम्तिहान में तकरीबन 2.9 मिलियन उम्मीदवारों के शिरकत की तवक्को है। वज़ीर आला ने वाज़े हिदायत दी कि किसी उम्मीदवार को धूप में खड़ा न होना पड़े और इम्तिहानी मराकज में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट रियायती किरायों पर खसूसी बैनजिली बसें चलाएगा। गुज़िश्ता 12 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गैरमामूली तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है।

0: आज हम कारोबार करने में आसानी के शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर बात करेंगे।
1: सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GeM की शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
1: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
2: धड़कता है जो हर दिल में
3: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ, 1:17 हो चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो गया है होठों पे तेरी बात। और जैसा कि आज मैंने पूछा कि हमारे मन में ना बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि काश मैं गायब हो जाता हूं, तो गायब होने के बाद से आप कौन से दो काम करना चाहेंगे, तो हमारे पास जो है ना मेल भी आने शुरू हो गए हैं। अभी हमारे पास मेल आया है पिंकू सोनी जी का और ये लिखते हैं, मैम जी सादर प्रणाम, आपको भी प्रणाम, आपको भी नमस्ते। मैं पिंकू सोनी आपके टॉपिक के हिसाब से मेरा पहला काम अपने दोस्तों को परेशान करना है और दूसरा जो लोग अच्छे लोगों को परेशान करते हैं उनकी जमकर धुनाई करना है। अच्छा, और हंसने का सिंबल भी, मतलब मन में आपकी ये खुरापात चल रहा है, आपकी बात ना होठों पे आ ही गई कि जो लोग, भाई अच्छा सोचा आपने कि जो लोग अच्छे लोग हैं उनको परेशान क्यों करना है ना, और इवन किसी को भी क्यों परेशान करना, हम जिंदगी मिली है, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, है ना। और ये इन्होंने लिखा है, मैं टिकैत नगर बाराबंकी से हूं, मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं, कुलदीप, आकाश, रिंकी पिंकी जी और सभी लिसनर्स को। तो भाई आपका तो मेल हमने पढ़ दिया और बहुत सारे मेल आए हुए हमारे पास में। अभी एक मेल आया है हमारे पास में चंदन जी का और ये लिखती है, हेलो मैम, रामपुर से चंदन तुरेहा, काफी दिन के बाद मैसेज कर रहा हूं, अगर बात करी जाए तो सुपर पावर की, मैं तो सबको खाना खिलाऊंगा, राम राम। अच्छा, तो ऐसा है क्यों चंदन जी, मतलब सुपर पावर मिलने के बाद आप खाना खिलाएंगे? अगर आपकी इच्छा है, लोगों को आप खाना खिलाना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, उसके लिए सुपर पावर की जरूरत नहीं होती है। मुझे लगता है कि आपके पास जितना है ना, आपके पास थोड़ा भी है, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनको नहीं देना होता है, उनको नहीं, सिर्फ वो होता है ना अपने लिए जीना। तो मुझे लगता है लाइफ तो वो है ना जो दूसरों के लिए जी जाए। भाई आप लोग भी जो हमें सुन रहे हैं, जल्दी जल्दी मेल करिए और बताइए कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाती है जिससे कि आप दो काम ऐसे जो आपके मन में है जो गायब होने के बाद से आप करना चाहते हैं, तो कौन सा करना चाहेंगे, जल्दी से बताइए, मेल करिए। फिलहाल अभी सुनिए ये प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ, घड़ी की जो सुइयां हैं वो बता रही हैं कि 1:26 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है होठों पे तेरी बात। जी बहुत ही मजेदार आपके जो जवाब आ रहे हैं। तो भाई हमने क्या पूछा है कि अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाती है जिससे आपको गायब होने का मौका मिलता है तो आप कौन से दो काम करना चाहेंगे। तो भाई बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, जिसमें अभी हमारे पास जो मेल आया है वो है सुधाकर जाधव जी का। होठों पे तेरी बात आज के टॉपिक के हिसाब से गायब अगर मैं हुआ तो पहले मैं बॉर्डर पर जाऊंगा और दुश्मनों का हिसाब करूंगा। अच्छा सोचा है। वो लोग सोचेंगे खरे क्या हो रहा है, मतलब वो लोग भी चौंक जाएंगे कि अचानक से ढेर सारे वार कहां से हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या जादू है ना। अच्छा सोचा आपने। और इन्होंने ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से लिखा है, श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख। यानी कि बहुत सारे लोगों ने मेल भेजा है आपके साथ साथ। ये अगला मेल हमारे पास आया है रोशनी रावत जी का। नमस्ते राधा मैम जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, 12 बजे से जुड़े हुए हैं आपके साथ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच रोशनी। अच्छा ऐसे मतलब बातें आप लोग बताते हैं ना कि 12 बजे से बड़ा अच्छा लगता है कि कितना हमारे कितने अच्छे लिसनर हैं, अपना समय दे रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इसका फीडबैक भी दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच रोशनी जी। आगे लिखती हूँ कि मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम व पोस्ट बमहना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। टॉपिक अगर मुझे गायब होने का मौका मिला तो मैं FM रेनबो स्टूडियो आ जाऊंगी और दूसरा काम क्या करेंगे कि पहाड़ों पर जाना चाहूंगी, वहीं पर रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा होता क्या है ना कि प्रकृति, अभी हमने बात की कि कल विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो प्रकृति कितना खूबसूरत होता है ना, कितनी खूबसूरत है, जब भी आप कहीं जाते हैं तो पेड़ पौधे पहाड़ देखकर कितना मतलब सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है, उसका कहना ही क्या है ना जी। चंदन जी का तो हमने पढ़ लिया था, आपने बार एक और बार भेजा है, तो जिनका जिन्होंने मेल भेज दिया है, जिनका हमने पढ़ लिया है, वो बार बार भेजेंगे तो कैसे काम चलेगा ना, दूसरे लोग का फिर नहीं आ पाएगा ना मेल पे हमारे पास में। ये आया हमारे पास में महेंद्र जी का, महेंद्र दीपान जी का, आदरणीय RJ राधा मैम जी सादर नमस्कार, आपको भी नमस्कार, मैं महेंद्र देपन गांव रूड़ जिला नागौर राजस्थान से हूँ। मैम जी आपको पहली बार सुन रहा हूँ, आपकी आवाज वाकई काबिले तारीफ है, थैंक यू सो मच। और पता है मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपके लिए महेंद्र जी, आपने इतना खूबसूरत सा ये जो पोस्टर बना के भेजा है ना, मतलब पर्यावरण दिवस का, और इतना खूबसूरत ये मैसेज, और साथ में आपने मुझे भी मतलब मेरी भी तस्वीर बना के भेजी, हालांकि ये मैं नहीं हूं लेकिन आपने कोशिश की है, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतनी मेहनत की।

है ना, जिसने मेहनत की उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। आगे लिखा है, मैं महेंद्र देपन राजस्थान के नागौर जिले के रूड़ गांव से आपका ये कार्यक्रम होठों पे तेरी बात बड़े चाव से सुन रहा हूँ। आज का विषय वाकई बहुत ही रोमांचक है। अगर मुझे गायब होने की सुपर पावर मिले तो मैं अपने जीवन में ये दो काम करना चाहूंगा, पर्यावरण की सेवा। मैं चुपचाप उन दुर्गम और खाली जगहों पर जाकर बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाऊंगा जहां इंसान का पहुंच पाना मुश्किल है। बिना किसी दिखावे के प्रकृति को हरा भरा करने का ये कार्य मेरे लिए सबसे संतोषजनक होगा। और दूसरा इन्होंने लिखा है कि मैं उन लोगों की मदद के लिए आगे आऊंगा जो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकते। बिना किसी के जाने सही समय पर सही जगह पहुंचकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करूंगा। आशा है कि आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। बहुत सारी प्यार भी आपने दिया है एफएम टीम को, शुभकामनाएं भी दी हैं, बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से आपको भाई, क्योंकि इतना मेहनत, मतलब सच में मैं क्या ही बोलूं आपकी इस मेहनत के लिए। इन्होंने जो पर्यावरण की जो जो इन्होंने बोला है सेवा करने, उसकी अलग से पोस्टर बनाया हुआ है, हेल्प का अलग से बनाया हुआ है, प्रकृति का अलग से बनाया हुआ है, और मेरा अलग से, मतलब इतना खूबसूरत मर्ज करके एक ही पोस्टर में आपने बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे ही कार्यक्रम सुनते रहिए। और जो आपके दो विचार है ना, वो बहुत अच्छे हैं सच में। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं तो चाहती हूँ कि आपको ये क्या और भी बहुत अच्छी अच्छी सुपर पावर मिले, ताकि आपकी जो ये विचार है वो सच हो जाए, है ना। तो भाई इतने प्यारे प्यारे आपके मेल आ रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। अब बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से उन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून मैम, बोलो राम बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून मैम, इनको प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। हमारे वहाँ 100.7 FM की फ्रिक्वेंसी नहीं चल रही है, न्यूज़ ऑन AIR के थ्रू सुन रहे हैं। टॉपिक पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे गायब होके और कुछ करने का मौका मिले तो मैं रेडियो के स्टूडियो घूमना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे हर चीज़ जानना होता है कि ये चीज़ कहाँ से हो रही है, ट्रांसमीटर क्या है। अच्छा, आपके मन में जिज्ञासा बहुत सारी है ना, तो ये तो अच्छी बात है। जिज्ञासा तो होना चाहिए कि आपके मन में ये जिज्ञासा है कैसे क्या होता है, तो मुझे लगता है कि आपकी विश पूरी हो जाएगी जल्दी ही, है ना। और जो अगला मेल आया है वो है वकील अहमद जी का, नमस्ते मैम जी, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, होठों पे तेरी बात कार्यक्रम अच्छा लगता है। ऐसा हो सके तो रब से दुआ करेंगे कि गर्मी से राहत मिल जाए, और दुआ करेंगे बारिश हो। इस समय आम की बाग में है वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दकी, ऐमन नवाब। अच्छा, कितना अच्छा लगता है ना, आप लोग इतने प्यार से सारी बातें, मतलब डिटेल में सारी बातें हमें बता रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपकी जो विश है वो पूरी हो, और कार्यक्रम सुनते रहिए, और हमें ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। देखिए, बातें भी हो गई, हमने मेल भी पढ़ लिए, लेकिन अभी क्या जरूरी है, अभी जरूरी है कि आपको एक अच्छा सा गाना सुनवा दें, ताकि आप और ज्यादा इंजॉय करें, झूमने लगे। और ये गाना जो है ना, बिल्कुल झुमाने वाला ही है, तो चलिए इंजॉय करिए इस प्यारे से ब्यूटीफुल ट्रैक को।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
6: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
7: धड़कता है जो हर दिल में
8: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
5: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।
5: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम होठों पे तेरी बात, और स्टूडियो की घड़ी में 1:43 हो चुके हैं और आपके मेल भी ढेर सारे आ रहे हैं हमारे पास में। जो ये अगला मेल मैं पढ़ने जा रही हूँ ये है वारिस अली खान जी का। लिखते हैं, राधा जी आज का टॉपिक रोचक है, आपने तो सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया। अच्छा जी, अगर मुझे गायब होने का पावर मिल जाए तो मेरा पहला काम होगा मैं देश के आंतरिक दुश्मनों का पता लगाकर सरकार को सूचित करूंगा।

और दूसरी बात, मैं अपनी लिखी हुई गजल को सलमान खान को दूंगा ताकि वो फिल्मों में ले सकें। ये लिखा है एडवोकेट वारिस अली खान जी ने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। लिखते हैं, राधा जी मैं यथार्थ पर विश्वास करता हूँ, हकीकत की जमीन पर रहना पसंद करता हूँ, लेकिन आपका टॉपिक अच्छा लगा इसलिए अपनी बात आपके सामने रख दी। भाई बहुत अच्छा लिखा है आपने, और ये दोनों चीजें सच में, ये जो विषय है इससे संबंधित है, मतलब पहला तो बहुत ही ज्यादा संबंधित है कि आप दुश्मन, जो छुपे हुए दुश्मन है, कौन है, क्या है, कहाँ, मैं नहीं पता उसको, तो जाहिर सी बात है ऐसे आप पता कर लगा लोगे और सरकार तक पहुंचा देंगे, अच्छी बात है। दूसरा कि आपकी लिखी हुई गजल, मैं दुआ करूंगी कि आप जो भी गजल लिखते हैं वो आप जहां पहुंचाना चाहते हैं, जो भी आप सफल होना चाहते हैं, आप जीवन में सफल होइए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए, ये तो मैं आपके लिए दुआ करती हूं कि आपकी जो विश है ये पूरी हो जाए। और नेक्स्ट हमारे पास आया है राम राज जी का मेल, श्री गणेशाय नमो नमः, होठों पे तेरी बात, जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से, राम राज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से राधा बिटिया को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार रामराज जी, और शुभ आशीर्वाद पहुंचे, थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत जरूरत है, और मुझे कोई इतने प्यार से ब्लेसिंग देता है ना, तो मतलब मैं क्या ही बताऊं। और अगर आपको गायब होना, अच्छा ये विषय पर उन्होंने लिखा है कि अगर गायब होना पड़े तो सबसे पहले अपने ही लोगों से जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनसे बदला लूंगा, और जो मुसीबत के मारे हैं उनकी मदद करूंगा। अच्छा सोचा है आपने रामराज जी ने, और आपने हमें ढेर सारा ब्लेसिंग दिया उसके लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने लिखा है कि जो कभी कभी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने कि आस्तीन का सांप इसी को तो कहते हैं, कि कभी कभी आपके अपने ही आपको एंड वक्त पे आपको धोखा दे जाते हैं, जहां आपको लगता है कि ये तो हमारी मदद जरूर करेंगे, या फिर वो खुद भी कमिटमेंट करते हैं और एंड टाइम पे आपको धोखा दे देते हैं, तो उनसे आप बदला लेंगे और जो मुसीबत में है उनकी आप मदद करेंगे। तो बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि पावर के बिना भी आप मदद कीजिए, ताकि लोगों को आप मदद करेंगे तो आपके साथ भी ईश्वर अच्छा करेंगे, है ना। कहते हैं ना कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। ये भैया मोनू सेठ जी ने लिखा है, मेरी प्रभु से विनती है कि अच्छा मानसून आए, अच्छी बारिश हो, जिससे किसानों के चेहरे खिल जाएं, फसल अधिक उपजे। अच्छा, इन्होंने इस टॉपिक पे तो कुछ और नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है। ये लिखा है सुधाकर जाधव जी ने, होठों पे तेरी बात, हम जो गायब हो गए तो कौन से दो काम करेंगे, मैंने पहले मैसेज में एक काम बोल दिया था, लेकिन दूसरा काम मैं ये करूंगा, महिला को जो त्रास देता है उसको उसका हिसाब करूंगा और उसकी धुनाई करूंगा। और अच्छा, हुडा बल्ली सरीके गुन्हे में जो गुनहगार को हिसाब चुकता करूंगा, थोड़ी सी स्पेलिंग वो है, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि जो महिलाओं के साथ गलत करते हैं तो उन, बिल्कुल अच्छी सोच है आपकी। और हमारे पास वकील अहमद जी का तुमने पढ़ ही लिया था। अच्छा, ऐसा हो जा रहा ना कि कभी एक ही लोग दो तीन मैसेज भेज दे रहे हैं, तो उससे ये हो जाता है कि वो बार बार वही मैसेज आ रहा है ना, तो इससे आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आपने मैसेज भेज दिया है, मेल भेज दिया है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए ताकि दूसरे लोग जो हैं उनको भी मौका मिले, है ना। और बात तो आपकी सही है, बातें बहुत सारी हैं आपके पास में, हमारे पास में, लेकिन अभी क्या, अभी तो हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। और पता है, आप लोगों से बात करते करते, और ये सच भी है कि आप लोग इतने प्यारे हैं ना, कि आप लोगों से, श्रोताओं से किसी को भी इश्क हो जाएगा और आपके इश्क में पढ़ने के लिए वो तैयार रहेगा, है ना।

0: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
1: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
2: धड़कता है जो हर दिल में
3: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
0: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
4: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: देखिए धीरे धीरे वक्त कैसे बढ़ गया पता ही नहीं चला और इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने का भी समय आ चुका है, लेकिन आपके जो मेल से हम इसे जरूर पढ़ेंगे। जो ये अगला मेल हमारे पास आया है, मोनू सेठ जी ने फिर से लिखा है कि बचपन में सोचता था कि गायब होकर जो हमारे पड़ोस में दुकान थी उसमें अच्छे बिस्किट नमकीन निकाल लाऊं और खूब खाऊंगा, उनको भी पता नहीं चलेगा और हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, लेकिन अब खुद अपने शॉप कर ली। अच्छा, इनकी खुद की शॉप है तो गायब होने का इरादा ही नहीं रह गया मैम जी। अच्छा कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे सोच रहते हैं मन में, अगर आपका ये मन बचपन का था अच्छी बात है, लेकिन चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है ना, है ना। गायब होने का मतलब ये नहीं कि हमें चोरी करनी चाहिए, है ना। ये मैसेज भेजा है उदय भान पाल जी ने, कार्यक्रम के आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी को सादर नमस्कार। अच्छा, अभी हॉटमेल नहीं है, अभी किसी भी गीत में, अभी कार्यक्रम है होटो पे तेरी बात, और जो कि बिल्कुल वाइंड अप की ओर है, जल्दी से आप लोग के मैसेज में पढ़ लूं। सतीश अनेजा जी ने लिखा है राधा बहन जी नमस्कार, अगर मैं गायब हो गया तो देश के लिए ऐसा जरूर कुछ करूंगा जिसका सबको मुझ पर नाज हो, खुद को भी गर्व होगा, खुद पर भी मैं अच्छी सोच रखूंगा, गायब होना व्यर्थ नहीं जाएगा। चंडीगढ़ सिटी सतीश, अच्छा चंडीगढ़ से लिखा है सतीश अनेजा जी ने, अच्छी सोच है आपकी। और ये लिखा है उत्तम कुमार भगत जी ने, गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, अभी हॉटमेल नहीं है, अभी आप लोगों ने अभी से ही फरमाइश भेज दी है ना, तो भाई धीरे धीरे जो है ना ये कार्यक्रम वाइंड अप की ओर आ चुका है, और इस अंतिम गाने के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई जो अगला कार्यक्रम है वो है हॉटमेल, और जिसमें आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं, जिसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल अभी आप सुनिए ये गीत, और इस गीत के बाद हम न्यूज सुनेंगे, और न्यूज के बाद आप कार्यक्रम आएगा हॉट मेल। अभी एंजॉय करिए इस प्यारे से खूबसूरत से गीत को।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800

0: करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड

0: कांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत

0: रियासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। ताज मोहम्मद जी ने लिखा है, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार। आदरणीय प्रसारक जी, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत में शामिल कीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से। एक शिकायती वाला भी मेल आ गया हमारे पास में। मैडम जी, हमारा नंबर कब आएगा है? तारीख पे तारीख है, इतना इंतजार कर रहे हैं आप, इतनी तारीख दी जा रही है। नाराज हैं हमसे हमारे एक श्रोता। जय जी, हमारा नंबर कब आएगा जी? मैडम जी, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है। ठीक है भाई, बिल्कुल। और भाई मेल तो हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिसका जो गाना है ना वो सुनवा ही देते हैं, लेकिन भाई सबका गाना हम नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी चाहते हैं, है ना। और जिनका गाना आ रहा है वो तो एंजॉय करिए, लेकिन जो नाराज़ है प्लीज़ नाराज़ मत होइए, आपका भी गाना भी प्रोग्राम बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी जिनका गाना आ रहा है आपकी पसंद का ये गाना रेडियो सेट पे, तो एंजॉय करिए।

जी हाँ, कार्यक्रम जो है हॉट मेल, और आपके ढेर सारे मेल हमारे पास आ गए हैं। तो जो ये मेल लिखा है, सतीश अनेजा जी ने लिखा है, सबसे पहले लिखा है, कोई नाराजगी है हमसे बहिना? नहीं, हमें अपने भाइयों से, अपने श्रोताओं से नाराजगी कैसे होगी बताइए। नमस्कार राधा बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं, कार्यक्रम सुनते हैं, अपना कीमती लिखा है आपने। मुझे लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, जिस प्रकार से आपने सजा हो जाके लिखा है ना, बहुत सुंदर लिखा है कि शुरू से ही प्रोग्राम सुन रहे हैं, समय पर ईमेल भी की, और अब इंतजार हो गई, इंतजार पे इंतजार, देखो क्या होता है आगे, आगे क्या हुआ, अच्छा हुआ ना। कहते हैं कि इंतजार का फल, सब्र का फल मीठा होता है। तो देखिए, हमने आपका मेल तो शामिल कर लिया है। आपने लिखा है चंडीगढ़ सिटी से, और सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और आपने धन्यवाद भी लिखा है। थैंक यू सो मच मेल करने के लिए। और आपने लिखा इस फिल्म का ये गाना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस फिल्म का ये गाना आपको सुनवा दें। हमारे पास अगला जो मेल आया है वो है डीके जी का आया है, न्यू दिल्ली से, कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु जी का। अच्छा, इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है, ठीक है। और दिल्ली में मौसम बारिश का हो रहा है, अच्छी बात है भाई, थोड़ी बारिश यहाँ भी भेज दीजिए। संजय ढींगिया जी का आया है, बागपत उत्तर प्रदेश से ये जो मेल आया है, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, नमस्कार जी, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच संजय जी, आपका जो ये मतलब प्रोत्साहन आप हमें देते हैं ना, मन बहुत खुश हो जाता है। शानदार गीत, लाजवाब प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और आपने हमें ये मेल किया है प्यारा सा, थैंक यू सो मच। और आपने गीत की फरमाइश तो नहीं की है, लेकिन आपके लिए भी हम अच्छा सा गीत बजाएंगे, क्योंकि आप वो हमारे श्रोता होते हैं जो बोलते हैं कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। ये है मेल आया हमारे पास विक्रम जी का, और नमस्कार जी, सादर प्रणाम, हमें इस फिल्म का ये गाना

सुनवा दीजिए। गांव कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश कड़वासरा और युधव कड़वासरा। भाई बहुत सारे मेल हमारे पास आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जल्दी से आपकी ही पसंद का एक गाना सुनवा दें। और जिसकी पसंद का गाना है ना, मुझे पता है कि आप झूमने वाले बैठे बैठे, मैंने यहीं से देख लिया, देखिए मतलब मैं कितना दूरदर्शी हूँ ना, मुझे पता चल गया कि आपका गाना बजेगा और आप झूमने लगेंगे। तो भाई जल्दी से आपकी पसंद का गाना हम प्ले करते हैं, एंजॉय करिए है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

जी हाँ, 2:46 हो चुके हैं और कार्यक्रम है हॉटमेल। आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश रह रही है ताकि मैं सबकी जो फरमाइश है पूरी कर सकूं, लेकिन ऐसा एक घंटे में मुमकिन तो नहीं है ना। इसलिए जिनकी फरमाइश पूरी नहीं हो पा रही है वो नाराज ना हो, और मैंने कोशिश की है कि कम से कम सबके मैसेज तो मैं पढ़ ही लूं। अभी जो मेरे पास जो मेल आया है वो है तुलसी जी का, और तुलसी मस्कीन होस्ट मैडम राधा जी, दिल्ली काली घटा के साथ बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई है, अब तो मेल ले लीजिए, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन। देखिए बिल्कुल हमने आपका मेल ले लिया, और बारिश जो हो रही है ना तो सोचिए मौसम कितना प्यारा हो गया आपकी तरफ, है ना। ये मेल हमारे पास आया है रविंद्र मोहन दास जी का, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा देवी। बिल्कुल हम आपको गीत में शामिल करेंगे रविंद्र जी, और मेल लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लिखा है हमें, जो मेल लिखा है वो लिखा है रोजी डिकॉस्टो जी ने, गुड आफ्टरनून मैम जनकपुरी सहारनपुर से, और जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, हमें अपनी पसंद के किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और उन्होंने हमें एक रेड रोज भी भेजा है, इन्हें कैसे पता कि मुझे रेड रोज बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच इतना प्यारा मेल भेजने के लिए और इतना सजा के भेजने के लिए। और आपने लिखा है ना किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, बिल्कुल जो अगला गीत आ रहा है समझिए वो आप ही का है, आप ही के लिए है। और ये है आकाश कुमार जी का, आंचल वर्मा फ्रॉम हरदोई। अच्छा, इन्होंने भी बहुत सुंदर सजा के इतने ढेर सारे फ्लावर भेजे हैं, दिल भेजा है, मतलब मन गार्डन गार्डन हो गया मेरा। थैंक यू सो मच आंचल वर्मा जी। आकाश कुमार के आईडी से आया है आंचल वर्मा फ्रॉम हरदोई, गुड आफ्टरनून डियर मैडम जी, प्लीज़ मैम आज मेरा भी सॉन्ग प्ले कर देना, काफ़ी दिनों से मेरा सॉन्ग नहीं प्ले हुआ है। अच्छा ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो सॉन्ग है हम प्ले कर सकें। ये आया है मनी राम पाल जी का, ग्राम पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, मनी राम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल, और इन्होंने लिखा है कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। बिल्कुल ये मेल आया हमारे पास लाल गिरी जी का, कार्यक्रम पेश करता राधा दीदी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार, आप कैसे हो।

दीदी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको दिल से धन्यवाद। दीदी जी, कोई भी सॉन्ग हमें सुनवा दीजिए, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। ये लिखा है, इन्होंने लिखा है लालगिरी जी ने, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी जी। बिल्कुल, ये जो आप लिखते हैं ना किसी भी गीत में, तो समझिए जो जितने गीत बज रहे हैं वो सब आप ही के लिए तो है ना। और ये लिखा है गुरमीत सिंह जी ने, खुशनुमा बारिश, आज मौसम बड़ा बेहमान है। अच्छा, बारिश, चलिए अच्छी बात है। उन्होंने लिखा है साउथ दिल्ली से, और इनको इस फिल्म का ये गाना सुनना है। अच्छा, तो भाई मौसम तो प्यारा है ही, और आप लोग के मेल जो हमने पढ़े ये भी बड़े प्यारे प्यारे से हैं। तो भाई देर ना करते हुए आप लोगों की पसंद, जो लिसनर जिसकी पसंद का ये गाना है वो इंजॉय करिए, और इस गीत को खूब प्यार से सुनिए, है ना। और आगे भी बहुत सारे मेल हैं, लेकिन अभी ये प्यारा सा गीत।

देखिए, आपसे बात करते करते जो ये कार्यक्रम है हॉट मेल बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। और भाई जल्दी से हम आपके मेल पढ़ लें जिनका मेल शामिल हो चुका है और गीत नहीं शामिल हुआ, उनके लिए हम भाई क्षमा प्रार्थी हैं। हमने पूरी कोशिश की कि आप सभी की पसंद के गीतों को हम प्ले करें। अभी जल्दी से आपके मेल पढ़ देते हैं क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास में। कमल कांत गुप्ता जी का है, अंत में नाम ही शामिल कर ले, दुखी ना कर राधा जी हमें खुश होने दो। अरे बिल्कुल खुश रहिए कमल कांत जी, देखिए हमने आपका नाम शामिल कर लिया। इन्होंने लिखा है समडील नवापारा से, मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता जी बिल्कुल। और ये है हमारे पास अहमद जी का आया है, बहन जी आदाब नमस्कार, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, थैंक यू, हमें निराश और नजरअंदाज मत करना। बिल्कुल हम आपको क्यों ही निराश और नजरअंदाज करेंगे। देखिए हम आपका नाम शामिल कर रहे हैं। रामेश्वर जी का मेल आया है, हॉट मेल कार्यक्रम प्रस्तुत करता राधा जी, क्या मेरा मेल शामिल नहीं करेंगी? हम कब तक इंतजार कर रहे हैं, आप सजे हुए सभी का मेल शामिल कर रही हैं बहन राधा जी, प्लीज हमारा भी। देखिए हमने बिल्कुल आपका मेल शामिल कर लिया है, अब जल्दी से हम सिर्फ नाम पढ़ पाएंगे। बिट्टू गगनेजा, कमल कांत गुप्ता, शहरून नूर अंसारी, नवी हसन, आफ्ताब अंसारी, मंगल मंगल जी ने मंगल जनागल, स्वर्ण सिंह, नवी हसन, साई गायकवाड़, मोहम्मद फरमान, सुरेश नारंग, कमल कांत गुप्ता, आफ्ताब अंसारी, बोधराज खोरवाल और मणिपाल जी, मतलब ये सारे लोगों ने मेल भेजा। देखिए समय बहुत कम है, जल्दी से चलते चलते एक गाना आपको प्ले सुना ही देते हैं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में सतरंगी दुनिया में, इस न्यूज़ इस गाने के बाद और न्यूज़ के बाद।

Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.

जी हाँ, शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो सुन रहे हैं आप। दिन के बज चुके हैं पूरे 3। शुरू करती है आज का म्यूजिकार अपनी इंटरेस्टिंग सी बातों और ब्यूटीफुल ट्रैक्स को लेकर। आज कौन है? सीमा है आपके साथ में। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ। बाकी बातों को लेकर हम मौजूद रहेंगे, जी हाँ, आपके साथ करने आपसे खास बातें।

जी हाँ, तो अभी पूरी तरह से गर्मी का जलवा जो है वो चल रहा है। फिलहाल जून का महीना शुरू हो चुका है और आज 4 तारीख हो गई है जून की। तो गर्मी अपने शबाब पर है, तेज धूप, गर्म मौसम, धूप की तीखी किरणें जब धरती को गर्म कर देती हैं, तब हमें सबसे पहले याद आती है किसकी? सबसे पहले हमें याद आती है हमारे पेड़ों की, जिनकी छांव कुछ पलों का सुकून दे जाती है। भीषण गर्मी में इनका महत्व और भी गहराई से हमें महसूस होता है। जितनी अधिक हरियाली होगी, गर्मी का तापमान उतना ही कम होगा। ये है हमारे आसपास प्रकृति का महत्व, हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और हमारे पर्यावरण के लिए भी, क्योंकि जब हवा स्वच्छ होगी तो सांसें आसान होंगी, पेड़ अधिक होंगे तो नेचुरली गर्मी का असर कम होगा और पंछियों की चहक से सुबह दोपहर और भी खूबसूरत लगेंगी। तो कितना प्लेजेंट है ना ये सब कुछ, और हमारे लिए एक मैसेज भी कि जीवन में जितना हो सके दूसरों के लिए हेल्पफुल बनिए, उनके लिए उपयोगी बनिए। तो चलिए अपनी बातों के साथ इस गर्म दोपहर में एक सूदिंग सा ट्रैक आपके लिए यहाँ प्ले कर रहे हैं, और बस बने रहिए शहर की म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो के साथ। इस वक्त म्यूजिक आर एंजॉय करें आप 102.2 की फ्रिक्वेंसी पे। अभी प्ले करती हूँ आपके लिए सूदिंग सा ट्रैक।

बेहद ही सूदिंग सा ये ट्रैक था, ओम शांति ओम फिल्म से सोनू निगम की आवाज थी। फिलहाल रेनबो की घड़ी में 3:13 का वक्त हो रहा है पूरा, और इस वक्त आप कनेक्ट हैं हमारे साथ आज के म्यूजिकल शो पर 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। वेल दोस्तों, भाग दौड़ भरी लाइफ में जब काम का प्रेशर थोड़ा कम होता है तो हमारा मन क्या करता है? हमारा मन ये करता है कि कुछ पल के लिए ही सही शांत वातावरण में चले जाएं, किसी पहाड़ी पर जाएं या किसी नदी का किनारा हो, प्रकृति की सुंदरता से भरी कोई भी ऐसी जगह जहां सुकून मिल सके, थोड़ा सा ठहराव मिल सके।

और जानते हैं ये सुकून, ये ठहराव हम कि कहीं दूर जाए बिना भी पा सकते हैं प्रकृति और योग के एक छोटे से कनेक्शन के साथ, क्योंकि ये वो जीवन शैली है जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार अपने पूरे दिन के रूटीन में कभी भी शामिल कर सकते हैं सिर्फ कुछ मिनट निकाल कर। तो क्या करना है आपको इसके लिए? बहुत आसान सा तरीका है, सीधा बैठना है, एक लंबी ब्रीथ लेनी है। इंस्टेंट ये जो प्रोसेस है आपके स्ट्रेस को कम कर देगा। और फिलहाल 21 जून हमारे लिए गर्व की बात है, जब हम योगा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं तो इस इंटरनेशनली डे के तौर पर हम जब ये दिन मनाने वाले हैं तो देश का हर युवा, हर बुज़ुर्ग और हर बच्चा योग अपनाए तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगे। और ख़ास बात यह कि योग सिर्फ शरीर का ही नहीं, दिमाग का भी वर्कआउट है। 10 मिनट का ये ध्यान आपकी एकाग्रता को इतना बढ़ा देता है कि बिना भटके कोई भी टास्क दुगने स्पीड से आप कर सकते हैं। तो योग के साथ मुस्कुराइए, फिट रहिए खुद को। और एक ट्रैक आपके लिए यहाँ प्ले करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि खुद को रिलैक्स करने का सबसे खास माध्यम म्यूजिक भी है। तो इसके साथ हम भी बढ़ेंगे और आगे आपसे बात करेंगे इसके लिए कि कहाँ लग रहा है ट्रैफिक जैम। और जो अभी वेकेशन हमारे चल रही हैं, सभी जा रहे हैं, बच्चे बड़े बूढ़े, फैमिली ट्रिप के साथ में हम लोग जो है जा रहे हैं, लेकिन पूरी फैमिली के साथ में जब हम इन जगहों पर पहुंचते हैं, अगर ये हमारी यात्रा सूदिंग ना हो, इजी ना हो और हम इंजॉय ना कर पाए तो कैसा फील होता है? तो इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल अभी आपके लिए पहुंच रहा है एक और खूबसूरत सा ट्रैक इस वक्त म्यूजिकार शो पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए, awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

तो चलिए एक बार तमाम लिसनर्स का एक बार फिर से यहाँ स्वागत करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। उससे पहले जी हाँ, ये सूचना आपके साथ में हम यहाँ शेयर करेंगे और ये सूचना है डाक अदालत से संबंधित, चीफ पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु त्रैमासिक डाक अदालत का आयोजन चीफ पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे चीफ पोस्ट मास्टर के कक्ष में किया जाएगा। डाक अदालत में प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित समस्याओं, शिकायतों, विशेषतः स्पीड पोस्ट सेवा, पंजीकृत वस्तुएं, बचत बैंक, धनादेश सेवा, पेंशन एवं अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। ग्राहक अपनी समस्याओं, शिकायतों के निवारण हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं, शिकायतों के पूर्ण विवरण सहित हेतु चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर के कार्यालय में दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार तक अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त शिकायतों पर डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। डाक अदालत में सुनवाई हेतु नए मामले नहीं लिए जाएंगे, केवल उन्हीं मामलों को विचार हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है जिनका निस्तारण किसी कारणवश नहीं हो पाया है अथवा

वह संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में प्रेषित शिकायत का विवरण भी प्रमाण स्वरूप साथ में संलग्न किया जाए। कृपया शिकायती पत्र लिफाफे के ऊपर डाक अदालत हेतु अवश्य लिखें। तो ये डाक अदालत से संबंधित सूचना थी, अभी हमने आपके साथ में शेयर कर ली है। और प्रोग्राम में एक गाना सुनवाएंगे, उसके बाद अपनी बातों के साथ, जी हाँ, फिर वापस लौट के आते हैं। फिलहाल अभी आपके लिए ये गाना आप तक पहुंच रहा है।

जी हाँ, इस मौसम को एंजॉय करने के लिए हम कहाँ पहुंच रहे हैं, पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं इस वक्त। जून का मंथ शुरू होते ही वेकेशंस शुरू हो गई है लोगों के सोशल मीडिया पे, और जो फीड नज़र आ रही है उसमें पिक्स भी नज़र आ रही है, कोई मनाली में पैराग्लाइडिंग कर रहा है, तो शिमला की सैर कर रहा है। और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हर कोई बस पहाड़ों की तरफ भाग रहा है, लेकिन इन हसीन वादियों में आजकल एक बड़ी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है, वो है कि इन सकरी रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें और घंटों का ट्रैफिक जैम अभी रिसेंट जो है देखा गया है। इन हिल स्टेशनों पर गाड़ियों की कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें देखी गई हैं। तो आप भी अगर इस वेकेशन पे पहाड़ों पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट ट्रैवलर आपको बनना होगा। तो सर्च करना होगा आपको ऑफ बीट डेस्टिनेशन। पहाड़ों में भी बहुत से ऐसे छोटे और खूबसूरत कस्बे हैं जहां भीड़ बहुत कम होती है और बड़ा सुकून मिलता है, और पॉसिबल हो तो अपनी ट्रिप जो है वो वीक डेज में थर्सडे टू फ्राइडे के बीच प्लान करें। अपनी गाड़ी ले जाने के बजाय आप ये कर सकते हैं कि पब्लिक और लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं जो है वाइल्ड लाइफ एडवेंचर भी वहाँ कर सकते हैं, बच्चों को कुछ नया और थ्रिलिंग दिखा सकते हैं। अगर आपको इतिहास, पुरानी इमारतों और शांत माहौल पसंद है तो जा सकते हैं इस जगह जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एंजॉय कराएंगे एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक जो आपके लिए प्ले होने को एकदम है तैयार। तो बस कनेक्ट रहिए हमारे साथ इस वक्त म्यूजिक आर शो पर। फिलहाल बाय द क्लॉक 3:33 का वक्त, और इस वक्त के साथ बढ़ेंगे हम आगे।

और अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस ब्यूटीफुल और हिस्टोरिक डेस्टिनेशन ओरछा की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के किनारे बसा एक बेहद खूबसूरत प्लेस, जो अपने भव्य महलों, प्राचीन मंदिरों और छतरीनुमा स्मारकों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल की अगर हम बात करें तो यहाँ का श्री राम राजा मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और उन्हें प्रतिदिन पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा का भव्य किला और जहांगीर महल, बुंदेला राजा राजवीर सिंह देव द्वारा मुगल शासक जहांगीर के लिए ये उनके स्वागत में बनवाया गया था और जिसकी खूबसूरत नक्काशी जरूके आज उस दौर की याद में लेकर हमें चले जाते हैं। तो हाल ही में ये जगह बॉलीवुड फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग के लिए भी चर्चा में रही है। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे जो गीत सुना था वो भूल भुलैया फिल्म से था। और अगर आपको थोड़ी और मस्ती और थ्रिल पसंद है तो बेतवा की लहरों के बीच रिवर राफ्टिंग का मज़ा आप ले सकते हैं। एक और एडवेंचर आपके लिए यहाँ बाकी है कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए बेतवा नदी के किनारे बर्ड वॉचिंग, जंगल सफारी और साइकिलिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो इतिहास, अध्यात्म, प्रकृति और रोमांच सब कुछ है इस जगह।

तो इसी गाने के साथ ही फाइंड आउट कर रहे हैं आज का म्यूजिक आर शो। और बस कनेक्ट रहिए हमारे साथ में 102.2 के फ्रिक्वेंसी पे, और अगला प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे इनसे मिलिए, जहां पर आज विशेष प्रोग्राम आपके लिए होगा आकाशवाणी के 90 वर्षों की खास यात्रा पर। ये हमारा

0: स्पेशल प्रोग्राम है, इनसे मिले। तो बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, हाजिर होते हैं इस प्रोग्राम के साथ कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा ये विशेष प्रोग्राम।
1: प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर के अवसर पर विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत।
2: दोस्तों, आकाशवाणी पूरे कर रहा है अपने 90 वर्ष आगामी 8 जून को और हम मना रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों का जश्न। आज इसी सिलसिले में मुलाकात कर रहे हैं IIT कानपुर से प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी से। डॉक्टर आशुतोष शर्मा 2025 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का इसमें बतौर सचिव भी कार्य कर चुके हैं। इस समय प्रोफेसर आशुतोष शर्मा IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बतौर इंस्टीट्यूट चेयर प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: हाँ दीपशिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वार्तालाप के लिए।
2: आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आकाशवाणी अपने 90 वर्षों का सफर पूरा कर रही है, तो आकाशवाणी से आपका जुड़ाव कैसे रहा है? पहले भी आप आकाशवाणी के कई कार्यक्रमों में आ चुके हैं, हम चाहते हैं हमारे लिसनर्स को बताएं इस बारे में।
3: हाँ दीपशिखा जी, मैं बहुत इससे जुड़ा हुआ हूँ। आपने कहा 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मेरे भी 65 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी लाइफ है जो रेडियो से और इससे आकाशवाणी से जुड़ी हुई रही है, जब से बचपन से ही इसको सुनते सुनते बड़े हुए हैं, तो न केवल इसमें संगीत का इससे ज्ञान हुआ, न केवल बॉलीवुड संगीत का ज्ञान हुआ, लेकिन क्लासिकल संगीत का भी ज्ञान हुआ इससे, और जो भी कुछ हम बचपन में जानते थे वो इसके द्वारा ही आया। देखिए, ऐसा है, टीवी तो 90 के दशक से शुरू हुआ था, तब भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो ये कहना है कि टीवी वगैरह जो है वो तो पिछले 20 साल से ही बहुत चला है, और अभी भी रेडियो का बहुत महत्व है। वो महत्व है चाहे आप किसी भी सुदूर गाँव में भी जाए, हर जगह जाए, कई लोग बैठ करके उसको सुन रहे होते हैं, साइकिल चलाते वक्त भी उसको लेकर सुन रहे होते हैं, उससे बहुत ज्ञान का वर्धन होता है। जो युवा लोग हैं उनको भी बहुत इंटरेस्ट है इसके अंदर, इसलिए मैंने इस कारण के कई बार अपने प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया आकाशवाणी के, चाहे वो विज्ञान पे वार्तालाप हो, चाहे शिक्षा पे वार्तालाप हो, चाहे समाज पे वार्तालाप हो, या इन सब का मिला जुला जो है रूप है उन सब पे वार्तालाप हो, इसमें मुझे हरदम बहुत आनंद आया, क्योंकि एक तो इसमें बहुत टाइम की इतनी कमी नहीं होती जितनी की टीवी के माध्यम में होती है। इसके अंदर आप आजकल ऐसा है जैसे कि टीवी के माध्यम में तो बहुत ही सेंसेशनल चीजें भी आ गई हैं, लेकिन जो रेडियो का माध्यम है, आकाशवाणी है, उसमें अब भी बहुत एनालिसिस जो होती है किसी भी चीज की वो सुनाई पड़ती है, तो उसके द्वारा ज्ञानवर्धन होता है, उसके द्वारा हमें अच्छी जो चीज हमें जाननी हो उसके बारे में पता चलता है, और संगीत के लिए तो बहुत ही अच्छा हदम से माध्यम रहा है। तो मैंने इसको इसके साथ मेरा लंबा नाता रहा है, लिसनर भी रहा हूँ, उसमें कंट्रीब्यूट भी किया है। स्पेशली जब मैं दिल्ली में था करीब 8 साल, तब मैं रेगुलरली इस प्रोग्राम्स के लिए जाता रहता था। इसका मेरा सौभाग्य रहा बहुत से लोगों से वार्तालाप करने का, बहुत से लोगों से बारे में अपने विचार साझा करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जारी रहे। इनफैक्ट आजकल रेडियो स्टेशन जितने भी हैं वो डिजिटली भी हर जगह अवेलेबल होते हैं, इतने सारे ऐप भी हैं जिनके द्वारा आप पूरे वर्ल्ड का जो रेडियो स्टेशन हैं उनको सुन सकते हैं, तो इसके द्वारा जो विविधता होती है चाहे संगीत में हो चाहे हमारे व्यू पॉइंट्स में हो, उस विविध को हम जान सकते हैं इन रेडियो स्टेशंस के द्वारा। तो भले मनोरंजन का साधन हो, चाहे वो शिक्षा का साधन हो, चाहे वो अच्छी इंफॉर्मेशन का साधन हो, इन सभी के लिए रेडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण था।

0: और है और रहेगा।
1: सर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रेडियो का महत्व था, है और रहेगा। और इसी क्रम में कहना चाहेंगे कि रेडियो आकाशवाणी हमेशा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय वाक्य के साथ काम करता है, और आपने भी विज्ञान के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे वो सभी लिसनर्स, हमारे यंग लिसनर्स जो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ आप कोई संदेश आज साझा करें।
0: विज्ञान बहुत अच्छी क्षेत्र है, सभी क्षेत्र अच्छे हैं। तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई हैं समाज के अंदर कि जैसे कि भाई सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है या MBA है, मैनेजमेंट है, ये सब। ऐसा कुछ नहीं है। तो इनफैक्ट आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हम साइंस के साथ साथ मानव को भी समझें। तो इस क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हर आदमी बात करता है, तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो खाली क्या हम उसको साइंस के द्वारा इसका सोच सकते हैं, इसका सलूशन सोच सकते हैं? नहीं, सिर्फ साइंस के द्वारा नहीं सोच सकते, क्योंकि इसके लिए हमें जो समाज है उसका भी समझ जरूरी है, हर व्यक्ति की समझ जरूरी है, हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है, इसके अंदर उन सभी लोगों का सहयोग जरूरी है जिसके द्वारा क्लाइमेट चेंज ड्राइव होती है। जैसे कि चाहे कंज्यूमरिज्म हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे बिजनेसेस हो, चाहे हमारे खुद इंडिविजुअल कंजम्पशन पैटर्न हो, तो ये सब हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, सस्टेनेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज है, आजकल AI बहुत उभर कर आ रही है, ये सब खाली साइंस की समस्याएं नहीं है, ये बहुआयामी समस्याएं हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारे युवा लोगों से, ज्यादा युवा लोग हैं, युवा तो मैं भी हूँ, आप लोग ज्यादा युवा हैं मुझसे भी ज्यादा, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए सभी चीजों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल भी हमें डेवलप करनी है, हमें दूसरे क्षेत्रों को समझने की शक्ति भी डेवलप करनी है। ये जो आप साइंस वगैरह पढ़ रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके द्वारा आपको अपने एग्जाम्स में और आगे के कैरियर में के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके साथ साथ एक आपको बहुआयामी व्यक्ति बनने के लिए और चीजों को भी साथ साथ समझना और पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं करीब 35 साल से प्रोफेसर हूं, उसके पहले BTech भी IIT में किया था, बाहर PhD किया था, तो मैं शिक्षा को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। तो मैं सोचता था कि भाई जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मैं वही चीज वापस डिजाइन ना करूँ लाइफ के अंदर, कोई दूसरी चीज डिजाइन करूँ, कोई दूसरी समस्या का हल खोजूं। इस सब के लिए मुझे क्या चाहिए, न केवल जो मुझे पढ़ाया गया है, लेकिन मेरे खुद की समझने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी नई समस्या हो उसको समझना, उसके क्या आयाम हैं, उसके लिए हमें, उसके सलूशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो कैसे होगी। तो हमें सिंथेसिस की ज़रूरत है, न केवल एनालिसिस की। तो हमने जो कुछ भी आज तक समझा है, पढ़ा है, उन सबको मिला करके हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको कोई शिक्षक बताएगा नहीं, क्योंकि हमारी जितनी भी शिक्षा है वो क्लास से क्लास तक जाती है, वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट तक जाती है, तो उनमें कोई तालमेल नहीं है आखिर में मिलाकर। वो तालमेल सिर्फ आपको ही बनाना होगा, उसके लिए कोई आपको टीचर बताएगा नहीं कि भाई मैं तो सिर्फ ये पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, दूसरा कहता है मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तीसरा कहता है बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो ये जो तालमेल इन सब चीज़ों का कहाँ होगा, वो सिर्फ आपके दिमाग में होगा। तो वो दिमाग में तभी होगा जब आप सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोच रहे, एग्ज़ाम के बारे में सोचना ज़रूरी है, तो उसके बाहर भी हमें सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा तीसरी बात, फाइनल बात जो मैं कहना चाहूँगा, आने वाला समय गए गुजरे समय से बहुत अलग होगा। ये बहुत अलग होगा क्योंकि इसके चैलेंजेस अलग हैं। इसके चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, सस्टेनेबिलिटी एंड राइज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स। ये जो चैलेंजेस हैं वो पहले नहीं थे। ये चैलेंजेस सब मल्टीडिसिप्लिनरी हैं, ये चैलेंजेस सब इंटरडिसिप्लिनरी हैं। इन चैलेंजेस में बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, न केवल एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ है, एक जॉब है, वो पहले हुआ करता था, अब वो है जो जॉब के भी नेचर बदलती रहेगी। आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर हो सकता है कि चार तरह के बदलाव आ जाएं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। हमें समझना होगा कि नई चीज़ कैसे जल्दी से सीखें, कैसे उसका नया जल्दी

0: जिसे उपयोग करें, ये समझने की क्षमता आ जाएगी, तो हमारी एजुकेशन पूरी हो गई। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर कैरियर अहेड, इन योर फ्यूचर अहेड, विच विल बी ग्लोरियस। थैंक यू
1: सर। आकाशवाणी के 90 वर्षों के अवसर पर आज आप हमारे साथ जुड़े, हमसे इतनी सारी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे सभी लिसनर्स को अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप सुनवा दें।
0: हाँ, एक गाना है, सिर्फ एहसास है ये लोग उसे महसूस करो,

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर के अवसर पर विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुनी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से दीपशिखा गुप्ता की बातचीत। कार्यक्रम की प्रस्तुति दीपशिखा गुप्ता की, मार्गदर्शन अजय प्रताप कटियार।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य, समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहां के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है, क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा।

0: वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकिल होकर कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
0: जी बिल्कुल। आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही चार तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से जो कि रिसाइकिल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैम में ही कंपोस्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी हैं यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पे भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखी हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लायंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं, और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड STP प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइक्लिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहां से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहां पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहां पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहां पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहां से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लीकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि माइंडसेट चेंज होना सिर्फ फौजियों का सोल्जर्स का बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू
0: जी यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है चाहे वो ऑनलाइन क्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं जो जीरो वेस्ट कैंप है जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे
1: साहब हमसे बात करने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: थैंक यू इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू
2: जय हिंद तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत

0: देश की मिट्टी को देश सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल स्वागत है शो। हमें कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, किस तरीके की इनिशिएटिव्स ले रहे हैं।
2: मैं फिर से स्वागत करता हूँ। मैं बहुत ही गर्व के साथ पहला जीरो वेस्ट कैंप है जिसे हर इकाई जहां भी मौजूद है इसी तरह से इंप्लीमेंट की गई है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिलते थे उससे हम यहाँ इसको मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और एयर वेस्ट को हम यहाँ एग्रीगेट करते हैं। मुद्दा यह है कि वेस्ट उस सोर्स पे 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट वेट वेस्ट बात करें तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं जिसको एरोबिक्स खाद बना और साथ लगा है बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस इस्तेमाल करते हैं। में टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है। इसके द्वारा भी हम रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीदा, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबेस में डाल दिया और हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: सो मच सर हमसे बात करने के लिए,
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन बेस्ड को डालते हैं जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इसे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
3: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 वेस्ट डाला जाता है जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार होती है।
1: सिस्टम है इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
3: इसको ड्राई रखने के लिए सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल।
1: सर आपने हमें एरोबिक कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को बनती है। इनिशिएटिव है इंडिया इनिशिएटिव है, साथ ही साथ आप देखिए तरीके के सिस्टम पूरे इंस्टॉल की आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से वेट वेस्ट को प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था इस तरीके से वेस्ट को ना रखकर उसको एक एसिड में तब्दील कर सकते हैं। इसे कहते हैं वेस्ट से एक एसिड बनाना। थैंक यू सो मच।
0: अभी हम एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि बायोगैस लगा करके हमारी आर्मी कैंप में मेंटेन किया जाता है और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो और न जाने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने, ये वाकई अद्भुत है। अभी फिलहाल ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात है जो मशीन और बायोमेथनाइजेशन, इस बारे में हमें और बताएंगे।
4: पीजी

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम रेनबो निभाता है, वो एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव FM रेनबो।
1: ये तुम सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: देश पर जान निछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसको बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स लिविंग एरियाज कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है, वहाँ से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोटल्स, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहाँ से ये सारा मेटल वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहाँ पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है जो दर्शाती है कि आर्मी न केवल रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है, अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
3: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: और सर क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए।
3: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: बस हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए।
3: जी ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है, उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
3: इसमें, डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच सर।

0: इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर

0: इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहां पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
1: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
0: किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकिल और अपसाइकिल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक सारे पेपर्स पहुंचते हैं, डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है, डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकिल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
2: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
0: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट, बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है। छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हम सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से साइकिल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
0: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
3: जय हिंद, आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
2: वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
3: देखिए अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहाँ रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
0: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
3: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहाँ पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहाँ पर काफी डोनेट की गई है और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहाँ और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहाँ मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहाँ पर डोनेट करते हैं।
0: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इजिली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
4: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया, जिससे आने वाले कंप्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें चार फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है। जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहाँ से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
2: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने ये सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
4: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है। हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं, ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारा एरिया या ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है, और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
0: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही रेंडो पर रात।

नमस्कार, शाम के बजे हैं 5। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार

गिरफ्तार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विश्व पर्यावरण दिवस पर कल एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुकरैल वन क्षेत्र से इसका शुभारंभ करेंगे। उनके नेतृत्व में पूरे राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधरोपण किए जाएंगे। इसके लिए सभी विभागों और मंडलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। पर्यावरण दिवस पर वन विभाग की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 दिवसीय भ्रमण पर तुलसीपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री तुलसीपुर व गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने देवी पाटन मंदिर पहुंचकर आज व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे की अध्यक्षता में आज सीतापुर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार की सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून तक आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों के दौरान अनेक ऐतिहासिक एवं जनहितकारी कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इंटरव्यू 15 जून से प्रारंभ होकर 27 जून तक विषयवार आयोजित किए जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र 5 जून से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवक्ता पद की लिखित परीक्षा 9 एवं 10 मई 2026 को आयोजित की गई थी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज घंटे तरन्नुम के साथ।

जी 5:03 हो चुके हैं, हाजिर हैं तरन्नुम लेकर प्रोग्राम टॉप 10। और आपको बता दें कि इस वक्त हम टॉप 10 तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे टॉप नंबर्स हैं जो अब तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देंगे 5:30 पर आप सुनेंगे रोंदेवू पत्रकार से वार्ता, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार राय से प्रवीण कुमार की बातचीत भी आप सुनेंगे। फिलहाल सुनते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बोले तो रेनबो।

और दोस्तों ये जो प्रोग्राम है टॉप 10, इसमें हम आपको हमेशा 10 टॉप मोस्ट जो गाने अपने दौर में रहे हैं, हिट रहे हैं, सुपर हिट रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसमें से जैसे कि भी आपने ये वाला ट्रैक सुना, और 2012 की अगर बात करें तो ये वो दौर था जिसमें बॉलीवुड म्यूजिक के लिए एक यादगार साल बनकर रह गया था। इस साल के गाने आज भी हमें नॉस्टैल्जिया की एक खूबसूरत दुनिया में ले जाते हैं, चाहे पानी दा रंग की मिठास हो या अभी मुझ में कहीं यस उसका इमोशन हो या पार्टी ऑल नाइट इसका स्वैग हो, हर गाने ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। और अगर हम बात करें इस गाने की जो अब आप सुनने वाले हैं, तो ये गाना मतलब कह सकते हैं ना कि प्यार की जो मासूमियत होती है ना, जब कहते हैं कि पहला प्यार इंसान को होता है, और पहला प्यार क्या, लेकिन पहला जो प्यार होता है वही हमेशा शायद आखिरी रह जाता है, क्योंकि इंसान हमेशा पहली चीज़ को कभी नहीं भूल पाता। पहला उसका कॉलेज का दिन, पहला उसका ऑफिस का दिन, पहला उसके घर से बाहर कदम निकालने का दिन, पहला उसका बर्थडे, भले ही वो उसको याद ना हो लेकिन उसके फोटो, उसकी यादें, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो पहली चीज़ होती है वो फिर बाद में दूसरी में वो चीज़ नहीं आती। फिलहाल अगर हम इस ट्रैक की बात करें जिसने पहले प्यार की मासूमियत और दिल की धड़कनों की खूबसूरती को इतनी अच्छे से बयान किया था, इतने अच्छे से बयान किया था कि ये गाना आज भी रोमांटिक प्लेलिस्ट की दौड़ में कह सकते हैं कि शामिल है। वेल, नंबर्स तो नंबर्स हैं, नंबर्स का क्या, लेकिन ये जो ट्रैक्स होते हैं ये हमेशा हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, चाहे 2012 का दौर हो, 14 का दौर हो या फिर 2026 का दौर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर घर

0: साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पांच बजकर 16 मिनट, प्रोग्राम चल रहा टॉप 10 और आज हम पहुंचा रहे हैं कुछ ऐसे सुपर डुपर गाने जो थे 2012 के, जिसमें से एक ट्रैक अब तक।

और आपको बता दें वक्त 5:19 हो चुके हैं और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप सुनने वाले हैं रोंदेवू, जिसमें पत्रकार से वार्ता के अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे हम वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार राय से प्रवीण कुमार की बातचीत कुछ ही देर में। और कहते हैं ना कि वक्त इतनी तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है कि बस हम लोग कहते हैं अभी सुबह हुई थी, अभी दोपहर हुई थी, अभी शाम आने को है, और अब देखिए लोग रात की तैयारी में हैं, शाम की तैयारी में हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस अवध में हो रही हैं, लखनऊ में हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी होने वाली हैं जो शायद एक दो दिन

टाइम भी इनके पास है और वो आपके लिए बहुत बहुत बहुत काम की होंगी। फिलहाल अभी जो टॉप 10 चल रहा है प्रोग्राम, उसमें कुछ जो नंबर्स हैं वो ही हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। उसमें से एक अगर नंबर की हम बात करें और उस दौर में वो था पोजिशन नंबर 6 पे, और ये गाना जो डांस फ्लोर को धड़का देता था जोर जोर से, और आज भी जब ये गाना प्ले होता है तो लोग जो कहते हैं ना डांस फ्लोर की जो हीट वेव आ जाती है उसमें, इतना मतलब इतना ज़्यादा माहौल वैसा हो जाता है कि जो डांस करना नहीं भी चाहता है वो भी पैर उसके जो हैं वो टिप टिप करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ ये जो ट्रैक है ये 2012 के सबसे बड़े कह सकते हैं कि पार्टी ट्रैक्स में से एक था। वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फ्रेश केमिस्ट्री ने इस गाने के खासम खास बना दिया था। सो लेट्स इन्जॉय राधा फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: और 5:27 हो चुके हैं दोस्तों, और प्रोग्राम टॉप 10 को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसका नाम है रोंदोई वू और पत्रकार से वार्ता है ये। इसमें अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार राय से प्रवीण कुमार की बातचीत। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण। इस कार्यक्रम में हम बातें करते हैं पत्रकारिता की दुनिया, उसकी चुनौतियों और समाज में उसकी भूमिका के बारे में। दोस्तों, हम रोज खबरें पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, टीवी पर देखते भी हैं, लेकिन उन खबरों को हम तक पहुंचाने वाली कलम यानी पत्रकार के पीछे का संघर्ष क्या है? समाचारों के चयन के दौरान इनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है? कैसे कुछ खबरों को लेते हैं जबकि शेष को छोड़ देते हैं? यह सब होता कैसे है? न्यूज एजेंसी क्या होते हैं और कैसे यह काम करते हैं? ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं हम कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। साथ ही कुछ समसामयिक मुद्दों पर इनके विचार भी जानने की कोशिश करते हैं। तो पत्रकार से संवाद के इस अंक में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय जी, स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, आपको हम बताते चले कि आनंद जी करीब 34 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और फिलहाल एक न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। जी आनंद जी, तो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता के इस दुनिया में या इस क्षेत्र में
1: जी
0: आने का विचार कैसे हुआ, कैसे आना हुआ?
1: प्रवीण जी, मैं राजनीतिक कार्य करता था और हमारे गृह जनपद मऊ जिले के एक बड़े राजनेता थे कल्पनाथ राय जी, तो मैं उनका कार्य करता था। तो इस वजह से पत्रकारों से मेरे संपर्क हो गए थे और यह करते हुए मुझे लगा कि राजनीति मेरे लिए मुफीद नहीं है। अखबार का प्रकाशन हो रहा था और मैंने प्रयास किया, मेरा चयन हो गया और फिर मैं पत्रकार बन गया
0: जी।
1: चूंकि राजनीति और पत्रकारिता कमोवेश एक ही तरह का कार्य है, समाज की चुनौतियों से जूझते हुए और समाज के मुद्दों को लेकर इसमें दोनों लोग भूमिका निभाते हैं। काम में थोड़ा सा परिवर्तन था और लगा कि मेरे लिए असली मुकाम मिल गया और फिर लगातार मेरे पड़ाव बदलते गए, मुझे अनुभव हुआ, मेरी तरक्की भी होती गई और मैं पत्रकारिता के क्षेत्र का ही होकर रह गया
0: जी। वैसे किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए या सपनों को सच करने के लिए शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और पत्रकारिता में तो विशेष करके
1: जी।
0: तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
1: मेरी शिक्षा दीक्षा गाँव से लेकर और आसपास के महाविद्यालयों में आजमगढ़ मऊ में ही हुई। मैं हिंदी से स्नातकोत्तर हूँ और हिंदी मेरी रुचिकर विषय है और पत्रकारिता में उसके लिए बहुत ही अच्छा स्थान भी है। और शुरुआती दिनों में जब पत्रकारिता के क्लास चलते थे महाविद्यालयों में जगह जगह, तो हम उन क्लास में भी छात्रों को पढ़ाने का भी मुझे मौका मिला था
0: जी। यह तो बात होगी शिक्षा दीक्षा की, और बतौर करियर की शुरुआत कब से हुई?
1: मैं गोरखपुर ब्यूरो से संबद्ध रहा, मेरी मनसा थी मऊ जिले में काम करने की, चूंकि मैं वहीं का रहने वाला था। तो शुरुआती एक डेढ़ साल तक मैं, फिर वहां का एक स्थानीय अखबार था जो लोकल अखबार था और बहुत लोकप्रिय अखबार था मऊ का, तो मैं उसमें समाचार संपादक हुआ और मैं डेढ़ साल तक उसमें भी मैंने काम किया। और आपको जानकर यह अच्छा लगेगा कि वो अखबार पहले हैंड कंपोजिंग पर छपता था।
0: अच्छा।
1: और हम लोगों ने डेढ़ साल में ही उसको कंप्यूटरीकृत किया और फिर उसको आधुनिक उपकरणों के साथ उसको सुसज्जित किया। लेकिन उसके बाद फिर मैं लखनऊ चला आया, धीरे धीरे मेरे रास्ते मतलब दूसरी तरफ अखबार में ही बदलते गए। मुझे बड़े फलक पर काम करने की जो मनसा थी उसके तहत मुझे मऊ फिर छोटी जगह लगने लगी।
0: बिल्कुल, विकास के साथ लोग अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने की हर कोई कोशिश करता है। क्या आपको आज भी वह अपनी पहली स्टोरी याद है जिसने आपको एक नई पहचान दी या पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको एस्टेब्लिश किया?
1: पहली स्टोरी तो बहुत साल लिखने के बाद लोगों के बीच, तो 95-96 के बाद से मेरी खबरों ने अपना स्थान बनाया और लोगों को आज भी याद है, लोग बताते हैं कि आपने ये लिखा, आपने ये लिखा। लेकिन शुरुआती दिनों में जैसे किसी पत्रकार के लिए उसकी जो पहली तमन्ना होती है, जो पहली कोशिश होती है कि अखबार में उसका नाम छप
0: जी,
1: जिसको वाइलाइन कहते हैं, आप जानते ही होंगे।
0: तो
1: मेरे ही जिले के कवि थे राष्ट्र कवि पंडित श्याम नारायण पांडे, जिन्होंने हल्दी घाटी, जय हनुमान, तुमुल, बहुत सारी उनकी रचनाएं रही हैं। तो उनका निधन हुआ था, उनके निधन के बाद मैंने उन पर एक स्मृति शेष लिखा था। वो लिखने के बाद लोगों ने मेरी बड़ी सराहना की थी और ऐसे में बहुत बायलाइन मिलती थी। वो पहला अखबार था कि अपने प्रतिनिधियों को पहचान देने का जो प्रयास किया, तो उस जमाने में जो अखबार थे गोरखपुर और बनारस से छपने वाले, वहाँ बायलाइन बहुत कभी किसी की मिलती थी तो उत्सव जैसा माहौल होता था
0: जी।
1: दोनों जगह बनारस से प्रकाशन में और गोरखपुर में, दोनों ब्यूरो ने बाद में वहां से प्रकाशन भी शुरू हुए, तो बायलाइन में वहां कोई कंजूसी नहीं थी और अच्छी खबरों के वहां तरीके सिखाए जाते थे। बहुत योग्य अच्छे संपादक लोग थे जिनकी स्मृतियां आज भी जहन में हैं, तो वो लोग प्रेरित करते थे कि कैसे खबरों को लोकप्रिय बनाया जाए, कैसे उन खबरों को पाठक के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बनाया जाए। तो इस हिसाब से हम लोग खबरों का चयन करते थे और बायलाइन मिलती थी तो बहुत खुश होते थे। उस दिन तो सहयोगियों को चाय पिलाने का उत्सव होता रहता।
0: बिल्कुल, करियर के प्रारंभ में किसी भी छोटी सी

0: उपलब्धि भी बड़ी उपलब्धि लगती है। फिलहाल आप एक न्यूज एजेंसी में कार्यरत हैं, तो यह न्यूज एजेंसी होते क्या है, कैसे काम करते हैं?
1: वीडियो सेवा, उसके हिंदी अंग्रेजी सेवा, दोनों पाठक के बीच में विश्वास बनाने के लिए पहला प्रयास होता है। जो अधिकारी हैं, उनका हमेशा निर्देश होता है कि कभी भी समाचार को समाचार की तरह लिखिए और कभी भी अतिशयोक्ति आप में खबरों में न हो। और इस संगठन ने समाचार पत्रों को, समाचार की दुनिया में लोग हैं उनको खबरें उपलब्ध कराते हैं, वो उन खबरें भेजते हैं और उनके जरिए पाठकों तक खबरें जाती हैं। मीडिया के क्षेत्र में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वीडियो के क्षेत्र में भी वीडियो सेवा में उनको खबरें उपलब्ध करा रहे हैं।
0: यानी आपके सीधे खबरें पब्लिश नहीं होती,
1: चैनलों को उनको समाचार उपलब्ध कराते हैं, उनको खबरें उपलब्ध कराते हैं, उनको

0: चार की दुनिया में लोग हैं उनको खबरें उपलब्ध कराते हैं, वो उन खबरें भेजते हैं और उनके जरिए पाठकों तक खबरें जाती हैं। मीडिया के क्षेत्र में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वीडियो के क्षेत्र में भी वीडियो सेवा में उनको खबरें उपलब्ध करा रहे हैं।
1: यानी आपके सीधे खबरें पब्लिश नहीं होती,
0: चैनलों को उनको समाचार उपलब्ध कराते हैं, उनको खबरें उपलब्ध कराते हैं, उनको स्टोरी उपलब्ध कराते हैं।
1: जी, आपने अखबारों में भी काम किया और अभी न्यूज एजेंसी में भी कार्यशील हैं, तो दोनों के पत्रकारिता में अंतर क्या लगता है?
0: देखिए, अखबारों में तो जब हम काम करते थे तो सुबह की मीटिंग में तय हुआ कि हमको ये खबर अमुक देनी है, हम दिन भर घूम रहे हैं, शाम को आए खबरों को अपना बनाए भेजे, खबरें कंपोज हो रही हैं जा रही हैं। धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल आए फिर हमारे लोग सोचते थे कि हमारी खबर तो सुबह जाएगी, और जो ग्राहक है जो पाठक है जो भी मतलब खबरों का समझदार व्यक्ति है जो खबरों में जिज्ञासा रखता है खबरों से जूझता है जानता है पहचानता है, वो अगर दिन में कोई खबर पा जाएगा तो फिर हमारी खबर अगले दिन सुबह उसको बासी लगेगी। फिर अखबारों में भी आप देखे होंगे कि .com आए सारे अखबारों के और बहुत सारे पोर्टल्स बने, तो पोर्टल्स को खबरों की जरूरत हुई और सबसे पहले होड़ मची की। आप समाचार चैनलों में देखते होंगे कि कोई खबर है उस पर लिखा होता है कि सबसे पहले सबसे तेज, मतलब सब लोग दावा करते हैं, भले वो बाद में ही दिखा रहे हों लेकिन लोग दावा करते हैं कि सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। तो जो समाचार एजेंसी है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह तो हमारा उपभोक्ता है, जो समाचार चैनल है चाहे अखबार है जो खबरें लेते हैं, तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम समय पर और पहले तथ्यों के साथ उसको एक सटीक खबर दें ताकि उसको वो अपने प्रकाशन में ला सके और विश्वास भरोसे के साथ ला सके, पाठक तक पहुंच सके, यह प्रयास होता है। जो हमारी न्यूज एजेंसी है उसका प्रयास होता है, हमारे न्यूज एजेंसी से जुड़े हर व्यक्ति का यह प्रयास होता है कि हम समय पर खबरें दें। हमारे सारे जिलों में संवाददाता होते हैं, उन संवाददाताओं की भी कोशिश होती है कि जो हमारी घटनाएं हैं जो भी कुछ रोजमर्रा के जीवन है जो समाचार उसको तथ्यात्मक और पुष्ट तरीके से अधिकारियों के हवाले से संबंधित व्यक्ति के हवाले से उसको एक पुष्ट खबर हम सबसे पहले मुहैया कराने की कोशिश करते हैं।
1: जी, वैसे न्यूज एजेंसी या किसी भी पत्रकारिता के क्षेत्र में इसमें सत्ता से लेकर संस्कृति, खेल, अर्थव्यवस्था जैसे तमाम क्षेत्र हैं, तो आपकी रुचि इनमें से किस क्षेत्र में है?
0: देखिये, मैं बहुत लंबे समय तक अपराध संवाददाता रहा, फिर राजनीतिक संवाददाता हुआ।
1: जी,
0: अपराध में आज भी जो बड़ी घटनाएं होती हैं रुचि रहती है, और राजनीति में तो खैर व्यवस्थित तौर पर उस पर काम ही करता हूँ, दोनों चीज में मेरी रुचि।
1: जी, और गाने में?
0: गाना तो हमको लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो, पशु पक्षी जानवर, सबको संगीत सबको मोहित करता है, सबको एक तरह से भावनात्मक रूप से अपने साथ वो जोड़ता है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, बहुत कम कोई होगा किंचित उसे संगीत अच्छा नहीं लगता हो।
1: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे अभी?
0: जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद जी। हम पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों की बात कर रहे हैं। तो आनंद जी, आप आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़े रहे हैं
1: जी,
0: और तो देश और समाज की प्रगति उन्नति में आकाशवाणी की भूमिका को कैसे देखते हैं?
1: देखिए, आकाशवाणी आज के भी दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। एक जमाने में, मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो, जब गांव में आग जलाते हैं, जाड़े के दिनों में आग के किनारे लोग बैठते थे, ट्रांजिस्टर रख कर बैठते थे और हर चीज का वो समय होता था, सबको याद रहता कब गाने आने हैं, कब समाचार आने हैं, और लोग बिल्कुल सन्नाटा छा जाता, सभी लोग उस गांव के चौपाल में सुनते थे। और एक तरह से कहिए कि मनोरंजन के लिए आकाशवाणी मतलब रेडियो पर निर्भर हुआ करते
0: थे।
1: और तब से मैं आज तक देख रहा हूँ आकाशवाणी की कभी उपयोगिता मुझे खत्म लगी ही नहीं। कोरोना पीरियड में मैं बीमार था, मुझे भी कोरोना हो गया था और आना जाना भी प्रतिबंधित था, तो इसी आकाशवाणी के केंद्र से मुझसे कहा कि मैं आपकी आवाज रिकॉर्ड करता हूँ, आप उनमें बताइए कि कैसे आपने कोरोना से जंग किया और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। और मुझे ध्यान है, प्रसारण के बाद मतलब मेरे पास 8-10 फोन आए होंगे, तो लोगों ने बताया कि मैं रेडियो पर सुना, तो मुझे लगा कि आज भी रेडियो सुनी जा रही है, आज भी आकाशवाणी की उपयोगिता, आकाशवाणी की महत्ता खत्म नहीं है। और आकाशवाणी ने बहुत प्रयोग किए हैं, लोगों के रुचि का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है और लोगों तक पहुंचने में बहुत काम।
0: आपने सर बताया कि हिंदी में एमए किया है
1: जी,
0: लेकिन फिर भी पत्रकारिता के क्षेत्र में भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो भाषा पे पकड़ बनाने के लिए और क्या कुछ खास किया?
1: देखिए, भाषा तो एक संस्कार
0: जी,
1: आपकी भाषा आपके पूर्वजों से, आपके परिवार से, घर से भी मिलती है। जब आप बचपन से भाषा को समझते हैं, फिर धीरे धीरे उसके होके रह जाते। आप कभी किताबों को पढ़ के लोग सीखते हैं, जानते हैं, व्याकरण तो आप सीख सकते हैं, लेकिन उसमें आप गहरे रमने के लिए, पूरी तरह से उसको अपना बनाने के लिए, आपको आपका परिवार ही, आपका समाज ही जो ज्ञान देता है वो महत्वपूर्ण होता है। और अपने यहाँ ये परंपरा भी है कि लोग एक दूसरे से सीखते आ रहे हैं, श्रुति परंपरा है कि बहुत सुन के भी आप बहुत जानते हैं, तो अखबार की एक अलग भाषा हो जाती है, तो ये आप पढ़ के नहीं जान सकते। आप अखबार में आएंगे तो अखबार की भाषा आपके जो पूर्वज हैं, जो आपको सिखाते आ रहे हैं, उनसे सीखे आप, फिर आप अपने आने वाले लोगों को देते जा रहे हैं। तो भाषा को आप इस ढंग से देखिए कि यह समाज की चीज, पूर्वजों की चीज है, जो आपको जैसा दे रहा है और आप जैसा ग्रहण कर ले रहे हैं, फिर वैसा ही आप प्रसारित करते हैं। हम लोगों के बचपन के जमाने के लोग हैं, उन लोगों ने तो लगातार सुना है, तो एक तो उनकी बोलने की शैली भी ऐसी होती है कि लोग कोशिश करते हैं कि हम भी वैसा बोलें, तो शुद्ध परिमार्जित और अच्छे ढंग से और बहुत ही कर्णप्रिय बोलते हैं। बिल्कुल आकाशवाणी की भूमिका है।
0: समय के साथ हर एक क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं, पत्रकारिता में भी बदलाव आया है। जब आपने शुरुआत की थी पत्रकारिता, तब के दौर और मौजूदा डिजिटल दौर में क्या अंतर दिखता है?
1: देखिए, बहुत बड़ा अंदर। जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी तो खबरें बनाते थे, हाथ से लिखते थे, और सुबह जो अखबार की गाड़ी आती थी उसको अपना लिफाफा पकड़ा दिया जाता था, फिर अगले दिन कई बार वो खबरें तीसरे दिन आती, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि अखबारों में तेजी आई समय से कि हम अपनी खबरें जल्दी से परोसें, तो लोग फोन पर जो बड़ी घटनाएं होती थी इस तरह होता था, फोन पर नोट कराते थे, डेस्क आदमी नोट करता था, लिखता था, खबर अगले दिन आने लगती। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि जब समाचार चैनलों की बहुलता हुई तो अखबारों का ध्यान उधर गया, प्रतिस्पर्धा में लोगों ने जो हाथ से लिखते थे लोग वो कंप्यूटर पर आ गए। मुझे याद है कि वर्ष 1995 में हम लोगों को कंप्यूटर कहा गया अनिवार्य है, आप सीखिए, हम लोग नहीं जानते थे, ना कंप्यूटर की पढ़ाई किए थे, ना जानते थे। हमारे यहाँ जो अखबार के पन्ने बनते थे, पेज लगाए जाते थे, वो केपी संपादक बोलते थे, कैंची प्रसाद संपादक, वो कट पेस्ट होता था, पेस्ट खुद किया जाता था,

0: फिर रात 2 बजे के बाद अखबार का मेकअप होता था, फिर अखबार छपते थे। लेकिन फिर ऐसी स्थिति आई कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, कंप्यूटर पे पेज बनने लगे और ऑटोमेटिक मशीनें आने लगी धीरे धीरे धीरे। तब भी आप देखिए कि एक रिपोर्टर के लिए बहुत जूझना होता था। एक रिपोर्टर मैं अपराध संवाददाता था गोरखपुर में, और बड़ी घटनाएं उन दिनों होती थी। कोई मोहल्ले मोहल्ले हर जगह हम लोग जाके सूत्र बनाए रहते थे, अखबार के जो फोन होते थे वो दिए होते थे, जहां रहते थे वहां आसपास के पीसीओ के फोन, और ये सब हमारे पास खबरों को लाने के लिए एक संसाधन होते थे। जगह जगह टेलीफोन ड्यूटी पे जो पुलिस के होते थे, टेलीफोन ड्यूटी वाले, उनसे संपर्क में रहते थे, 4 बार दिन में उनको फोन करते थे कि आज की घटनाएं क्या हुई। फिर आप देखिए कि एक जमाना आया कि पेजर आ गया
1: जी।
0: अचानक मोबाइल आया, और मोबाइल ने उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों काल के पैसे लगते, लेकिन फिर भी मोबाइल मिलने से बहुत प्रसन्नता थी कि अब खबरें हमारे पास आने लगेंगी। फिर उसके बाद तो मोबाइल ने गजब क्रांति कर दी। वही जमाना था कि 7 साल पहले हम खबरों को लेकर जाते थे, उनकी जनसभाओं में खबर करते थे, वहां जैमर लगे रहते थे तो हमारे फोन भी नहीं काम करते थे। फिर हम वहां से निकलते थे, बाहर आते थे होटल में जहां हम टिके होते थे, वहां से फिर छोटी मोटी पहले सूचनाएं देते थे, फिर थोड़ा आराम से उसको खबरों को लिखते थे, लेकिन उसमें भी बहुत समय लगते। आज की तारीख में क्या है कि उनकी सभा समाप्त हुई और हमारी खबर रेडी।
1: यानी कैंची पेस्ट से लेकर के कंप्यूटर तक का सफर है पत्रकारिता का। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले एक और गाना सुनना चाहेंगे आपके पसंद का।
0: होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम पत्रकार से संवाद में। मैं हूं प्रवीण और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद जी। हम पत्रकारिता और इससे जुड़े सरोकारों की बात कर रहे हैं। अक्सर यह देखने में आता है पत्रकारिता के क्षेत्र में कि धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, कई चीजें आपने खुद ही बताया कि बिल्कुल ही बदल गए हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस पे क्या प्रभाव देखते हैं?
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत बड़ा संसाधन है और अगर सलीके से उसका उपयोग किया जाए तो आपके लिए बहुत सहयोगी है। लेकिन जैसे वही है कि मशीन और व्यक्ति में दोनों की संवेदनाओं में अंतर है। शब्दों के हेर फेर अगर हो गए तो अगर आप आश्रित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं खतरा है। लेकिन कोई भी तकनीक अगर आप उसका उपयोग सलीके से करेंगे, समझदारी से करेंगे और उससे सावधान होकर करेंगे तो आपको वह सहयोगी की भूमिका में आपके साथ निभाता रहेगा। मसलन कंप्यूटर ने जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो तमाम चीजें चूक हो जाती थी। शुरू में मात्रा लगाने में बहुत सारी चीजें गलती हो जाती थी लेकिन फिर वो हुनरमंद लोग उसको सुधार लेते। हाथ से लिखने में चूक नहीं होती थी लेकिन फिर भी प्रूफ रीडिंग की जाती थी, फिर उसको मतलब खबर पेस्ट होने तक उसके साथ जूझता था आदमी, फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती थी। लेकिन कंप्यूटर पर आप सावधान हो गए, सजग हो गए और समझदारी से आप उस पर काम कर रहे हैं, अब तो कहीं गलती नहीं।
0: यानी कहीं ना कहीं कृत्रिम मेधा से सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भावना है। यह तो हो गया पत्रकारिता में बदलाव। पत्रकारिता से आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
1: देखिए, पत्रकारिता समाज के प्रति आपको जवाबदेह बनाता। एक पत्रकार समाज की चुनौतियों को बारीकी से समझता है। हर आदमी निरपेक्ष नहीं हो सकता, कोई ना कोई किसी के सापेक्ष होता है। हमारे अंदर भी कोई भावना होगी, हमें भी कोई अच्छा लगेगा, आपको भी कोई अच्छा लगता होगा। लेकिन एक पत्रकार रहते हुए जब वह अपने काम को संपादित करता है तो उसकी मुख्य भूमिका यह होती है कि वह तथ्य को सही ढंग से परोसे। जब आप तथ्य को सही ढंग से परोसने के आदत में आपके शुमार हो जाता है, जब तथ्य को सही ढंग से आप परोसने लगते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फिर आप सबके प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार हो। समाज में कोई घटना घटती है, अगर आप उसको सलीके से संवेदना के साथ अगर आप उसको संपादित कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप समाज का कल्याण कर रहे हैं। और हर पत्रकार को यह एक सावधानी बरतनी होती है, जो जिम्मेदार है, जो अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक करता है, उसको हमेशा यह ख्याल रखना होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और जब भी आप सकारात्मक काम कर रहे हैं, जैसे हत्या हो गई तो आप कहेंगे हत्या तो कोई सकारात्मक नहीं है, लेकिन हत्या की खबर आप प्रस्तुत करते समय अगर आप सकारात्मकता का ध्यान रखेंगे तो सही तथ्य पर।
0: यानी कहीं न कहीं संवेदनशीलता बढ़ी है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आने से। लंबे समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो हम यह जानना चाहेंगे चलते चलते कि आने वाली पीढ़ी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहती है या जो लोग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में सक्रिय हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या करना चाहिए उन्हें?
1: देखिए, जो भी सोशल मीडिया हो आजकल तो मतलब जिसके हाथ में मोबाइल है वह पत्रकार, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है और खबरें आ रही हैं जा रही हैं और वो भी खबरें परोस रहा है। सामान्य ढंग से आप बाहर निकल रहे हैं, कोई घटना घटी, आपने एक वीडियो बनाया, ऐसे ही ग्रुप में डाल दिया, तो पत्रकारिता का तो काम आपने कर। पर कई बार आप देखिए कि सोशल मीडिया पर और भी जगह लोग अफवाहों के पीछे भागते हैं। एक परोसा हुआ मैटर आ गया और उसको कटेस्ट करके और लोग जिस तरह से संचालित करने लगते हैं उससे बचना चाहिए। एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि तथ्यों की पुष्टि, और इसीलिए एक वर्जन की परंपरा है कि जो भी पक्ष है, जिस पर भी हम खबर लिखते हैं, जिसके साथ हम उससे जुड़ते हैं, उसका पक्ष जरूर रखते हैं। जिस पर आरोप लगाते हैं उसका भी पक्ष लेने की परंपरा और हम लोग लेते हैं। ऐसा होता है कि जो आरोप लगाने

0: वो गढ़ रहा है, माहौल बना रहा है, और जिसको आरोपित कर रहा है वह व्यक्ति निर्दोष है। जब आप उससे बात कर लेते हैं तो फिर वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो हमेशा सभी पक्षों से संवाद जरूरी है, और जब आप समाचार लिखते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें कहीं से भी आपके अपने दिमाग की कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है। उसमें सच्चे तथ्य हैं, वो आप अगर सीधे लिखते हैं तब आपको सही ढंग से उसको देखने को मिलेगा। और यह भी है कि आपके पास जो विचार है उसके लिए आप लेख लिखिए, उसके लिए आप संपादक को पत्र लिखिए, उसके लिए आपके पास तमाम अवसर हैं। लेकिन जब आप समाचार लिखते हो तो आप तथ्यों के साथ छेड़छाड़ न करिए। ये पत्रकार जो भी बन रहे हो, जो हैं, सबसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँ।
1: जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव। आपने बिजी समय में से आकाशवाणी के लिए समय निकाला और अपने महत्वपूर्ण प्रेरणादायक बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: धन्यवाद प्रवीण जी।
1: आज के इस अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक और पत्रकार से, जानेंगे उनके अनुभव और विचार। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: अरे वाह।

रविवार शाम के 6 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को लखनऊ छावनी स्थित दिलकुशा लॉन में आयोजित होने वाले बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 में पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने की पहल का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञों का संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यटन विकास को केवल आधारभूत संरचना

निर्माण तक सीमित न रखते हुए उसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आज लखनऊ में पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को नई गति देने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन विकास के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, खानपान, संस्कृति और सेवा क्षेत्र को भी व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारत मिशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री व गोरखपुर जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज सर्किट हाउस सभागार में भाजपा महानगर और जिला कोर कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने, प्रदेश सरकार के 9 वर्ष तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 जून को जन्मदिन के अवसर पर 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्री परीक्षा 2026 में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया हो। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो इस घंटे तरन्नुम के साथ।

और सच में ऐसा ही दिल करता है लखनऊ के लिए कि लखनऊ जो कहे वो बन जाए, इश्क बन जाए या मुश्क बन जाए, क्या बन जाए जो लखनऊ को पसंद आए। और शायद इसलिए लखनऊ वालों के पास एक अजीब सी खुशबू आती है, एक अजीब सी खुशबू मुअत्तर रहती है उनके आसपास, और जब वो बोलते हैं तो समझ जाते हैं लोग और हमेशा पूछते हैं कि आप लखनऊ से ही हैं, कि आप हमेशा लखनऊ में ही रहे। तो बहुत ही गर्व से हमारा सीना चौड़ा होता है और हम बताते हैं कि हाँ, हमारी पैदाइश लखनऊ से है, हमारे दादा दादी नाना नानी ये सारे लोग लखनऊ से हैं। और जब हम लोग ये बताते हैं तो सामने वाला फिर पूछता है, अच्छा उस दौर में लखनऊ कैसा था, उस दौर में लखनऊ क्या हुआ करता था जब आपके दादा नाना रहते थे, जब आपके जो पूर्वज थे वो यहाँ पर रहते थे। तो अक्सर एक ठंडी आह भरते हैं और बताते हैं कि भाई उस दौर में लोग आपस में चपखलश करते थे, चकल्लस करते थे, बहुत सारी महफिलें सजती थीं, शेर व शायरी होती थी, लोग इत्र लगाते थे, गजरे बिकते थे, मक्खन जो आज भी है, और चौक की चिकन की जो कारीगरी है वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। मतलब ठंडाई की अगर बात करें, चिकनकारी की बात करें, खाने की बात करें, यहाँ के जितने भी लवाजमात हैं उनकी अगर हम बात करें तो किस किस चीज़ की बात करें। लेकिन जब ठंडी आह भरते हैं हम तो किस लिए भरते हैं, वो खेल जो उस दौर में खेले जाते थे वो कहीं ना कहीं खो से गए हैं, गुमशुदा से हो गए थे। लेकिन फिर हमारे देश ने और हमारे देश की सरकार ने कोशिश की कि उन खेलों को फिर से जीवित किया जाए, उनको फिर से लोगों के बीच में प्रसिद्धि दिलाई जाए, उनको फिर से ऐसी जगह पर लाया जाए कि लोग पहचाने कि हाँ ये जो खेल है, ये जो खेल थे वो थे नहीं, एक बार फिर से शामिल हो गए हैं। और आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मेरा इशारा किस तरफ है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय टैराथॉन कॉम्पिटिशन की, प्रतियोगिता की, तो शुरू हो चुकी है आज से। टैराथॉन की अगर बात करें तो ये खेल सीधे तौर पर जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं उनकी जड़ों से और बच्चों से जुड़ा हुआ है। अक्सर आप देखते होंगे या कहीं ना कहीं कहीं आपने कोई पिक्चर देखी होगी या कोई ऐसा सीन देखा होगा कि बच्चे दौड़ते चले जा रहे हैं, हाथ में उनकी एक छोटी सी डंडी होती थी और एक टायर होता था, उसको दौड़ते दौड़ते लेते चले जाते थे। और वही जो प्रतियोगिता है वो आज से शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, टैराथॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में देश के पारंपरिक और जितने भी स्वदेशी खेल थे उनको बढ़ावा देने की दिशा में शुरुआत शुरू हो चुकी है। और केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आज से लेकर 6 जून तक प्रथम राष्ट्रीय टैराथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो बचपन में गलियों और ग्रामीण अंचलों में खेले जाने वाले साइकिल के टायर के खेल ने अब एक एकदम मॉडर्न और कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव रूप ले लिया है और नेशनल लेवल पर ये अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और कह सकते हैं कि इसने मजबूत पहचान दर्ज कराई है। तो बस और भी बहुत सारी बातें हैं जो लखनऊ से जुड़ी हैं, हमारे वतन से जुड़ी हुई हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी मेरा फ़र्ज़ है कि हम आप तक पहुंचाएं एक और बहुत ही सूदिंग सा नंबर, 6:10 प्रोग्राम शाम अवध तरन्नुम में आपके साथ, सुनते रहिए।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो एफएम,
3: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
4: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
5: हेलो, आप एफएम रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं एफएम रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो एफएम हर रोज शाम 7 बजे।
6: और आपको वक्त तो बता दें, 6:15 हो चुके हैं। प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध तरन्नुम में, आपके साथ सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की बोलता एफएम।

और दोस्तों 6:20 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध, तरन्नुम है आपके साथ और बात करते हैं पहलाज नेहलानी। इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और फॉर्मर चेयरमैन थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के, जिन्होंने आज इस दुनिया को 76 साल की उम्र में अलविदा कह दिया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि आर्टिस्ट कलाकार कभी मरता नहीं है, कभी भी वो इस दुनिया से अगर चला भी जाए तो उसकी जो आर्ट है ना वो हमेशा अजर अमर रहती है। और 1980 से एज अ फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज नेहलानी ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। अगर उनकी हिट फिल्मों की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, जिनमें से शोला और शबनम, आंखें, ये फिल्में जो हैं वो टॉप मोस्ट हिट मूवीज में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने जूली 2, इल्जाम, आग ही आग, आंखें, पाप की दुनिया, गुनाहों का फैसला, दिल तेरा दीवाना, तलाश, हथकड़ी, मिट्टी और सोना, बहुत सारी फिल्में उन्होंने दी हैं इस फिल्म इंडस्ट्री को। और कह सकते हैं कि पहलाज नेहलानी आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा लोगों को उनकी याद दिलाती रहेंगी। आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म का ये ट्रैक।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
4: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
6: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
5: ओनली 100.7 FM रेनबो।

अच्छा एक चीज है, घर में जब कहा जाता है कि भाई बच्चों से, स्पेशली बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, और घर में जब कहा जाता है कि भाई सफाई करो सफाई करो, तो बच्चे बड़ा आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि भाई हम क्यों सफाई करें, हम क्यों ये गिलास इधर से उधर रखें, हम क्यों बॉटल भर के फ्रिज में रखें, हम क्यों फ्रिज की सफाई करें। तो फिर मम्मियां क्या कहती हैं, अच्छा कोई बाहर से आएगा सफाई करने के लिए, घर अपना है तो सफाई तो तुमको मिलके करनी है। तो सारे लोग मिलके फिर सफाई अभियान चलाते हैं, और ज्यादातर ये जो चीजें होती है ना, ये संडे को होती हैं, क्योंकि भाई संडे को हॉलीडे होता है और बच्चों का अभी स्कूल अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन जब पूरे घर की सफाई की अगर बात की जाए तो फिर पूरे घर के जितने भी लोग हैं सब लोग मिलके लग जाते हैं और फिर सफाई शुरू हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि बताइए एक आदमी है कितनी सफाई करेगा, कितना काम करेगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, जाले छुड़ाएगा, बेडशीट्स धोएगा, कर्टन धोएगा, ये करेगा वो करेगा। यस, एक आदमी जो है वो पूरे घर की सफाई नहीं कर सकता है, सिर्फ घर की बात हो रही है। तो जरा आप हमें बताइए कि पूरे शहर की सफाई करने के लिए क्या एक आदमी काफी है? तो आप कहेंगे नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो काफी हैं। तो जब बहुत सारे लोग हैं, उन बहुत सारे लोगों की लाइन में क्यों ना एक नंबर मेरा भी हो, एक नंबर आपका भी हो, और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। भाई देखिए, जून आया है, अब योग दिवस भी आने वाला है, विश्व पर्यावरण दिवस भी आने वाला है, और अगर सबसे पहले योग की बात करें तो हमेशा हमेशा हम लोग रोज कहते रहते हैं भाई थोड़ा सा अपनी लाइफ में योगा को शामिल कीजिए, योग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भत्सिका कीजिए, भ्रामरी कीजिए। बहुत सारे योग ऐसे हैं जिनसे आप करके फैजयाब हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी आर्थिक जो संबल है ना वो भी आपको मिलेगा, जाहिर सी बात है पैसे कम खर्च होंगे। आप जब योगा कर करके एकदम हेल्दी वेल्दी फाइन हो जाएंगी तो फिर बताइए कि क्या जरूरत पड़ेगी पैसे की, क्या जरूरत पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने की। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम सफाई की बात करें, योग से पहले भाई ये भी सफाई कर लें कि योग के साथ निरोग अगर आपको रहना है तो हमें अपने के आसपास की सफाई भी बहुत जरूरत है कि हम उसको करें। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हमसे क्या मतलब है, कूड़े वाला आता है कूड़ा लेके चला जाता है, अब कोई कूड़ा फेंक देता है तो हम क्यों सफाई करें, या मान लीजिए आसपास झाड़ी निकल आती है अरे हम क्यों करें, सामने वाले भी तो हैं वो क्यों नहीं करते, उनकी कॉलोनी में उनका भी तो घर है वो तो नहीं करते, हम क्यों करें। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये चीजें एक तो नंबर एक अच्छी बात नहीं है, दूसरी ये कि कहते हैं ना कि अगर आपको किसी पे असर डालना है तो बहुत ही नर्म लहजे में बात कीजिए। नर्म लहजे का जो असर होता है ना वो तलवार की धार से भी तेज होता है। जब आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, जब आप बहुत ही नरमे से किसी से कोई काम कहते हैं तो फिर इंसान आपके कह सकते हैं कि चप्पल भी उठाने को तैयार होता है। उसी तरह जब अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, और आप जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए कि इस गर्मी में अगर आसपास गंदगी होगी तो बीमार कौन कौन पड़ेगा, सिर्फ सामने वाली आंटी या पड़ोस वाले अंकल ही बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका भी नंबर आएगा, मच्छर होंगे, गंदगी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो होने वाली हैं। इसलिए क्यों ना अभी से उन पे लगाम लगा ली जाए। और अब विश्व पर्यावरण दिवस पर हम आपको बता दें कि नगर निगम की तरफ से कई आयोजन किए जाएंगे, जिनमें जितने भी 110 वार्ड हैं उसमें खास तौर पे जो सफाई अभियान है वो तो चलाया ही जाएगा, लेकिन साथ ही पौधरोपण भी किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो गोमती नदी के तट हैं वहां पर भी स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, और इसको प्रभावी संचालन के लिए गोमती नदी के जितने भी तटवर्ती फील्ड हैं वहां पर 8 क्लस्टर बांटे गए हैं। और आपको ये इसलिए हमें बताना बहुत जरूरी है कि अगर सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सुबह सुबह अगर आप गोमती के किनारे जाते हैं, तो कल बिल्कुल जाइएगा, बहुत अनिवार्य रूप से जाइएगा, जरूर जाइएगा, क्योंकि जो अभियान है सफाई अभियान है वो शुरू करना है और उसमें आपका भी फर्ज है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि सारा जो गोमती का पानी है वो सारे लोग पीते हैं, तो ये सबका फर्ज है कि थोड़ी थोड़ी सफाई की जाए। और उसके बाद जो एक निखर के गोमती आती है, लहराती इठलाती बलखाती, एकदम साफ शफाफ, और बस ऐसा लगता है कि बस उसका

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा, लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

0: FM.
1: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए.
2: What is mobile number? What is your smile number?
3: What is your style number? करो क्या dial number?
4: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
0: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं. अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे.

अच्छा कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि भाई दो मिनट के लिए रुको, एक मिनट रुको, लेकिन लोग कहते हैं भाई दो मिनट के लिए रुको, बहुत जरूरी बात करनी है। और अक्सर दो मिनट से जो बातें शुरू होती हैं फिर वो होते होते 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, ना जाने कितने कितने मिनट तक बातें होती रहती हैं। देखिए बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दो मिनट मतलब दो मिनट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये दो मिनट जो है ना वो ठहराव है। किसका ठहराव है आपको ये भी बता दें, दो मिनट ठहराव है देहरादून वंदे भारत का शाहजहांपुर में। देहरादून जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव वेडनेसडे से यानी बुधवार से शाहजहांपुर स्टेशन पर भी हो गया है, लेकिन ये जो ठहराव है ये सिर्फ दो मिनट का होगा। तो अगर दो मिनट में आपको लग रहा है कि भाई आप शाहजहांपुर में वंदे भारत ट्रेन टिकी, आप आराम से बिल्कुल पैक वैक लेके लगेज लेके तैयार हैं चढ़ने के लिए, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट। और ये खुशखबरी आपके लिए है क्योंकि देहरादून लखनऊ जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस शाहजहांपुर पहुंचेगी कितने बजे, 8:04 पे। तो ये बहुत अच्छी सी बात थी जो हमें लगा कि हमें आपसे शेयर कर देनी चाहिए। और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि हम आपसे शेयर कर दें। अब देखिए आम की अगर बात करें तो भाई आम आ रहा है, बच्चे अक्सर पूछते हैं भाई तरबूज लेके चली आती हैं, खरबूजा लेके चली आती हैं, आम कब आएंगे, आम कब आएंगे। और आम देखिए आ भी गए हैं, अलग अलग तरह के आम हैं, कोई बहुत बड़े बड़े आम नजर आ रहे हैं, कोई बहुत सतरंगी आम नजर आ रहे हैं, कोई कैसे आम नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग उसको बड़े खुशी खुशी लेके जाते हैं और बताते भी हैं लोग कि भाई इतने महंगे आम हैं, बहुत महंगे वाले हैं, ये बाहर जाते हैं, ये वहाँ से आए हैं, ये वहाँ से आए हैं। और जब उसको लेकर हम जाते हैं और जब उसको पील ऑफ करते हैं खाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता, मतलब याद वही आती है दशहरी की, लंगड़ा, चौसा, तुखमी और तोतापरी, बहुत सारे आम हैं, ऐश्वर्या, राहुल, सचिन, तेंदुलकर, ना जाने कितने कितने स्पेशीज हैं जो आम की मिल जाती हैं। लेकिन कुछ आम ऐसे हैं जिनमें कोई टेस्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लेके जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे आम आ गए, आम आ गए, लेकिन आम में वो टेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुदरत ने उसमें टेस्ट शामिल नहीं किया है। और कुदरत इतनी समझदारी से काम करती है, इतनी समझदारी से आपके लिए हर चीज को प्रेजेंट करती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। इतने सारे फल हैं, आड़ू देख लीजिए आप, और भी बहुत सारे फल हैं जिनके तो नाम भी नहीं पता रहते हम लोगों को, बच्चों के पास लेके जो

बच्चे कहते हैं ये क्या है, ये क्या लेके आया है? तो हम लोग बताते हैं ये बेटा फालसे है, ये शैतूत है। अच्छा ये शैतूत ये क्या होता है? बच्चे उसको छूते भी डरते हैं क्योंकि बच्चों को हमने आदत नहीं डाली है। बच्चों को आदत क्या पता है? बच्चों को मैंगो पता है, बनाना पता है, एप्पल पता है, लेकिन और सारे जो फ्रूट्स हैं वो नहीं पता है क्योंकि उनका टेस्ट बच्चों ने जुबान पे कभी लिया ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका जितना भी टेस्ट है वो सारे अपने बच्चों की जुबान पे जरूर रखें क्योंकि अगर बच्चे में टेस्ट नहीं पता चलेगा, बचपन से उनको आदत नहीं होगी। और मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चा थूक देता है, कुछ भी हटा देता है मुझसे, बच्चे कहते हैं अरे नहीं खाता है, इसको मत खिलाओ, क्यों जबरदस्ती कर रही हो, बच्चा है बच्चा है। लेकिन बच्चा बड़ा जब होता है तब भी वो ऐसे ही रहता है क्योंकि बच्चे को टेस्ट तो पता ही नहीं है। उसको क्या पता, उसको मैंगो पता, उसको बनाना पता, उसको एप्पल पता है, बाद में उसको पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें बता देंगी क्योंकि मम्मी ही बताती है कि बेटा ये खा लो। बहुत ही हम लोग ऑनर फील करते हैं, बहुत ही सम्मान फील करते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे ने बर्गर खाया, आज हमारे बच्चे ने पिज्जा खा लिया। लेकिन ये सारी गलतियां हम और आप करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि जितने भी सीजनल फ्रूट हैं उनको खिलाइए। अब सवाल ये है कि ये आम और ये जामुन और ये शहतूत ये सारी चीजें एक साथ क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं क्योंकि जब हम लोग बेतहाशा आम खा लेते हैं, मैं अपनी बात कर रहे हैं, बहुत सारे आम हम खाते हैं और जब आम आते हैं तो सिर्फ आम ही आम खाते हैं, मतलब आम इतने आम हो जाते हैं कि बस खाते ही रहते हैं खाते रहते हैं। तो क्या होता है कि भाई शुगर लेवल जो है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो अगर आप 5 आम खाते हैं और 5 जामुन खा लेते हैं तो शुगर लेवल हमेशा आपका बैलेंस्ड रहता है। इसलिए कुदरत हमें, अब आके तो कोई कहेगा नहीं कि भैया तरन्नुम ऐसा करो, ये खा लो उसके बाद ये खा लो, शहतूत का क्या काम है, ये सारे जितने भी काम है ये सब हमारे आंतों की सफाई करते हैं, जितने भी फाइबर्स होते हैं, इतना सार है इसके अंदर, इतनी चीजें इसमें छुपी हुई हैं, इतनी इसके अंदर कह सकते हैं कि राज हैं जिनको अगर हम नहीं भी जानते हैं लेकिन अगर आप खाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप इतने हेल्दी रहते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं आप कि आपकी स्किन अलग से ग्लो करती है, आप अलग से खूबसूरत लगते हैं। कुछ लोग ऐसी हैं इस दुनिया में कि जो बिल्कुल फॉलो करते हैं वही रूल जो कुदरत ने उन्हें दिए हैं। फिलहाल चलिए फॉलो करते हैं, कहो ट्रैक तू मेरी मैं तेरा। आप तक 6:49 प्रोग्राम चल रहा है शाम तरन्नुम है आपके साथ, सुनते रहिए द हार्टबीट ऑफ लखनऊ।

0: Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: और 6:52 हो चुके हैं दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध और बहुत सारी बातें हैं जो हमने करी हैं कि फल खाना चाहिए, ये करना चाहिए, सफाई करना चाहिए, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज के लिए मनी की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है और पैसे के लिए क्या करते हैं लोग, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे हुनर हैं जिनको वो आत्मसात करते हैं, उसके बाद उस हुनर से वो पैसे कमाते हैं, तभी तो सारी खुशियां जो हैं वो घर में आती हैं। तो अगर इंटर है या फिर ग्रेजुएट हैं या फिर आप ITI पास हैं तो आपके लिए जॉब के मौके ही मौके हैं। और आपको बता दें कि ITI अलीगंज में रोजगार मेला है और वो कब है, कल है, कल बहुत सारी चीजें हैं होने वाली हैं कल। तो आपको बता दें कि इसके लिए क्या है कि आपको शामिल होने के लिए इस मेले में, रोजगार मेले में शामिल होने के लिए रोजगार संगम पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण आपका होना जरूरी है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो भी चाहते हैं कि भाई वहां जाए, तो अपनी जो CV की फोटो कॉपी है और जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाना है और आप सीधे जाइए मेले में, आप जाकर भाग ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर रोजगार संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में या मान लीजिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो जो स्टूडेंट हैं जो चाह रहे हैं वहां पे पार्टिसिपेट करना, वो टोल फ्री नंबर 1-55-330 यानी 1-55-330 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो संपर्क बनाए जा सकते हैं, लेकिन देखिए रेनबो का जो संपर्क है उसको बिल्कुल आप तोड़ने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा खूबसूरत संगम है, खूबसूरत ऐसा संपर्क है जिसमें आप अपने आप को बहुत ही लाइट फील करते हैं, बहुत ही फ्री फील करते हैं, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, बहुत ही प्यारा महसूस करते हैं और बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुछ ही देर में हमें पता है किस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार है और वो है आपका मोस्ट फेवरेट शो जो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जिसका नाम है हेलो FM। तो बस बिल्कुल तैयार रहिए।

आज शाम के बजे हैं सात। अब सुनिए टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास को केवल आधारभूत संरचना निर्माण तक सीमित न रखते हुए उसे स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकराल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का करेंगे शुभारंभ। उनके नेतृत्व में पूरे राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधरोपण किए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का करेंगे शुभारंभ। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गोरखपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 दिवसीय भ्रमण पर तुलसीपुर पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी ने देवी पाटन मंदिर पहुंचकर आज व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अग्निशमन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बहुमंजिला भवनों, सरकारी व निजी दफ्तरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल और होटलों की व्यापक स्तर पर सघन जांच करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने आज प्रांतीय पुलिस सेवा PPS के 206 अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। लखनऊ में तैनात तकरीबन 12 डिप्टी SP का भी हुआ तबादला। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग।

0: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित TGTT भर्ती की दो दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी हुए शामिल और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रवक्ता संवर्ग के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 15 जून से 27 जून तक किए जाएंगे। आयोजित अभ्यर्थी साक्षात्कार पत्र कल से आयोग की वेबसाइट से कर सकेंगे डाउनलोड। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन शाम 7:20 पर किया जाएगा प्रसारित। सुनते रहिए रेनबो तरनों के साथ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

0: अब देखिए इतना छोटा सा दिल होता है लेकिन क्या क्या चीजें सह सकता है, बिजुरिया सह सकता है, मतलब दिल पे बिजली गिर रही है, दिल पे धक्के लग रहे हैं, दिल पे ये हो रहा है, दिल पे वो हो रहा है, लेकिन दिल तो दिल है। अब दिल तो दिल है, मतलब दिल कैसे धड़कता है, क्योंकि धड़कन है उसके पास। और जब ये धड़कन और तेज हो जाती है तो फिर हमारे जो लिसनर है ना वो बिल्कुल बेकरार हो जाते हैं, मतलब एकदम परेशान हो जाते हैं कि बस कैसे भी करके फोन में घुस जाएं और फोन में घुस के कैसे भी आ जाएं स्टूडियो में और कहें कि भाई तरन्नुम मैम इतनी देर से फोन मिला रहे हैं, लगता ही नहीं। और जिसका लग जाए तो बाकी जिनका नहीं लगता वो सोचिए कितने नाराज हो जाते हैं, कितने गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले हम जल्दी से बात करते हैं हमारे आज के जो फर्स्ट कॉलर हैं, पहले जो कॉलर हैं वो कौन है, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो दीदी नमस्कार
0: जी, बहुत बहुत प्रेम पूर्वक आपको भी हमारा नमस्कार जी। अपना नाम बताइए।
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, पहले मतलब अपने जिले का नाम बताते हैं, फिर अपने मोहल्ले का नाम बताते हैं, फिर बाद में अपना नाम बताते हैं आप।
1: जी हाँ दीदी।
0: और बताइए भगवान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कर रहे थे अभी आप बताइए।
1: दीदी आपका कार्यक्रम ही सुन रहा था और नंबर मिला है, मिल भी गया दीदी।
0: अच्छा, मध्य प्रदेश में इस वक्त मौसम कैसा है बता सकते हैं आप।
1: दीदी अभी पानी गिर रहा है हमारे यहाँ।

0: बात कर रहे हैं?
1: बरसात हो रही है आने
0: सच्ची? सच्ची
1: सच्ची में दीदी।
0: अरे क्या बात है, मतलब बारिश हो रही है तो आपने एकदम खुश कर दिया दिल। तो भैया बारिश को थोड़ा सा धक्का दे दीजिए, कह दीजिए कि यूपी में भी आ जाए एमपी से।
1: दीदी आपके दर से हमारी इधर आया है पानी।
0: अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ बरसा नहीं, सीधे आपके पास चला गया?
1: पहले आपके इधर गिरा फिर हमारे इधर आया है।
0: अच्छा अच्छा, ये किसने बताया कि आपको लखनऊ में पानी गिरा था, बताइए
1: दीदी। 4-5 दिन पहले हमें आकाशवाणी लखनऊ से मालूम पड़ा था। अयोध्या से मालूम पड़ा था दीदी, अयोध्या के आते हैं अमरजीत सर जी, उनने बताया था कि हमारे यहाँ बहुत भारी बारिश हुई है।
0: अच्छा, सुनते रहते हैं आप इसका मतलब। तो चलिए ठीक है, 4-5 दिन पहले पानी गिरा था। 4-5 दिन हो गए भगवान सिंह जी। आप बताइए, आप जल्दी से प्रार्थना कीजिए कि भाई बारिश की शुरुआत हो जाए। और हम तो ये कहते हैं कि जो हो अच्छे के लिए हो। बताइए, गलत बात है कि सही बात?
1: बिल्कुल सही बात है दीदी।
0: और क्या कहना चाहेंगे आप?
1: दीदी बस यही कहना चाहेंगे सर, गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है, ये 2 हफ्तों बाद हमारे इधर भी बरसात चालू हो जाएगी दीदी। तो हम खेती किसानी करते हैं तो बोनी करेंगे सोयाबीन और मक्का की दीदी।
0: अच्छा, तो गाना जो आपने अभी पसंद किया सुनाई दे रहा आपको धीरे धीरे?
1: जी हाँ दीदी, राजा बाबू फिल्म का है, याद सताए वाला गीत है।
0: किसको सुनवाएंगे जल्दी बताइए?
1: जी विनीत कुमार जी हैं, राहुल कुमार जी हैं और प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं और हमारे एक मित्र और राजन गंगवार जी, इन सबके साथ सुनाएंगे। मिंटू तिवारी जी।
0: मिंटू तिवारी जी, जी बिल्कुल।
1: बहुत बहुत रहेगा दीदी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी, और दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और 7:12 हो चुके हैं दोस्तों, आपको बता दें कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लाइन पर कोई है, उनसे बात करते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्ते, कौन मिल रही है?
2: संगीता बोल रहे मैम, बंगला बाजार लखनऊ से।
1: संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम हेलो एफएम में। जी संगीता जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं?
2: थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात हो रही है।
1: बहुत बहुत अच्छा हमें भी लग रहा है आपसे बात करके संगीता।
2: पहली बार बात हो रही है आपसे, बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी
1: है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे संगीता जी?
2: बस यही गाना सुनना था और बात करना था, बहुत अच्छा लग रहा था। यही सोचते जब आती है आज आपसे बात हो जाए, अब पता नहीं कैसे मेरा फोन लगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं था मेरा फोन लगेगा आपसे बात।
1: हम बता रहे हैं ना कैसे लगा फोन, आपने फोन उठाया होगा, फिर हमारा नंबर मिलाया होगा, उसके बाद बेल गई, उसके बाद हमने फोन को पिक किया और हेलो किया और आपने हेलो बोला और बस फोन लग गया।
2: और जो सोचते हैं मेरा फोन लग गया तो लगता नहीं आज लग,
1: इसलिए तो कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कोई चीज को अगर आपको हासिल करना ना उसको सोचना छोड़ दीजिए, आप करके देखिए, ये किसी भी चीज को आप तो आपने बहुत शिद्दत से नहीं मिलाया होगा, आपको लगा होगा अरे उठाते हैं फोन मिलाते हैं मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ना।
2: हाँ रोज मिलाते हैं, नहीं उठता फोन, मिल भी जाती है लेकिन नहीं उठता, हम कहें चलो ऐसे ट्राई करते हैं।
1: चलिए मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी बताइए?
2: बस ये अच्छा लग रहा है आपका जो है
1: ये बताइए कि अभी आप घर में हैं, क्योंकि देखिए आप ऐसी जगह पे रहती है ना, बंगला बाजार, यानी बाजारी बाजार है सब तरफ।
2: हाँ बाजार तो है हमारे यहाँ, बंगला बाजार, अब तो मंगल बाजार भी आ गई है हमारे यहाँ।
1: अच्छा मंगल बाजार भी उधर लगने लगी है, क्या बात है?
2: अब मंगल बाजार इधर लगने लगी, इधर कॉलोनी पीडब्ल्यूडी कॉलोनी है यही।
1: तो पैसे तो आपके पास बचते नहीं होंगे, क्योंकि हर मंगल आप जरूर टहलने निकलती होंगी है ना, औरतों को रहता ही है ये कि भाई चलो कुछ नहीं है तो लो चमचे खरीद लेते हैं, कुछ नहीं है तो आप
2: सही कह रही हैं
1: प्लेट ले देते हैं, अरे यार तौलिया एक ले लेते हैं, कुछ नहीं तो कुछ ले ही लें, ऐसा कैसे हो गया कि शॉप
2: बाजार लगने लगी सबसे जो है, हर मंगल कुछ ना कुछ ले दे तो पैसे जो है।
1: अच्छी बात है, मंगल ही मंगल हो आपकी लाइफ में, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है आपके लिए। गाना किसको सुनवाना चाहेंगी संगीता जी?
2: गाना आपको मैं सुनाना चाहूंगी,
1: धन्यवाद।
2: और जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी श्रोताओं को,
1: चलिए बहुत अच्छा लगा संगीता जी बात करके आपसे,
2: आवाज जा रही है,
1: आपकी आवाज तो पूरी दुनिया में जा रही है, न जाने कौन कहाँ सुन रहा है,
2: सभी को हमारी तरफ से
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और संगीता जी की पसंद का ये ट्रैक, उसके बाद बात करते हैं हमारे अपने नेक्स्ट कॉलर से।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति

0: मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
1: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसन हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं, जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान कल पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्यघर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन और राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार

0: के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जन कल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक की अवधि में जन प्रतिनिधि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: इसी क्रम में आज विभिन्न जनपदों में मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
3: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जनता सोच भी नहीं सकती थी।
1: 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया, मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: और 7:35 हो गए हैं और देखिए अक्षय कुमार तो वैसे ही लग रहे हैं इस गाने में, लेकिन हीरोइन जो है वो बदल गई है। फिलहाल हमारे पास जो कॉलर्स हैं वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि भाई ये तो एक रीत है दुनिया की कि लोग आते हैं जाते हैं, बात होती है, चले जाते हैं, निकल जाते हैं, जिंदगी जीते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और फिर निकल जाते हैं। उसी तरह ये जो वक्त है ना वो भी बस आगे आगे आगे आगे बढ़ता ही चला जाता है। और वक्त एक ऐसा होता है कि कहते हैं लोग कि भाई गुजर जाता है, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए जल्दी से बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो
1: हेलो
0: जी बताएं कौन बोल रहे हैं।
1: जी अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, बताएं कौन बोल रहे हैं।
1: जी हम तरम के मोहम्मद फैज बोले, हमारा बड़ा भाई ने आज फोन लगाया था मोहम्मद सहीर जी ने, तो उसने कहा ले बात थोड़ी कर लो।
0: अच्छा तो थोड़ी सी बात कर लीजिए फिर आप।
1: हाँ ठीक है, बस मतलब कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए।
0: और बताइए क्या कहना।
1: जी दीदी अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मतलब रेनबो पे आपका मतलब जो है चैनल नहीं आ रहा है कल से।
0: अच्छा
1: हाँ, मतलब हमारे यहाँ और उसके बाद बाबू अंसारी भाई के यहाँ, मोहम्मद तालिब भाई के यहाँ और रिंकी पिंकी के यहाँ मतलब कहीं नहीं मतलब चैनल है, और ऐप के माध्यम से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: मतलब सुनाई तो दे रहा है ना एटलीस्ट आपको।
1: हाँ सुनाई तो दे रहा है, लेकिन अभी मतलब जब रेडियो पे बता तो उसकी बात अलग होती है।
0: हाँ ये बात है, लेकिन अगर आपको ये जो प्रोग्राम है और जो ये आपको चैनल सुनाई दे रहा है तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे और अच्छे से आ सकता है, कैसे क्लैरिटी से आप सुन पाते हैं हमारे प्रोग्राम में। बताइए गाना किसको सुनवाना चाहेंगे।
1: जी गाना सबसे पहले आपको सुनवाना चाहेंगे, उसके बाद में तमाम परवीन आपा है और मेरी बहन है गुलफ्ता आपकी सिद्दीकी वाली संडीला वाली और रिंकी पिंकी है।
0: अच्छा और

0: और मोहम्मद सगीर भाई हैं।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद में बाबू अंसारी भाई हैं और तालिब भाई हैं और जावेद अख्तर भाई हैं और यासिर हमीद भाई हैं और आमीन भाई।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल करी। और साथ ही साथ दोस्तों वक्त आपको बता दें कि 7:37 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम तरन्नुम में आपके साथ। और कभी कभी होता है ना कि एक मूड होता है, इंसान का एक मूड होता है कि भाई अब इस तरह के गाने या अभी चुपचाप बैठते हैं या फिर अभी ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी आप एकदम रिलैक्स मूड में बैठना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं बहुत ही पैपी नंबर्स जो है ना वो बहुत प्ले हो चुके हैं, आप कुछ ऐसे गाने। यस एग्जैक्टली, मेरा मतलब यही था कि इस तरह का सूदिंग से नंबर इस वक्त आप तक पहुँचाएं। और क्योंकि लिसनर्स ने फरमाइश मेरे ऊपर

0: बताइए, 30 साल की बेचैनी और आज आपको चैन आएगा ना?
1: जी
0: बताइए कितना वो हो गया, 30 साल से तो रेनबो भी नहीं था। रेनबो मतलब आप जरूर आकाशवाणी में फोन लगाते रहे होंगे, है ना?
1: जी।
0: अच्छा चलिए ये बताइए, अच्छा पत्र वत्र भेजे तो पत्र पढ़े गए आपके कि नहीं पढ़े गए?
1: कहाँ पढ़े गए सर।
0: तो कहाँ भेजे थे आपने पत्र?
1: अरे आपके के कारखाने में भेज रहे थे।
0: बताइए कारखाने का आपने नंबर ही गलत लिखा होगा, तभी तो खत यहाँ तक पहुँचे ही नहीं पत्र। क्या पता कौन उसको सहेज के रखा होगा 30 साल से। चलिए ये बताइए मूलचंद जी, गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: अरे हमारा दिल बहक जाता है आधी रात को।
0: आपका दिल बहक जाता है आधी रात को, ये गाना सुनेंगे आप?
1: जी।
0: अच्छा तो ये कौन सी पिक्चर का गाना है ये बताएंगे आप?
1: अरे इतना तो हमें याद नहीं, आप बता दीजिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो गा के बताएंगे, आपका दिल बहक जाता है आधी रात को, ऐसे कुछ गा के बताएंगे?
1: यही गाना है सर।
0: आपका दिल बहक जाता है आधी रात को, इस तरह से?
1: जी जी जी।
0: ओहो अरे भाई, देखिए मूलचंद जी, आप जो सोच रहे हैं ना गाना, वो वाला गाना नहीं है, वो ये वाला गाना होगा जो अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 30 साल की जो आपकी बेचैनी थी, देखिए आज खत्म हो गई, और अच्छा लगा आपसे बात की। ठीक है,
2: अच्छा लगा।

0: जी हाँ, 7:49 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम। जल्दी से बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन से हैं वो और कहाँ से हैं। हेलो,
1: श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव से बहन जी बोल रहे हैं।
0: अरे श्री प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, कैसे हैं आप? इतने दिनों के बाद आपसे मेरी बात हो रही है।
1: बहन जी फोन नहीं लग पाता, लगा है आज, आज लग गया।
0: देखिए लग गया और आपसे मेरी बात भी हो रही है। और तिवारी जी बताइए क्या चल रहा है उन्नाव में?
1: बस बस बहन जी ऐसे बैठे हैं बाहर।
0: अच्छा,
1: पंखे की हवा खा रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: गर्म बहुत है बहन जी।
0: हाँ सच में गर्म तो बहुत है और पंखे की हवा खा रहे हैं। खाना ना खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं,
1: खाना वाना खाते हैं हम 9:30 लगभग खाते हैं जी। उम्र हमारी 74 साल की।
0: क्या बात कर रहे हैं आप?
1: कसम से 74 साल।
0: अरे भाई आपकी आवाज़ से तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई 24-25 साल का बोल रहा है।
1: 74 साल की उम्र।
0: क्या बात है, तो ईश्वर करे, अल्लाह करे, भगवान करे कि आपकी उम्र 74 से दुगनी तिगनी चौगनी हो।
1: बहन जी हमेशा सुनते हैं आप लोगों का प्रोग्राम,
0: कैसा लगता है?
1: बहुत बढ़िया लगता है बहन जी।
0: अच्छा,
1: हमको सुबह पुष्पांजलि वो सुनते हैं, बहुत बढ़िया लगती है।
0: अच्छा,
1: आपके गीत उसमें आते हैं सब।
0: जी जी जी जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाते होंगे।
1: हम सुबह 5 बजे बहन जी उठ जाते हैं।
0: अच्छा, और सोते कितने बजे?
1: सोते हम 11:30 के लगभग।
0: 11:30 बजे मतलब तुरंत तो नींद आती नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगता होगा नींद आने में।
1: मतलब 12 बजे तक,
0: 12 बजे से लेके और 5:30, यानी कि 5.5 घंटे की नींद आप लेते हैं। गहरी नींद सो जाते हैं आप?
1: घंटे 1.5 घंटे मतलब दोपहर को।
0: अच्छा अच्छा,
1: दोपहर खाने के बाद।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है आपकी सेहत का राज।
1: खेती बाड़ी का काम है, कोई हमको ऑफिस जाना नहीं।
0: सही बात है, अरे खेती बाड़ी में तो समझ लीजिए आदमी एकदम स्वस्थ रहता, बिल्कुल एकदम चंगा बिल्कुल।
1: बहन जी हमको सफर पिक्चर का गाना सुना दीजिए।
0: किस पिक्चर का?
1: सफर सफर।
0: अच्छा सफर का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: अच्छा सफर का वही जो राजेश खन्ना किशोर कुमार की आवाज में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा गा के बताइए।
1: जिंदगी का सफर
0: है कैसा सफर। क्या बात है, और घर में कौन कौन है आपके?
1: हमारे घर में बहू है, लड़का है और 3 नाती है हमारी, वो एक नाती।
0: अच्छा बहू है,
1: वाइफ नहीं है बहन जी।
0: अच्छा अच्छा, वाइफ नहीं है, तो देखिए जिंदगी है। अभी आप ही देखिए, आप ही ने ये गाना पसंद किया, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, तो ये तो सफर है, चलता रहेगा।
1: बहन जी हम डेलीकेट आपको करना चाहते हैं, आपकी टीम को।
0: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बाबू अंसारी, प्रवीण अंसारी और हमारे हरकेश भाई हैं, रिंकी पिंकी हैं, संतोष भाई साहब ओंकार
0: भाई, आप लोग की जो मोहब्बत है उसको सलाम है मेरा, और आप लोग एक दूसरे का इतना ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आपका गाना आ रहा है अब तक।

0: जा।
1: जी हाँ, जिंदगी का सफर कुछ ऐसा ही सफर है कि ना समझ में आता है किसी को, ना अगर आप किसी को समझाना भी चाहें तो भी वो समझ नहीं पाता है कि जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ और ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना था, ऐसा हुआ क्यों, ये सारे क्यों और क्या और कब और कहाँ के जो सवाल है ना, सिर्फ ऊपर वाले के इख्तियार में है। फिलहाल 7:55 हो चुके हैं, प्रोग्राम हॉटमेल को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात, किसी और दिन किसी और वक्त, लेकिन चैनल यही रहेगा जिसे हम और आप कहते हैं धड़कन लखनऊ की। कुछ घंटे रहने वाली हैं आपके साथ प्रीति सी प्रीति, तो चले गुड बाय, शुभ खैर, शुभ रात्रि।

नमस्कार, रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को लखनऊ छावनी स्थित दिलकुशा लॉन में आयोजित होने वाले बायो युग ग्रीन कमान 2026 में पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने की पहल का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञों का संगम देखने को मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री व गोरखपुर जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज सर्किट हाउस सभागार में भाजपा महानगर और जिला कोर कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने, प्रदेश सरकार के 9 वर्ष तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 जून को जन्मदिन के अवसर पर 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्य घर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में अपना परचम लहराया। राज्य को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुए। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस श्रेणी में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने

0: बताया कि परीक्षा की सुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, वसल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आपशार 100.7 FM रेनबो पर।

नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम आबशार में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे प्रीति। आबशार में आज मोहब्बत की कुछ अधूरी कुछ पूरी बातें करने के लिए। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान का चेहरा झूठ बोल सकता है, उसकी जुबान दगा दे सकती है, लेकिन ये जो आंखें होती हैं ना जनाब, ये कभी झूठ नहीं बोलती। ये आंखें दिल का वो आईना है जहां हर जज्बात साफ साफ तैरता नजर आता है। किसी की आंखें इतनी गहरी होती हैं कि पूरी कायनात उनमें सिमट जाती है। तभी तो किसी आशिक ने अपनी मोहब्बत की आंखों की तारीफ में क्या खूब कहा है। तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफ़, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीम की रात। तेरी आंखें हैं या संदली बंत की नवाजी, पलके खुलती हैं तो यूं गूंज उठती है हवा, जैसे मंदिर से चरागी का निकलता हो सदा। तेरी आंखें हैं कि तकदीर बदलती सी आंखें, तेरी आंखों से ही तकलीफ दूर होती है ये सच्ची, तेरी आंखों से ही तकलीफ दूर होती है। तो बस यूं ही बने रहिए हमारे साथ आबशार में खूबसूरत गजलों के लिए और कुछ चंद बातों के लिए। आज आरजे प्रीति रहेगी आपके साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, हर अश्क मोहब्बत के सहारे नहीं होता। रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता, हर अश्क मोहब्बत के सहारा नहीं होता। रोने से गमे दिल का गुजारा नहीं होता। उस रोज ये लगता है कि बेकार ही जिए जा रहे हैं, जिस रोज सनम जिक्र तुम्हारा नहीं होता। दरियाए मोहब्बत में है तूफा भी भंवर भी है, दरियाए मोहब्बत में तूफा भी है, मोहब्बत भी है, भंवर भी है। हर कश्ती की किस्मत में किनारा नहीं होता, हर अश्क मोहब्बत के सहारा नहीं होता।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: रूहानी इबादत जैसा है, जब अल्फाज थक जाते हैं तब खामोशी दिल का हाल बयां करती है। महफिल गजल का ये खूबसूरत सफर यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए आबशार मेरे साथ, यानी आरजे प्रीति के साथ।

0: अगर इस
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: मिले तो थे हम भी किसी मोड़ पर अजनबी बनकर, न जाने कब रूह का रूह से वास्ता हो गया। अब ढूंढता फिरता हूँ गुजरे हुए वक्त का वो पन्ना जहाँ ख्वाब जन्नत के थे और सफर शुरू नया हुआ था। कितना अजीब है ना, जब हम इस सफर पर निकले थे तो हमारी हथेलियों में जन्नत के ख्वाब थे, वो ख्वाब जो फूलों की तरह नाजुक थे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की महक थी। हमें लगता था कि मंजिल बेहद खूबसूरत होगी, लेकिन रूहानी तौर पर देखें तो जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा मंजिल नहीं होती, बल्कि वो मोड़ होता है जहां हम अजनबी होते हैं। क्योंकि जब दो अजनबी मिलते हैं तो वहां कोई उम्मीद नहीं होती, कोई उम्मीद टूट जाने का डर नहीं होता, वहां सिर्फ एक पाक साफ शुरुआत होती है। शायद इसलिए आज ये दिल पुकार रहा है कि चलो सब कुछ भुलाकर, सारे तजुर्बों को पीछे छोड़कर, जिंदगी को एक बार फिर से उसी मासूम मोड़ पर ले चले जहां जन्नत के वो ख्वाब फिर से नए हो जाएं, जहां फूलों जैसी मोहब्बत पर वक्त की धूल ना हो,

दशते तन्हाई में जब वो चंचल पवन आती है, रुख से सरका के धपटा दुपट्टा कोई शरारत करती है, जैसे पिया के सामने ही वो घूंघट उठा देती है। दिल के हर एक गोशे में बस एक ही आस सुलगती है, कभी ना आए सुर्ख मेरे हाथों की जीनत बने, कब ये उम्र भर की पाकीजा लगन हकीकत बने, और गवाही दे ये पूरी कायनात मिलकर कि बस अब वो समय है और मैं हूं। चश्मे दिल की झील में अगर अक्स है किसी का रवा, तो मूंदिए पलकें और इस हुस्न एहसास को जी लीजिए। जारी है यादों का ये आबशार, सुनिए आबशार में अगली गजल। वक्त कहता है कि आबशार की आखिरी गजल को सुनवा दिया जाए, क्योंकि 8:45 पर समाचार संध्या का होगा वक्त। 9 बजे फिर लौटेंगे पॉप टाइम के साथ, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा
1: क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, स्टेबिलिटी के लिए।

0: प्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लेरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लेरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे, सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत

0: मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number one, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top three. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
2: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
1: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed

तो वही इसी गाने के साथ सुनते हैं अगले मेल को, और ये मेल हमें आया है गुलफ्सा सिद्दीकी जी का, और लिखते हैं गुड इवनिंग प्रीति मैम, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला, पहले ये आप बताओ कहाँ गायब हो जाती। मुझे लगता है कि 8 बजे का जब प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं आबशार, उससे पहले जो न्यूज़ पढ़ते हैं उस न्यूज़ की हेडलाइन में एक हम ऐड कर दिया करें कि हम फिलहाल थे कहाँ। भाई कहाँ जाएंगे आप सबको छोड़कर, बस आकाशवाणी में ही होते हैं और बस रूबरू कम हो पाते हैं, इसका गिला हमें भी है। ज़रूर जल्दी जल्दी आया करेंगे। और लिखती हैं कि हमारी इतनी अच्छी आरजे जल्दी जल्दी क्यों नहीं आती हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आप जल्दी जल्दी आया करें। साहिबा अंसारी और साजिया अंसारी, रोशनी रावत शर्मा, परवीन महक अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी, हम सब सुन रहे हैं। तो चलिए जो जिनका जिनका भी नाम लिया है मैंने, उन सभी को मेरी तरफ से हेलो। तो भाई घर की छत पर है, मौसम कैसा है ये भी जरूर बताना हमें गुलफ्सा। फिलहाल पढ़ते हैं वकील अहमद जी का मेल। अस्सलाम वालेकुम, देखिए मैंने पढ़ना सीख लिया, मुझे लग रहा सुल्तान रजा ने कहा था कि किसने मुझे कहा था ये लिखा था, तब मैं थोड़ा सा इसको बोलने में, लेकिन अब बिल्कुल फ्लुएंट हो गए। देखो फिर से बोल के बताते हैं, अस्सलाम वालेकुम है ना, बोलिए ना, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लगता है, गाने अच्छे बज रहे हैं, 1 किलोमीटर टेबल पर नहाने आए, अच्छा टेबल नहीं ट्यूबल, ओके। और गर्मी बहुत है, वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी, देखो नाम फिर से पढ़ते हैं, बहुत तेज है, वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर। साहिबा हमें लगा हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अंसारी साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी महक अंसारी, गुलफ्सा सिद्दीकी, अहमद नवाब, रविंद्र यादव, बब्बू यादव, सबको आपने याद किया, क्या बात है। सुल्तान रजा जी का भी मेल आ गया, नमस्ते प्रीति मैम, अस्सलाम वालेकुम, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से। देखो सुल्तान आपके मेल पढ़ने से पहले मैंने दूसरी मेल में आपको याद कर लिया था, मुझे लगा था आप ही ने एक बार मुझे बोला था। और आगे लिखते हैं कि सुल्तान रजा, इकबाल रजा, रिजिशान रजा और अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, संजिदा व शिहाना भी, समीरा बाबू, अम्मी, पापा, प्रीति मैम, बहुत दिनों के बाद आप आज आपके पास सुनने का मौका मिल रहा है। और दिल गार्डन, वाकई में दिल गार्डन गार्डन हो गया जी, हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब आप लोग के ईमेल पढ़ते हैं, और जब वो ईमेल में इतना प्यार आता है ना, तो आए हाय क्या ही बताएं। प्रीति मैम जल्दी जल्दी आया करो, 20 दिन की छुट्टी ली थी स्कूल से। अच्छा सुल्तान जी, ये तो आपने पोल खोल दी हमारी यहाँ पे कि आपने, जी जी बिल्कुल सही आपने बताया है, और इस पर हम बात करेंगे आपसे। और इसके साथ ही हम एम के राज जी का भी मेल पढ़ लेते हैं। मनोज मुनीश कुमार राज गांव भानपुर हरवा, फिर से पढ़ते हैं, मुनीश कुमार राज गांव भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से है, और पॉप टाइम सुनने में उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते ही हो गए जैसे लगता कई साल। आप लोगों को बुला लेना चाहिए इधर, सच में आप लोगों को किडनैप करके इधर ही बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं, और करो भैया एक एक लिसनर एक एक कट बोल के जाए, और क्या जबरदस्त प्रोग्राम होगा। अच्छा इसकी हम बात करेंगे जरूर कि एक एक लिसनर को बुला के बताया जाए, बोले बहुत अच्छा लिखते हैं आप लोग। और इसके साथ ही मेल पढ़ते हैं कमल पांडे का। कमल पांडे जी लिखते हैं कि प्रीति जी नमस्कार, मैं कार्यक्रम पॉप टाइम से जुड़ चुका हूँ, बधाई हो आपको, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, और कार्यक्रम की शुरुआत ही बहुत ही अच्छे गीत के साथ हुई है, पॉप टाइम मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है, मैं यहाँ कार्यक्रम बहुत सुनता हूँ, पसंद करता हूँ, आज कई दिनों के बाद कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरा मेल, आशा वाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कमल पांडे जी, आपने मेल किया है तो मेल अवश्य शामिल होगी। और बातों को देते हैं थोड़ा सा पॉज, क्योंकि एक गाना आस्था गिल जी का कर रहा है इंतजार, इस गाने को सुन लिया जाए। 9:22 और कुछ सेकंड का वक्त, सोचा था 9:22 बोलेंगे, लेकिन देखो वक्त पहुंच गया 9:22:30 का, और सुनते हैं आस्था गिल और साथ में कौन है, अकाशापुरी वायु, और ये गाना है नहीं भाई, इस जबरदस्त गाना है, इसको सुनिए, एंजॉय करिए और बने रहिए हमारे साथ, यानी कि 100.7 FM रेनबो के साथ धड़कन लखनऊ की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

तो भाई दोस्तों 9:31 का वक्त हो गया है और पॉप टाइम सुन रहे हैं आप ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर। फिलहाल माइक इस पार है आरजे प्रीति आपके साथ। और जिन भी लिसनर को ये सोच में पड़े हुए हैं, जो भी लिसनर हैं सोच रहे हैं कि कहाँ पे ईमेल करें जिससे कि उनका भी ईमेल शामिल हो जाए, उनकी भी बातों को हम यहाँ सबको बता दें, तो बस आपको कहीं और सोचने की जरूरत नहीं है। fmakashwani@gmail.com पर आप हमें मेल करिए। फिर से बता देते हैं, fmakashwani यानी वाणी में W नहीं होगा, V होगा, जी हाँ। तो इसको ध्यान रखिए और हमें आप ईमेल भेजिए और देखिए क्या पता अगला ईमेल हम आप ही का पढ़ रहे हो। फिलहाल जो मेल पढ़ने जा रहे हैं विनीत कुमार का है। विनीत कुमार लिखते हैं कि रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूं। प्रीति बहन जी ऑफ टाइम प्रोग्राम सुपर हिट आप करते हैं, आपकी बोली बहुत अच्छी लगती है, भोजपुरी गाना बजा दो तो और मजा आनंद आ जाए। आपको गुड इवनिंग, शुभ रात्रि की नमस्ते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ईमेल शामिल करने के लिए। जी शुक्रिया विनीत जी मेल करने के लिए। रणधीर गुप्ता का भी मेल आया है। रेडियो सखी जी सप्रेम नमस्कार, कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन प्रस्तुति और गाने पसंद आ रहे हैं। साथ में कुछ नाम लिखे हैं, ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता जी का नाम लिया है। और रोशनी रावत जी का मेल शामिल करते हैं। बड़ा ही कलरफुल, बड़ा ही खूबसूरत सा मेल आया है, ऐसा लग रहा है सावन के महीने में हम इस मेल को पढ़ रहे हैं। और रोशनी जी शुक्रिया इतना टाइम निकालने के लिए, क्योंकि इसमें जो आपकी क्रिएटिविटी दिख रही है उसके लिए थैंक यू सो मच कि

आपने अपने कीमती वक्त में जो थोड़ा सा भी वक्त हमारे लिए निकाला ना, उसके लिए शुक्रिया जी। लिखती है मैम जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल हम ठीक हैं। आप शायद प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आप आई हैं जी। आप ये कह सकती हैं कि बहुत दिनों बाद आए हैं। आप गायब हो गई थी जी, हम कहीं गायब नहीं हुए थे क्योंकि हम मिसेस इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर इंडिया तो नहीं कह सकते, हम खुद को मिसेस इंडिया ही कहेंगे। और लिखती है तब से कितना इंतजार किया है, चलो कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। बस ये फीलिंग होनी चाहिए रोशनी रावत की, देर से आए दुरुस्त आए लेकिन आए तो सही। और साथ ही लिखते हैं, आते ही गजब की शुरुआत कर दी है, मत पूछे कितना अच्छा लग रहा है, एक शब्द में जवाब बोलूं तो कमाल धमाल लग रहा है, पॉप टाइम में एकदम गर्दा उड़ा दिया है, बबीता जी को नचाना है, कोई तड़कता भड़कता। अच्छा ठीक है, जो अगला गाना है ना वो भी थोड़ा सा ऐसे ही है, वो बबीता जी जरूर डांस करेंगी, इतना झूमेंगी खुद को रोकना नामुमकिन है। मेरा नाम रोशनी रावत है और सफीरपुर जिला उन्नाव से मेल के चंडीगढ़ से प्रोग्राम को सुन रही हैं बबीता राव, नीलू शर्मा दीदी, गुलफशा सिद्दीकी दीदी जी को नमस्कार। तो भाई अगर आप सुन रही हैं, रोशनी रावत के नमस्कार को स्वीकार करें आप। मोहम्मद आसिफ जी ने बड़ा ही प्यारा सा मेल भेजा है और साथ में कुछ पिक्चर्स भेजी हैं जो क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, हैदराबाद तेलंगाना से प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश भी हो रही है, बहुत ही मजा आ रहा है। क्या बात है मोहम्मद आसिफ जी, ये बारिश का मजा अकेले अकेले ले रहे हैं, क्यों नहीं थोड़ी सी इधर भी भेज रहे हैं। भैया मोनू सेठ का भी मेल आ गया है, कैसन है आप? बिल्कुल उम्दा है हम और आहे बहुते नीक होएंगी बिल्कुल, और पॉप टाइम जबरदस्त चल रहा है। ईमा कोनो शक नहीं जी, बिल्कुल कोनो शक नहीं, ईमा आपको पसंद आ रहा है ना, तो बस हमको भी बड़ा ही पसंद आ रहा है। ईमा तो वो कोनो शक नहीं, ईमा भी कोनो शक नहीं है, हम यहाँ पे बैठ के सारी बोली सीख लेंगे। कई दिनों बाद आपको सुन रहा हूँ, सुन रही, अच्छा माफी के अंदाज में पढ़ते हैं आपका, सुन रही ना है, जल्दी जल्दी आया करें मैम जी। बिल्कुल मोनू सेठ जी, आज हम लिख के जाएंगे कि हमको अगली बार जल्दी आना है। तालिब अंसारी जी ने फिर से मेल किया है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, के लिए आई है आज, देखना दो तीन दिनों में पानी जरूर बरसेगा। ओहो क्या बात लिखी है तालिब अंसारी जी ने, लिखा है कि नहीं मैम मेरे बाराबंकी में यहाँ कुछ भी बूंदाबांदी नहीं हुई है, आप प्रोग्राम में आई हैं, आज देखना दो तीन दिनों में पानी जरूर बरसेगा। हे भगवान बरसा देना तालिब अंसारी जी की बात सही हो जाए, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और फीडबैक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लिए सब लोग दें भाई, तालिब अंसारी जी ने कहा है कि हर कोई इसके फीडबैक दें, हमें अच्छा अच्छा दें, और फीडबैक 101 मार्क्स सारे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आप शार भी बहुत गजब का लगा प्रोग्राम, लेकिन ये बात सच है हम लोग बहुत इंतजार करते हैं आपका, क्या ही बताएं हम वक्त, क्या बताएं हम बाकी चीजों के लिए, जरूर आया करेंगे। विजयपाल यादव जी ने लिखा है कि प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी आया करें, और आवाज बहुत पसंद है जी, शुक्रिया, ये सब तो आप लोग के प्यार की वजह से है। गुलफशा सिद्दीकी जी लिखती है, हेलो प्रीति मैम, आज बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे यहाँ आप का स्टेशन साफ नहीं पकड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं गुलफ्सा जी आपके उधर बारिश वारिश हुई हो या आंधी आई हो जिसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया, अदरवाइज तो ये कंप्लेन अब नहीं आती है क्योंकि काफ़ी वर्कआउट कर लिया गया इन चीज़ों पे, जिससे कि ये सारी कंप्लेन हमारे प्यारे लिसनर्स को ना करनी पड़े। विनीत कुमार जी ने फिर से लिखा है कि कुछ मेरे दोस्त हैं आज़ाद सिमरी से, ओमकर अतरौली सीतापुर, संतोष कुमार मौर्य हरदोई से, ममता हरदोई से, संजू संजय हरदोई से, और सीरा रावत रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, सुरभी सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से। आपने बड़े ही कोने कोने से सारे दोस्तों को नाम लिया है। इंद्रपाल मिश्रा का मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं, आपकी मीठी बोली के कारण कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है, आपके आने वाले श्रोताओं में खुशी की लहर आने से अच्छा जी, शुक्रिया। और ये मेल हमें किया है अमृता मोहली सीतापुर इंद्रपाल मिश्रा जी ने, तो देखिए म्यूजिक भी बंद हो गई क्योंकि कहा जा रहा है कि गाना प्ले कर दिया था, तो चलिए सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये खूबसूरत सा ट्रैक।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।

और स्टूडियो क्लॉक ने ये भी हमें बताया है कि अगर किसी ने अभी तक मेल ना किया हो तो उसको मैं यहाँ से बोल दूं कि भाई ईमेल क्यों नहीं कर रहे हैं, हम आपके ईमेल का इंतजार कर रहे हैं, फटाफट मेल करिए। जिस तरीके से वारिस अली जी ने हमें मेल किया है, लिखते हैं कि प्रीति जी को प्यार भरा आदाब नमस्कार, अर्ज है उड़े फिरते हैं ये पंछी न जाने क्यों फिजाओं में, क्यों इनको क्या इनको पेड़ के नाजुक सहारे बोझ लगते हैं, क्या बात है, आप शो बहुत अच्छा कर रही हैं, आपको हमारे गाने पसंद आ रहे हैं, अगर मुमकिन हो तो ओके चलिए जरूर कोशिश करेंगे प्ले करने की। और आज इन्होंने हमसे एक वादा किया है जो आप सबको बताएंगे कि इन्होंने लिखा है कि आज मैं रजनीगंधा जरूर सुनूंगा और रहूंगा आपके साथ। फिलहाल ये हमें मेल किया है संजय नगर ऐशबाग से, और इसके साथ ही हम मेल पढ़ते हैं, बहुत सारी ईमेल गए हैं, वक्त कह रहा है कि लगता है हम ईमेल ही पढ़ते रह जाएंगे। जितेंद्र का भी मेल आया है, नामदेव बबलू, नामदेव अंजू, नामदेव खनक, नामदेव आरोही और सौम्या का है नाम इसमें, जिला शहडोल मध्य प्रदेश से मेल किया है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, गाने भी अच्छे लग रहे हैं और शुक्रिया भेजा है। गीता सेठ का भी मेल आया है, लिखती है मैम जी नमस्ते, आपको सुनकर खुशी हुई और उससे कहीं ज्यादा खुशी हुई जो आपने अपना नाम लिखा हुआ, मिसेस गीता सेठ एफएम दीवानी। अनुराधा शुक्ला जी का भी मेल आ गया, हेलो मैम नमस्ते, कैसी हैं आप, मैं अनुराधा शुक्ला विलेज कतर गिलौला सरस्वती से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ, आपकी पूरी फैमिली के लिए मेरी तरफ से हेलो। और आंचल सेठ का भी मेल आया है, रायबरेली से शानदार प्रोग्राम चल रहा है, वो लिखती हैं। निर्मल गुप्ता जी का भी मेल आया है, लिखती हैं कि आरजे प्रीति जी आपको आपका शो सुनकर ऐसा लगता है जैसे चाय में एक्स्ट्रा चीनी पड़ गई हो, मज़ा ही आ जाता है। और निर्मल गुप्ता जी हम तो ये कहेंगे कि प्रोग्राम में मज़ा तब आ जाता है, चीनी एक्स्ट्रा तब हो जाती है जब हम आपके ईमेल को पढ़ लेते हैं, जब हमें इनबॉक्स में आप लोग का नाम दिख जाता है ना, है तब कलेजे को ठंडक पड़ती है कि चलो सारे के सारे हमारे लिसनर्स ने अटेंडेंस लगा दी है। और लिखते हैं सच बताऊं आपकी आवाज़ अच्छा आवाज़ की तारीफ की है, और अगर अलार्म में लगा दी जाए तो लोग स्नूज की जगह वंस मोर दबाएंगे, हाय बड़ी तारीफें लिखी हैं, दिल को खुशी मिल रही है। एक छोटा सा जोक है, टीचर इतनी देर से क्यों आए, स्टूडेंट रास्ते में एक बोर्ड दिखा आगे स्कूल है, धीरे चले बस फिर क्या धीरे धीरे आ गए, वाह क्या बात है, बड़ा ही अच्छा सा मेल लिखा है और जोक भी बड़ा क्यूट है। और दो लाइनें लिखी हैं, हंसी आपकी रेडियो की जान लगती है, आपकी बातें दिल की मुस्कान लगती है, यूं ही हंसाते रहिए सबको हर दिन, आरजे प्रीति आपकी आवाज़ बड़ी कमाल लगती है, शो में हमेशा ऐसे ही हंसी और खुशी खुशियों से भरे रहिए। भाई निर्मल गुप्ता जी हम तो यही कहेंगे, आप भी यूं ही खुश रहिए क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हर किसी को हो रही है, तो ये हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए भाई, ब्लड पूरा होना चाहिए, खुश रहिए मस्त रहिए और अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रॉपर करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिकायत हो जाती है लोगों को, तो खुश रहोगे ना तो ये अनेमिया टाइप की चीज़ें नहीं होंगी, और बीपी शुगर ये सब तो हाई फाई बीमारियाँ हैं, इनका तो नाम ही नहीं लेना है ना। और सोनू परवाना जी का भी मेल आया है, सराहनीय प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद जी, आपका भी शुक्रिया। आनंद तिवारी जी का भी मेल आया है, आनंद तिवारी जी लिखते हैं कि जिंदगी सभी के लिए वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है, कोई दिल रखने के लिए जी रहा है, कोई रंग नहीं होता बारिश में फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है। और राजस्थान भिवाड़ी से प्रोग्राम को सुन रहे हैं आनंद तिवारी, और दारुकुया मल्लावा हरदोई है, बड़ा प्यारा सा नाम है आपकी जगह का, इसमें गाने बनने चाहिए। मोनू सेठ का भी मेल आया है, प्रोग्राम बहुत पसंद किया है, खालिसपुर ऊंचा गांव से मेल किया है, अनुराधा शुक्ला जी का मेल हमने शामिल कर लिया, बाबू अंसारी का भी मेल हम शामिल करते हैं, गुड इवनिंग प्रीति मैम कैसी हैं आप, बहुत हम अच्छे हैं, प्रोग्राम आपको पसंद आया झमझम हुआ लग रहा है, और कुछ मेरे रेडियो दोस्त के नाम शामिल कर लीजिए जी, बिल्कुल कुलदीप गुप्ता, फैज अंसारी, महेंद्र दीपन, तो भाई आप तीनों जहाँ कहीं भी हों अपने दोस्त को शुक्रिया कहिए क्योंकि ऑन एयर उन्होंने आपके नाम को शामिल कराया है, और साथ में आपने कुछ डांस मूव्स भेजे हैं, ये अगर रियल में आप ऐसा डांस करते तो भाई क्या बात है। कुमकुम शुक्ला जी का भी मेल है, प्रणाम दीदी मैं शिवम शुक्ला और गिलौला डिस्ट्रिक्ट सरस्वती से प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, शायद ये मैंने मेल शामिल कर ली है, भाई दोस्तों एक ही बार मेल करो। प्रीति मैम आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छी हैं जी, शुक्रिया माशाल्लाह, नज़र ना लगे सच में, अगर इतनी तारीफ़ें करोगे तो कहीं ना कहीं नज़र ना लग जाए, लेकिन हम नज़र लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और गुलासा सिद्दीकी जी शुक्रिया इतने प्यार भरे मेल के लिए। विरजेश सिंह का भी मेल आया है, लिखते हैं कि इस समय हम खेत में बैठे सुन रहे हैं, गन्ना में सिंचाई कर रहा हूं और खाना खा रहा हूं, आ जाओ मैम जी खाना खा लो, अरे बाप रे आपको डर नहीं लग रहा, आपने जो फोटो भेजी है पीछे तो बिल्कुल काला सन्नाटा है कहीं, भाई जल्दी से खाना खा के घर जाइए। और बाबू अंसारी का भी मेल आया है, गुड इवनिंग प्रीति मैम, बाबू अंसारी जी अभी हमने आपके मेल को शामिल किया है। अमन नवाब जी का भी मेल आ गया है, हेलो डियर प्रीति दी कैसी हो आप, बिल्कुल चकाचक,
कहाँ थी दीदी भाई, हम तो आप ही के पास थी, आप कहाँ थी अमन जी आप। और आगे लिखती हैं, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी आवाज सुनकर मुंह मीठा हो जाता है, मेरे रेडियो पर बज नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है, काश ये बात मेरी। अच्छा मैं आज ही, क्योंकि ये दूसरी मेल है जिसने कहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं जरूर ये इस बात को आगे तक पहुंचाऊंगी, बहुत आगे तक, उतनी आगे तक न हो कि पीछे छूट जाए हमारे अधिकारी लोग। और मनोज विश्वकर्मा की भी मेल को शामिल करते हैं, प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली मीठी सी आवाज को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रोग्राम लाजवाब, 3-4 दिनों के बाद ईमेल कर रहा हूँ, क्यों क्यों क्यों ये 3-4 दिन की एबसेंट आपकी क्यों लगी है, क्यों आज आपकी अटेंडेंस में प्रेजेंस लगी। भाई डेली अटेंडेंस अपनी लगवाते रहा करिए। और दिलीप कुमार विश्वकर्मा, रमेश पटेल, महेत्रु पैकरा छत्तीसगढ़ से मेल किया है, जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव। नवनीत जी का भी मेल आ गया है, नमस्ते मैम, और ये चौक कोतवाली लखनऊ से हैं, आप कैसी, बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई भी गाना सुनवा दीजिए। ये क्या बात हुई, कुछ नाम ले लीजिए, जल्दी से ले लेते हैं, वक्त कह रहा है कि बस। नित्या, सीमा देवी, मंजय कुमार, कृति मैम, आप हमारी मम्मी की फेवरेट आज हैं, आई है मम्मी जी को मेरा नमस्कार, उनको हेलो बोल दीजिए, हेलो। और सालों से सुनती आ रही हैं, बस कॉल नहीं लगती है, कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन नित्या आपके गानों पर लोटपोट नाच रही है, तो चलिए उनको ध्यान रखिएगा, गिर ना जाए, ध्यान रखिएगा, चलिए। और दलिया मेहंदी की आवाज़ में ये खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, वक्त हो गया 9:52 और कुछ सेकंड्स, अगर इस गाने के बाद भी आपसे बात हुई तो बड़ी ही अच्छी लगेगी, अदरवाइज इस गाने के बाद कोशिश करेंगे एक और गाना सुना दे, न्यूज़ न्यूज़ के उस पार रजनीगंधा कर रहेगा, आप अभी सबरी से इंतजार, रात 12 बजे तक रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिए।

नमस्कार, रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक और भारतीय वन सेवा परीक्षा प्रारंभिक 2026 में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी, वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के गगोरा में संचालित एक क्रैशर प्लांट में भीषण और संदिग्ध विस्फोटक से हड़कंप मच गया। इस जोरदार धमाके में 2 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें 1 मजदूर की मौत हो गई और 1 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। उन्होंने शोला और शबनम, आंखें दिल, तेरा दीवाना, तलाश और रंगीला राजा जैसी फिल्मों का निर्माण भी किया था। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

रात के इस बेहद खामोश पहर में एक बार फिर आपका खैर मकदम। आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रीति। दोस्तों, आज रात ये सन्नाटा दिल पर एक भारी बोझ की तरह महसूस हो रहा है। आज शब्द कम पड़ रहे हैं, आंखें नम है और आवाज में एक अजब सा भारीपन है, क्योंकि आज हम सब मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक बेहद अजीम और दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी जी को, जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे पहलाज जी ने अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा के बड़े पर्दे को चमकाने में लगा दी, नए सितारों को तराशने में लगा दी। लेकिन अफसोस, आज वो जादुई पारस पत्थर खुद हमेशा के लिए खामोश हो गया है।

दोस्तों 1970 के दशक के अंत में और 1980 के दशक की शुरुआत में, जब हिंदी सिनेमा रोमांटिक फिल्मों से हटकर एक्शन और ड्रामा की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने बतौर स्वतंत्र निर्माता कदम रखा। उनका मकसद सिर्फ फिल्में बनाना नहीं था, बल्कि वो भारत के आम आदमी थे। उस फ्रंट रो दर्शक के जज्बात को पर्दे पर उतारना चाहते थे, जो अपनी तकलीफें भूलने सिनेमा घर आते थे। और साल 1982 में उन्होंने फिल्म हथकड़ी से अपने इस खूबसूरत सफर का आगाज किया। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसने उस दौर के आम दर्शकों की नब्ज को पकड़ लिया था। जबरदस्त एक्शन, कड़क डायलॉग्स और एक ऐसा तेज ड्रामा जिसने हर किसी को पर्दे से जोड़ दिया। इसके बाद साल 1985 में आई उनकी अगली फिल्म आंधी तूफान। ये फिल्म अपने नाम की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा तूफान लेकर आई थी। इसकी खासियत थी कि इसके जबरदस्त स्टार कास्ट और वो मसाला एंटरटेनमेंट जिसने फ्रंट रो दर्शकों को सिनेमा घरों में तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। प्रहलाद जी जानते थे कि बड़े स्टार्स के दौर में भी जनता को सीधे दिल से कैसे जोड़ना है।

दोस्तों, गोविंदा को इंडस्ट्री में लॉन्च करने वाले और उन्हें सुपरस्टार बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ पहलाज निहलानी जी ही थे। पहलाज निहलानी जी ने साल 1986 में फिल्म इल्जाम से गोविंदा को इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। हालांकि पहलाज को गोविंदा जी पहले बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे। गोविंदा को इसके बारे में पता भी था, उन्हें यह भी पता था कि वो इल्जाम फिल्म के लिए एक चेहरा तलाश रहे। फिर क्या था, गोविंदा ने अपनी एक्टिंग के कुछ कट्स, कुछ डांस मूव्स

एक कैसेट में रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचा दिया। उनके डांस मूव्स और एक्शन ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने गोविंदा को लीड एक्टर के तौर पर लॉन्च कर दिया। और इस तरह से फिल्म इल्जाम से गोविंदा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इस तरह गोविंदा रातों रात डांसिंग और एक्टिंग आइकॉन बन गए। उन्होंने गोविंदा के साथ साथ शोला और शबनम और आंखें जैसी सफल फिल्में दी।

दोस्तों, पहलाज नीलानी ने सिर्फ गोविंदा को ही स्टार नहीं बनाया, बल्कि चंकी पांडे को भी उन्होंने ही लॉन्च किया था। यही नहीं, 90 के दशक में बेहद कम समय में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली दिव्या भारती को भी पहलाज नीलानी ने ही सुपरस्टार बनाया था। उन्होंने 1987 में फिल्म आग ही आग से चंकी पांडे को फिल्म इंडस्ट्री में पहला बड़ा मौका दिया। इसके बाद 1993 में उन्होंने गोविंदा और चंकी पांडे को लेकर आंखें जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी, जो उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के अगर बात करें तो नाम आता है शोला और शबनम का। ये फिल्म दिव्या भारती की डेब्यू फिल्म होने वाली थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी ने विश्वात्मा फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय से बात की थी कि उनकी फिल्म शोला और शबनम को पहले रिलीज होने दें। और फिर क्या था, राजीव राय मान गए थे, लेकिन कुछ सेंसर प्रॉब्लम के चलते ये फिल्म डिले हो गई थी और विश्वात्मा फिल्म पहले रिलीज हो गई थी। और यही फिल्म ही दिव्या भारती की डेब्यू फिल्म बन गई थी। पहलाज जी, आज भले ही आप हम सबसे बहुत दूर चले गए हों, लेकिन आपकी यादों का ये खूबसूरत सफर हमें हमेशा याद रहेगा। 100.7 FM रेनबो परिवार की तरफ से आपको श्रद्धांजलि।

दोस्तों वक्त हुआ है 10:34 और 34 सेकेंड्स। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ, आपकी हम सफर आरजे प्रीति। वक्त अपनी रवानी से गुजरता रहता है, लेकिन ये जो पुराने महकते हुए गीत होते हैं ना, ये गुजरे हुए दौर के उस हसीन जरोखे की तरह होते हैं जिसे जब भी खोलो रूह पुरानी यादों की खुशबू से सराबोर हो जाती है। रात का ये पहर ही ऐसा होता है जहां दिल बीते कल के उन खूबसूरत पन्नों को एक बार फिर से छूना चाहता है। तो चलिए रजनीगंधा के इस मखमली सफर को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस शांत और खामोश शब में आपको ले चलते हैं पुराने गीतों के एक बेहद सुरीले और सदाबहार सफर पर, जहां हर एक सुर हर एक लफ्ज सीधे आपके रूह से गुफ्तगू करेगा। सुनते रहिए रजनीगंधा।

दोस्तों, शहर की वो बेतहाशा भागती दौड़ती भीड़ भी अब अपने अपने आशियानों में सिमट गई है। खिड़की के बाहर देखिए, जो गलियां कुछ घंटों पहले शोर से भरी थी, वो अब एक मखमली चादर ओढ़कर खामोश हो चली हैं। लेकिन जानते हैं, इस खामोशी का भी अपना एक शोर होता है। ये उन जज्बातों का शोर है जो दिन की रोशनी में शायद कहीं तप जाते हैं, और रात के इस अकेलेपन में जब हवाएं पर्दों से टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे किसी के आने की आहट हो रही हो। बार बार फोन का स्क्रीन को देखना कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, या किसी पुरानी तस्वीर को देखकर बस यूं ही मुस्कुरा देना।

खिड़की के बाहर देखे जो गलियां कुछ घंटों पहले शोर से भरी थी, वो अब एक मखमली चादर ओढ़कर खामोश हो चली हैं। लेकिन जानते हैं, इस खामोशी का भी अपना एक शोर होता है। ये उन जज्बातों का शोर है जो दिन की रोशनी में शायद कहीं तप जाते हैं, और रात के इस अकेलेपन में जब हवाएं पर्दों से टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे किसी के आने की आहट हो रही हो। बार बार फोन का स्क्रीन को देखना कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया, या किसी पुरानी तस्वीर को देखकर बस यूं ही मुस्कुरा देना। सच तो ये है कि असली मोहब्बत दिन के उजालों में नहीं होती, बल्कि रातों को जागकर बिताए गए इन्हीं छोटे छोटे इंतजारों और लम्हों में सांस लेती है। ये वो वक्त है जब हम खुद से और अपने अक्स से मिलते हैं।

कहते हैं कि मोहब्बत जब शुरू होती है तो सबसे पहले मन में एक ही सवाल होता है, वो कौन है। पुराने वक्त में किसी का नाम जानने के लिए दोस्तों की खुशामद करनी पड़ती थी, है ना, गलियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। पर आज का वक्त कुछ और ही है। आज हम सीधे सोशल मीडिया के सर्च बार में जाते हैं, हम उनकी पुरानी फोटोज को भी देख लेते हैं, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ खंगालते हैं। दोस्तों पहले सस्पेंस होता था, एक रहस्य होता था जो धीरे धीरे खुलता था। आज हम मिलने से पहले ही सब कुछ जान लेते हैं। पर जानते हैं वो जो जानने की बेकरारी पुराने वक्त में थी, वो आज भी रात रात भर जाकर उनकी प्रोफाइल स्क्रॉल करने में दिखती है। शायद आप भी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हों

बातें को सुन रहे हो। प्रोग्राम सुनते सुनते जब गानों में हम खो जाते हैं तो कई बार मन करता है कि उसकी प्रोफाइल ओपन कर लें, उसकी डीपी देख लें। उसकी डीपी को हम जूम करते हैं, उसको करीब लाते हैं, उसको महसूस करते हैं। शायद आप भी इस वक्त यही कर रहे हो। अगर नहीं देखी है डीपी आज तो खोलिए, उसकी डीपी को देखिए, फिर से उस मोहब्बत में डूब जाइए।

दोस्तों वक्त हो गया 10:57 और कुछ सेकंड्स। इस वक्त के साथ ही रजनीगंधा के पहले पड़ाव को यहीं तक, रात 12 बजे तक रहिएगा साथ। न्यूज़ के उस पार फिर से होगी आपसे मुलाकात।